किया ओरा बुला सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ अवि, जुड़ चुका हूँ आपके साथ में। जबकि आज है पहली तारीख जून, फर्स्ट ऑफ जून, ऐसे में पब्लिक हॉलीडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, किंग्स बर्थडे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप भी अपनी छुट्टी मना रहे हैं, घर पर है, आराम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका साथ देने के लिए स्टूडियोज में मैं अभी शामिल हो चुका हूँ। अभी से लेकर 6 तक हमारा और आपका प्यारा सा साथ बना रहेगा। वैसे नॉर्मल डे पर तो ये लंच बॉक्स का शो रहता है, लेकिन आज जबकि पब्लिक हॉलीडे है, ऐसे में आपका साथ देने के लिए हाजिर हो चुका हूं और 104.2 FM साथ में रोवा पर आपका खास स्वागत करता हूं। मैं हूं अभी, लेकर आया हूं आपके लिए ढेरों सारा प्यार।

हम पर मैं अभी आपका साथ दे रहा हूं और आपको बता दें, शायद अक्सर हम इसको अंडरमाइन कर देते हैं, तो इसको गौर से सुनिएगा क्योंकि लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। इसे देखें, इसे महसूस करें और इसे पूरी तरह से जिए। तो जबकि आज पब्लिक हॉलीडे हैं, आप थोड़ा थोड़ा लेजी फील कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं कि प्रायोरिटी घर के कामों को ज़्यादा दे रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए खुद के लिए भी समय निकालना ज़रूरी है। तो ऐसे करते हुए आप हमारा साथ देते रहिए और जबकि पब्लिक हॉलीडे है तो इसका भी पूरा पूरा मज़ा लीजिएगा।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: ड्राइविंग यू होम द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया. वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप दिलजीत तो
4: आए आए बताओगे यार.
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Bedzaras Manuko and Pokekoi. King's birthday sale on now with up to 60% off. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: At Bunnings, we've got a wide range of rugs to make your home cozier this winter. From plush rugs to hard-wearing styles for busy areas and fun designs to brighten the kids' rooms. We make cozy easy this winter. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
7: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.

0: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
1: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
0: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
1: Available at selected branches. T's and C's apply.
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
2: Moisture और ventilation का problem लगता है.
3: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
4: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18
5: ऑकलैंड तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. वंस अपॉन अ टाइम विद द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट अलोंग विद शाहजमान अली खान सैटरडे 25 जुलाई एट द ट्रस्ट एरिना. बुक योर टिकट्स ऑन dryticket.co.nz. फॉर स्पॉन्सरशिप्स कॉल करम हुंडल ऑन 0275146477.

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और आज का जो प्रोग्राम है बिल्कुल होले होले सफर को तय करेंगे आज के इस पब्लिक हॉलीडे की तरह, ताकि आप भी बिल्कुल रिलैक्स कर सके, हमारे साथ में एंजॉय कर सके और खुद को एंटरटेन कर सके। याद रहे हम 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं। इसके अलावा अगर जो आप हम स्टेशन म्यूजिक स्टेशन पर जाएंगे रोवा ऐप पर, यहाँ पर ढेर सारे ईरा के गाने आपके लिए स्टोर किए गए हैं, इसे भी आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। और आज के लिए आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं हूँ अभी आपके साथ में, और कुछ अपनी कहेंगे कुछ आपकी भी सुनेंगे, ऐसा करते हुए इस सफर को हम तय करेंगे।

हम पर रवि का साथ है और जबकि हम आपका फेवरेट बॉलीवुड स्टेशन है, ऐसे में आप तक पहुंचाते रहते हैं बॉलीवुड से नवीनतम जानकारियां। तो आप लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं, एक आने वाली एक क्राइम सीरीज है जिसका नाम है ब्राउन, और इसमें स्टार करने वाली हैं करिश्मा कपूर, जो कि नजर आएंगी एक एल्कोहलिक कॉप के रोल में। जी हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग प्रेमिस जबकि करिश्मा कपूर को अक्सर आप सॉफ्ट रोल्स में देखते हैं, तो यहाँ पर शायद कुछ अलग एक अवतार में आप इसे देख पाएंगे। इनके साथ में रिटेन कर रही हैं आफ्टर 14 लॉन्ग ईयर्स हेलन। जी हाँ, शो में आप हेलन को भी देख पाएंगे। इसके अलावा एक और एक मज़ेदार बात यह है कि इसमें अपना एक्टिंग डेब्यू के साथ में नज़र आने वाले हैं सिंगर शान। जी हाँ, शान नज़र आने वाले हैं इस क्राइम सीरीज में एक इम्पोर्टेंट रोल में, और उन्होंने कहा है कि काफ़ी फॉर्चुनेट फील कर रहा हूँ जबकि ब्राउन का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला है। तो एक क्राइम

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स Breakfast show with VJ and Pooja.
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या
4: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
3: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
4: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
5: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन बिग और स्मॉल ब्रिंग होम द फॉर्च्यून
0: वीकडेज 6 to 10 a.m.
6: Shop and scan to win a share of $800,000 at Woolworths. Just buy any three products from Cadbury, Makona, Coca-Cola, Chobani and more for your chance to win instant money off your shop. In-store only at Woolworths. T's and C's apply.
7: It's the final day of Rebel's King's Birthday Sale. Get up to 40% off store-wide on clothing, footwear, sports gear and more. Hurry, at least 25% off the entire store ends tonight at Rebel Sport. Stores open till 9pm. See online for T's and C's.
8: When you see them on the road, you suddenly don't need to overtake that guy in front of you. And you suddenly remember what a stop sign means. Suddenly you're not too cool to buckle up. And you're suddenly stoked you turned down that beer at the barbie. Nah, all good. Yep. Seeing them means you're suddenly on your best behaviour. Drive like cops are around. Because they are.
9: Okay, everyone. I'm

0: Let the people save. Hurry, it's the final day of Briscoe's King's Birthday Sale with incredible reductions throughout the entire store. Flying out the door for one last day, so get saving. Stores open till 9 tonight at Briscoe's. See online for T's and C's.
1: Still pretending a hoodie is enough? Maybe it's a sign. Kathmandu's winter sale is on now, with great deals on puffers, merino, fleece, rainwear, and heaps more. However you do winter, do it with Kathmandu.
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994399 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz.
5: Get out.

हम पर मैं अभी आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं और चलता रहूंगा 6 तक। और आपको बता दूं, जबकि वर्ल्ड कप फुटबॉल ये शुरू होने वाली है, जी हां, वर्ल्ड कप सोकर टूर्नामेंट ये शुरू होने वाली है बस इसी महीने से, तो ऐसे में आप भी बिल्कुल लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे। आपका भी कुछ कोई पर्सनल पसंदीदा टीम होगा तो आप भी इसको सपोर्ट कर रहे होंगे, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये स्टोरी जिसको मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर किया था, लेकिन एक बार फिर आपको बता दूं, जबकि ऑल वाइट्स टीम इसमें भाग ले रही है, तो ऑल वाइट्स के एक डिफेंडर है टीम पेन, और इसको एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इनको पिकआउट किया, सिंगल आउट किया, और ये कहा कि ये सबसे लीस्ट फॉलोड प्लेयर है वर्ल्ड कप के लिए, जबकि ग्लोबली काफ़ी ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनके काफ़ी बड़े तादाद में फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन टिम पेन का ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था। तो इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने उनको सिंगल आउट किया, एंड विद इन 48 आवर्स इस पोस्ट के बाद में कुछ 1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं टिम पेन का। तो देखिए सोशल मीडिया के द्वारा क्या कुछ पॉसिबल नहीं है।

0: चाहे आप हमके दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी. बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424.
5: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर. दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमची मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन. कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800-4SUN-TOURS. दैट्स 0800-478-686. लिमिटेड स्पेसेस.
6: It's cold outside and the couch is on your mind.

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आपका साथी अवि। कम्युनिटी न्यूज में आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं कि श्री राधा कृष्ण मंदिर ऑकलैंड में अपना 25th एनिवर्सरी मनाने वाले हैं और ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता को प्रेजेंट करेंगे पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा। और इस प्रोग्राम को आप 5 जून से सुन सकते हैं जाकर महात्मा गांधी सेंटर राधा कृष्ण मंदिर एट 145 न्यू नॉर्थ रोड ईडन टेरेस ऑकलैंड में। और इसके साथ में एक और एक जो प्रोग्राम है होने जा रहा है दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए लेकर आ रहा है 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ ऑन द 13th of June। जी हाँ, तारीख मार्क कर लीजिएगा 13th of June। आपको सिर्फ जाना होगा रामकृष्ण मंदिर 25 ओनस्लो एवेन्यू मैंने कहा वो, जहाँ पर आप सभी भक्तों को निमंत्रण दिया जा रहा है। प्रोग्राम कुछ इस तरह से, सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक स्थापना पूजा रहेगी, 8 बजे के बाद में चालीसा पाठ बाय वेरियस मंडलीज, उसके बाद में हवन और आरती और शांति पाठ रहेगा। इसके लिए अगर जो और जानकारी आपको चाहिए 02102991219 पर आप कॉल कर सकते हैं। याद रहे 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ 13th June को रहेगा और सुबह 7 बजे से ये जो प्रोग्राम है शुरू हो जाएगी।

हम पर आपके लिए ज़रूरी बातें भी लेकर आते हैं। और अगर जो समाचारों में आपने अभी तक नहीं सुना था, तो ऐसा कुछ प्रपोज किया जा रहा है जहां पर एक नए कानून के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट को अलाउ किया जाएगा टू यूज़ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि ये निर्णय ले सके पीपल के बेनिफिट के लिए। अभी तक क्या होता था कि आप अपने केस को इंटा करते थे, उनके साथ में दर्ज करते थे, तब कहीं जाकर आपके केस को कोई पेशन पड़ता था और उस पर कोई ना कोई निर्णय यानी कि डिसीशंस लेता था। अब क्या वो ह्यूमन इमोशंस मिसिंग रहेगी जबकि AI का इस्तेमाल रहेगा? क्योंकि AI विल कहीं ना कहीं लैक करेगी ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो इमोशंस टू रिव्यू अ केस। इसके बारे में शायद लोगों को आपत्ति होगी, यानी कि ये जानकर उनको शायद कहीं ना कहीं ट्रबल रहेगा कि अब इनका जो केस है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही डिसाइड करेगा, यानी कि इट्स गोन बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसके बारे में आने वाले दिनों में और भी पता लगेगा।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Mildale House and Land Packages.
1: Most of our roads free flowing so far this afternoon. Silver Delta City, a bit of traffic around Constellation Drive. It is moving though, taking 30 minutes on the northern. On our southern, State Highway 1, Rāmarama to Drury, there has been a crash. The right northbound lane is blocked after the Araremu Road overbridge, so taking care through there and allow a bit of extra time. It is busy with some holiday traffic as well.
0: Award-winning builders, wide range of homes, Mildale's Show Home Village, open daily. Everything's right here.
2: Want $500 phone dollars to spend on your next interest-free phone? Simon's all over it. Join 1NZ on an eligible pay monthly plan this June only to redeem your phone dollars. T's and C's apply. One New Zealand. Let's get connected.
3: Farmer's massive King's Birthday Sale is now on with 30 to 50% off kitchen and dining. Flannelette sheets and duvet cover sets from $49 and 50% off sleepyhead beds. Savings fit for a king at Farmer's. Conditions and exclusions apply.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz
7: Sun Tours के successful March 2026 Best of India Tour के बाद अब bookings open है for Best of India September 2026 Tour. Delhi की shopping, Agra का Taj Mahal, Jaipur Amer Fort और Elephant Ride, LP में houseboat का experience और आमची Mumbai की Bollywood Studios visit with all buffet meals, flights और 5-star accommodation. All for just $8,500 per person. Contact Anil on 0800 for Sun Tours. That's 0800-478686. Limited spaces.
8: Zabardast hits.
9: Shuru ho jaye to rukte nahi.
8: Playing Bollywood's biggest hits.
10: हम पर रवि का साथ है और दो पर आपके लिए लेकर आएंगे समाचार और आप हमें सुन रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर सुनते रहिए कीप हमिंग
8: द बीट ऑफ बॉलीवुड
11: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है

0: listening to Avineet.
1: हम पर इस जस्ट आफ्टर टू मैं हूं अभी आपके साथ में। कई जगह पर आप अपनी छुट्टियों से वापस लौट रहे होंगे, अपने घर की ओर पहुंच रहे होंगे, तो ऐसे में ड्राइव कीजिएगा होले होले और साथ में हम के साथ में बिल्कुल ट्यून्ड इन रहिएगा ताकि आपका जो सफ़र है बिल्कुल मज़ेदार रहे एंड हम आपको आपके घर तक सेफली पहुँचाए। सुनते रहिए और गाने को और साथ में ड्राइव सेफली।

हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूँ। और जबकि ये वर्ल्ड कप मंथ है, ऐसे में आपके लिए फुटबॉल की दुनिया से नवीनतम जानकारियाँ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते चलेंगे कि वर्ल्ड कप में क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो बिल्कुल लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, और इनमें कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने अपने टीम के लिए स्कोर नहीं मेक किया है। इसके बारे में और भी बातें होती रहेंगी बस थोड़ी ही देर में।

0: ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: हाँ पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और बातें हो रही थी फीफा वर्ल्ड कप 2026 प्रेडिक्शंस के बारे में, जहाँ पर जो लोग फुटबॉल को काफ़ी क्लोजली फॉलो करते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं गेम के, वो कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट करते रहते हैं। तो 2026 फीफा वर्ल्ड कप को लेकर उनका कहना है कि ये जो नया फॉर्मेट है जहाँ पर 32 ट्रेडिशनल टीम्स की जगह 48 टीम्स पार्ट ले रही हैं, इसमें इसका मतलब ये होगा कि 8 की जगह 12 पूल ग्रुप्स रहेंगी, इसके साथ में ढेर सारे मैचेस रहेंगे इन द ग्रुप स्टेजेस इटसेल्फ और एक लोंगा नॉकआउट फेज रहेगा, और इसके कारण इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज रहेगी फॉर द अंडरडॉग टीम्स ताकि वो जाकर आगे क्वालिफाई हो सके। और इस पर बातें करते हुए और भी बातें की गई हैं, एक्सप्रेस द्वारा बता रहे थे कि फ्रांस जबकि एक बैलेंस टीम लग रही है, साथ में ब्राजील ऑलवेज डेंजरस इन अटैक, और इंग्लैंड एक यंग स्क्वाड है जो आगे आ रही है, इसके साथ में अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियंस विद अ सॉलिड को, तो इन सभी के बीच में किसकी जीत होगी इस पर थोड़ी देर में और आपको कुछ ना कुछ बताएंगे।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Shop deals fit for a king at the warehouse. Like buy one, get one half price on toys, 50% off Garnier, and a JVC 55-inch smart TV for just $598. Hurry, ends Tuesday at the warehouse. Conditions and exclusions apply.
2: The Beds R Us King's birthday sale is on now with up to 60% off selected sleepyhead beds like Serenity Breeze, Queen Size, now from 1499. Don't miss the King's birthday sale at Beds R Us Manikau and Pukekohe.
3: Bollywood ke sabse bade hit gaane
4: kabhi bhi kahin bhi mast malang jaan
5: फिर जून का ये सफर है। मैं हूँ अभी आपके साथ में जबकि किंग्स हॉलीडे का पब्लिक हॉलीडे है, आप घर पर आराम कर रहे हैं। ऐसे में फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बातें हो रही थी। ऑप्टा सुपर कंप्यूटर, जी हाँ, ऑप्टा सुपर कंप्यूटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी जबकि AI का ज़माना है तो ये कुछ ना कुछ सिमुलेशंस करके और प्रेडिक्ट करती है कि कौन बिना ठहरेगी वर्ल्ड कप सोका कॉम्पटिशन के लिए। तो इस साल के लिए सुपर कंप्यूटर ने प्रेडिक्ट किया है कि स्पेन के ज़्यादा चांसेस है इस ट्रॉफी को लिफ्ट करने के लिए। तो अगर जो आप पूछेंगे कि कितनी बार पहले ऑप्टा ने प्रिडिक्ट किया है करेक्टली, तो द आंसर इज जीरो, क्योंकि 2022 टूर्नामेंट जो कतार में हुई थी वहां पर ऑप्टा ने कुछ 10,000 सिमुलेशंस को रन किए थे और उसके बाद में ब्राज़ील को प्रिडिक्ट किया था एज द प्री टूर्नामेंट फेवरेट टू विन द टाइटल, लेकिन ये हो नहीं पाया था। तो अब जबकि की बार इन्होंने स्पेन को प्रिडिक्ट किया है, वेदर इट गोज देयर वे या फिर आपकी फेवरेट टीम जीतती है, ये जो पता है इसका जो जवाब है हमको लगेगा एट द एंड ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप कॉम्पिटिशन।

0: You're listening to Avineet.
1: 104.2 FM साथ में रोवा पर मैं हूं आपका साथी ऑन योर फेवरेट डायल हम एंड वी आर हाफ वे थ्रू द शो जबकि 3 बज चुके हैं तो ऐसे में 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा. अभी ही आपने ट्यून इन किया है तो इस हवा पर भी आपका खास स्वागत करते हैं. इसी तरह से आपका साथ निभाता रहूंगा.

आपके लिए हम पर बारी बारी से कम्युनिटी न्यूज भी लेकर आते रहते हैं ताकि आपको पता रहे आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है। तो श्री राधा कृष्ण मंदिर ओकलैंड में अपना 25th एनिवर्सरी मना रहे हैं और ऐसे में इस मौके पर श्रीमद् भागवत कथा कहेंगे पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा और इसके जो ऑर्गेनाइजर है श्री राधा कृष्ण मंदिर एंड ओकलैंड इंडियन एसोसिएशन। ऐसे इसमें भाग लेने के लिए आप जा सकते हैं महात्मा गांधी सेंटर राधा कृष्ण मंदिर 145 न्यू नॉर्थ रोड ईडन टेरेस ओकलैंड में। याद रहे 25th एनिवर्सरी जो है ये मनाया जाएगा 5th ऑफ जून से, तो यहां पर जाकर आप इसमें भाग ले सकते हैं।

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
3: Shop deals fit for a king at The Warehouse. Like buy one, get one half price on toys, 50% off Garnier, and a JVC 55-inch smart TV for just $598. Hurry, ends Tuesday at The Warehouse. Conditions and exclusions apply.
4: Sounds like you've got a bloody busy week. Well, here's one more thing to add to your calendar. Don't worry, it's all good. It's an invite to a bloody important meeting. This National Blood Donor Week, get your blood group together and lock in a time to give blood or plasma. Each one of you could save lots of lives. Go to nzblood.co.nz to see if you can donate and book your bloody important meeting now. Give blood. Give plasma. Save lives.
5: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
7: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
8: TradeDepot.co.nz. Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vented dryer just $289. Heat pump dryer just $599. All-in-one washing machine and dryer $799. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
9: TradeDepot.co.nz.
10: Oi, you! Keen for a mint day out? Field Days is back at Mystery Creek and it's bigger than ever. Four massive days, over 1,000 exhibitors and heaps of gear, kai and good yarns. June 10 to 13, Mystery Creek, Hamilton, where town meets country and innovation meets good old Kiwi ingenuity. Don't miss the ultimate rural get-together. Field Days, good times, done Kiwi style. Grab your tickets now at fielddays.co.nz.
11: Zabardast hits.
12: Shuru ho jaye to rukte nahi.
11: Playing Bollywood's biggest hits.
13: Hum.
14: On the Waves of Hum par Avi ka saath hai aur aapko bata de aage community news mein Divya Shakti Charitable Trust ye 108 Akhand Hanuman Chalisa paath karne ja rahi hai 13th June ko. Yaad rahe 13th जून को 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ होने जा रही है. आपको सिर्फ जाना है रामकृष्ण मंदिर जो कि सिचुएटेड है 25 ओनस्लो एवेन्यू मेनेकाउ में. यहाँ पर आप सभी भक्तों को निमंत्रण दिया जा रहा है. प्रोग्राम कुछ इस तरह से सुबह 7 पर 13 जून को सुबह 7 पर स्थापना पूजा रहेगी. उसके बाद में 8 बजे से लेकर 6:30 बजे शाम तक चालीसा पाठ बाय वेरियस मंडलीज और उसके बाद में फिर हवन और आरती साथ में शांति पाठ भी रहेगी. उसके बाद में अगर जो आप इसमें भाग लेना चाहते हैं किसी तरह से तो 0210-299-1219 पर आप कॉल कर सकते हैं. और ये जो 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ है 13 जून को 25 ओनस्लो एवेन्यू मेनेकाउ में रहेगी.

0: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और जरूरी बातें भी आपके साथ में करते रहते हैं। तो इस बार के लिए आपको बता दें कि स्टोकिंग एंड हरेसमेंट अब न्यूजीलैंड में एक क्राइम हो चुका है और लेजिस्लेशन इसको डिफाइन करती है एक एक्ट के तहत कि आपको चार्ज भी किया जा सकता है। और कुछ ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पर आपको आपको कोर्ट ले जाया जा सकता है स्टोकिंग बिहेवियर के लिए, जिसमें स्पेसिफाइड है वॉचिंग, फॉलोइंग, लॉयटरिंग, निया ओ ऑब्स्ट्रक्टिंग, या फिर रिकॉर्ड कर रहे हो आप किसी को, या फिर किसी को कॉन्टेक्ट या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो जबकि आपको नहीं में जवाब मिल रहा है। तो इन सभी बातों से आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा, अवेयर रहिएगा, साथ में जितने भी आपके घर में उनको भी बताइएगा ताकि ये जान सके कि स्टोकिंग आखिर में है क्या और कौन से ऑफेंस में ये काउंट होती है और कैसे लोग इसके बारे में आवाज़ उठा सकते हैं।
1: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: The LifeWise Trust Big Sleep Out. Please donate now. On our southern heading north, traffic congested from up and over the Bombays from Ridge Road. An earlier crash at Rama Rama adding to that backlog. 21 minutes from Bombay Hills to Drury. It frees up from there until Mount Wellington with a busy patch. Northern heading south, busy after Wellsford towards Warkworth. Then it frees up. Free flowing on the southwestern out to the airport. And State Highway 16 out west running freely too.
2: Support Auckland's homeless by donating at bigsleepout.org.nz.
3: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
4: अपना बिन दिन कभी मिस ना करें, बस oaklandcouncil.govt.nz पे बिन डे सर्च करें, अपना एड्रेस एंटर करें और पता लगाएं। अगर छुट्टियों के लिए आपका बिन दिन बदला है तो तमाकी तुरुकी ऑल टुगेदर ओकलैंड।

आप सुन रहे हैं हम पर, मैं हूं आपका साथी। अभी आपको पता तो होगा कि आपके लिए ट्राइविजन इवेंट्स लेकर आ रहे हैं कृष्णा अभिषेक और साथ में राजीव ठाकुर को लाइव। ये जो कॉमेडी टाइमिंग, अगर जो आप देखना चाहते हैं एंटरटेनमेंट की पूरी रात आपको एंजॉय करना है, तो द ग्रेट आर्टिस्ट जो कॉमेडी करते हैं कृष्णा अभिषेक साथ में राजीव ठाकुर को आप लाइव देख सकेंगे इन द ग्रेट कॉमेडी नाइट। और आपको आना सिर्फ होगा विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर ऑन द 18th of July। और टिकट्स के लिए bookmyevent.co.nz पर जाकर अपने टिकट जो है आप खरीद सकते हैं। और अगर जो आपको बुकिंग के लिए ट्रबल हो रही है तो 0210-432-720 पर आप कॉल करके अपना जो बुकिंग के बारे में बातें कर सकते हैं। इसके साथ में एक और एक वंडरफुल इन्फॉर्मेशन ये है, लाजवाब बात यह है कि आपके लिए आफ्टर पे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो किस बात की देरी है, राजीव ठाकुर और कृष्णा अभिषेक आपको हंसाने के लिए, आपके फनी बोन को टिकल करने के लिए आ रहे हैं ऑन द 18th of July एट द विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर। गेट योर टिकट्स नाउ फ्रॉम bookmyevent.co.nz।

प्रोग्राम में आगे बढ़ते बढ़ते आपको बता दें कि अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट के सुनने के लिए आप ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजें। यहाँ पर सिंडी और रुजबे अक्सर अच्छे अच्छे गेस्ट को लेकर आते हैं और बातें करते रहते हैं, और अब की बार उन्होंने बातें की हैं WWE के सुपरस्टार शेंकी सिंह से, जो कि हरियाणा के छोटे गाँव से लेकर ग्लोबल स्टेज तक अपना जो सफ़र है ये तय किया है। और यहाँ पर काफ़ी ट्रिविया उन्होंने बताई है, कैसे उन्होंने सलमान खान के साथ में इन द फिल्म भारत में काम किया था, और सलमान खान के बारे में भी काफ़ी अपडेट्स इन्होंने दिया है। साथ में WWE की दुनिया से व्हाट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड, इसके बारे में भी बातें की हैं। तो ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजे और आपको यहां से एक लिंक मिलेगा। इसके अलावा आपके साथ में ब्रेकफास्ट अगर जो आप मिस कर देते हैं, विजय और पूजा जो होस्ट करते हैं, तो उसको सुनने के लिए आप BF लिखकर 5599 पर भेजिए।

0: Pinterest पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: TradeDepot.co.nz. Trade Depot now helps people.

0: Switch to Kiwi, switch to Tower.
1: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
2: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
3: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
2: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
3: Available at selected branches. T's and C's apply.
4: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
5: क्यों, क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 logic g, दैट्स 0800-564-424.
6: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें. पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए. auckland.gov.nz/where-it-goes पे. तमाकी तुरुकी, ओटुगेदर ऑकलैंड.
7: जबरदस्त हिट्स
8: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं.
7: Playing Bollywood's biggest hits.
9: हम पर रवि का साथ है. और आपको याद होगा 90s में एक फिल्म आई थी खलनायक, जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा काम किया था, बिजनेस काफ़ी अच्छा किया था. और उसी फिल्म को एक बार लेकर, फिर उस करेक्टर को लेकर, बल्लू बलराम को लेकर संजय दत्त एक नवीनतम फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं. और जो लेटेस्ट अपडेट्स है कि उन्होंने फेस्ट लुक उस करेक्टर का रिलीज़ किया था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने राजकुमार संतोषी को अप्रोच किया टू डायरेक्ट खलनायक रिटर्न्स, लेकिन राजकुमार संतोषी ने मना कर दिया. और अब यह है कि संजय दत्त अभी भी तलाश में है किसी ऐसे डायरेक्टर की जो इस एक्शन थ्रिलर को एक बार फिर उनके लिए डायरेक्ट कर सके. ये थी लेटेस्ट जानकारी आपके लिए बॉलीवुड से, जबकि हम आपका फेवरेट बॉलीवुड स्टेशन है.

0: हम पर दिस इज ओसम अवी कीपिंग यू कंपनी 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। आपको इस वीकेंड के जो सुपर रग्बी कंपटीशन हुए इसके बारे में भी बता दूं, जो फाइनल राउंड के जो कंपटीशन थे यहां पर इस वीकेंड पर क्रुसेडर्स ने हरिकन्स को हराया था 47-14 से, रेड्स ने फिजन ड्रुआ को हराया 45-24 से। इसके साथ में ब्रम्बीज ने मोना पसिफिका को फेस किया लेकिन गेम हार गए 21-19, ये एक अपसेट रहा। इसके साथ में चीफ्स और ब्लूज के बीच में जो खेल हुआ, चीफ्स ने ट्राउंस किया ऑकलैंड ब्लूज को 59-34 से। इसके साथ में फोर्स और वॉरटास के बीच में जो खेल हुआ वहां पर फोर्स केम आउट ऑन द टॉप 31-25 से। तो इसके बाद में जो क्वालिफायर्स थे टॉप सिक्स, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बस अभी थोड़ी ही देर में बताएंगे।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स,
3: ड्राइविंग यू होम, द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप दिलजीत तो
5: आए आए बताओगे यार।
3: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Bedzaras Manukau and Pukekohe. King's birthday sale on now with up to 60% off. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: The Bedzaras King's birthday sale is on now with up to 60% off selected sleepyhead beds like Serenity Breeze, Queen Size, now from 1499. Don't miss the King's birthday sale at Bedzaras Manukau and Pukekohe.
8: Ma, ek chhoti hoti hai na?
9: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी, जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
8: मुझे भी।
9: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
3: Doorbuster deals are on this long weekend at Noel Leeming. Snap up unmissable deals on tech and home appliances before they're gone. 3 days only, ends Monday 1st June while stocks last. Conditions apply. Doorbuster deals on now. Get in quick only at Noel Leeming.
10: Media Works complaints. How can I help?
11: My kids won't shut up.
10: I'm not sure that's our problem.
11: They keep reciting lines from one of your radio ads.
10: Aw, cute.
11: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
12: What do you want, son?
13: I want me some of that real southern chicken.
11: 28 times.
10: So where are you now?
11: Eating chicken.
14: Advertise with
15: Media Works.
14: New Zealand listens to us.
16: Playing Bollywood's biggest hits.
17: Project Gandhi.
0: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, और जबकि बातें हो रही थी सुपर रग्बी के बारे में तो जो टॉप सिक्स क्वालिफायर्स थे जो क्वालिफाइंग फाइनल स्केड्यूल के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, इनमें फ्राइडे जून 5 को हरिकन्स विल टेक ऑन आईसीटी ब्रम्बीज, जबकि हरिकन्स ने नंबर 1 पोजीशन पर फिनिश किया था और ब्रम्बीज ने नंबर 6 पर। तो ये खेल हेनरी स्टेडियम वेलिंगटन में रहेगा। इसके साथ में सैटरडे जून 6 को क्रुसेडर्स जो कि नंबर 3 पर थी पूल टेबल पर, और ये फेस करेंगे ब्लूज को एट नंबर 4 जिन्होंने फिनिश किया था एट 1 न्यूजीलैंड स्टेडियम क्राइस्टचर्च। इसके साथ में जो एक और एक मैच है चीफ्स और क्वींसलैंड रेड्स के बीच में, ये वेकाटो स्टेडियम पर रहेगी, एफएमजी स्टेडियम इन वेकाटो पर ये जो खेल है ये रहेगा। तो यही टीमें क्वालिफाई हुई हैं। वंस अगेन हरिकन्स टेक्स ऑन ब्रम्बीज, साथ में क्रुसेडर्स प्लेज ब्लूज एंड चीफ्स क्वींसलैंड रेड्स के खिलाफ अपना जो खेल है ये खेलेगी।

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: हम पर रवि का साथ है और हम जानते हैं काफ़ी लोग अपने छुट्टियां बिताने के बाद एक बार फिर वापस अपने घर की ओर मुड़ रहे हैं, रास्ते पर हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो आप सभी को याद करते हैं, होले होले ट्रेवल कीजिएगा क्योंकि काफ़ी जगहों पर ट्रैफिक भी हो सकती है, तो इससे फ्रस्ट्रेट बिल्कुल नहीं होइएगा और सफ़र करते रहिए. एंड सफ़र यानी हिंदी वाला सफ़र करते रहिए और हमें सुनते रहिए. हम पर हम आपका साथ देते रहेंगे 6 तक.

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर देखते देखते हम फाइनल आवर पर पहुंच चुके हैं, जबकि जस्ट आफ्टर 5 और 6 तक हमारा और आपका प्यारा सा साथ बना रहेगा आज के लिए। और 12 से आपने साथ दिया है और इसी तरह से इस आवर पर भी हमारे साथ में कीप हमिंग एंड कीप एंजॉयिंग, यही चाहेंगे कि फाइनल आवर तक भी आप साथ देते रहें और यूं ही साथ में मिलकर 6 तक इस सफर को तय करेंगे। 104.2 FM साथ में रोवा पर आपका खास स्वागत करते हैं।

ठोकरें खा खा पता चला, फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे।

न्यूजीलैंड्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन हम पर आपका स्वागत करते हैं और आपको बता दें कि आप रोवा पे तो हमारा साथ देते रहते हैं लेकिन इसके अलावा हम फेसबुक पेज हम 104.2 एफएम का जो फेसबुक पेज है इसे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि यहां पर भी जो लेटेस्ट अपडेट्स है ये आपके लिए हम डालते रहते हैं और इससे भी आप बिल्कुल अपडेटेड रह सकते हैं। तो अगर जो अभी तक आपने इसे फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर भी इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशंस साथ में अपडेट्स जैसा कि हमने कहा है यहां पर होते ही रहते हैं आपके लिए।

0: breakfast show with Vijay and Pooja.
1: Puri planning se aaye hain, shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है. ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन.
2: मेरे को समझ भी नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने.
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
0: है. 6 to 10 AM.
4: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
5: क्यों, क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
7: Oh my, oh my, Grey South Road, greater than ever.
8: South Auckland's buses just became a lot better.
7: Weymouth Road, way better buses.
8: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses and more.
7: Woody, no worries, MIT, A-OK.
8: Search AT, Better South Auckland Buses for details.
7: Airport, got your transport.
8: Then turn up and go.
9: Reliance Ventilation System.
10: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
9: Moisture और ventilation का problem लगता है.
10: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
9: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
11: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
12: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
13: मुझे भी
12: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
14: The Beds R Us King's birthday sale is on now with up to 60% off selected sleepyhead beds like Serenity Breeze, queen size, now from 1499. Don't miss the King's birthday sale at Beds R Us Manukau and Pukekohe.
15: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल.
16: Bathroom moisture from shower steam. It's a problem in most homes, so eliminate steam with a Shower Dome shower top. With Shower Dome, you get a warmer, drier bathroom and a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
17: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
0: Kabhi bhi, kahin bhi.
18: हम पर आपके साथ में ज़रूरी बातें भी होती रहती हैं, तो इस बार के लिए आपको ले चलते हैं बजट 2026 अनाउंसमेंट पर, जहां पर पिछले वीक हमने बजट को लेकर कुछ ना कुछ सुना है. तो चलो हमने सोचा आपके साथ में भी शेयर कर ले, जबकि बजट 2026 में अनाउंसमेंट हुई है. और एट अ ग्लांस अगर जो बजट को देखे तो इनका मेन मोटिव है कि न्यूजीलैंड की फ्यूचर को वापस लेकर एक सरप्लस और साथ में रिड्यूसिंग डेट शेयर ऑफ GDP तक पहुँचाए, यानी कि बैक टू सरप्लस डेज एंड रिड्यूसिंग डेट और शेयर ऑफ GDP. और इसको अचीव करने के लिए और जो बजट को तैयार किया गया है, और हेल्थ को 5.5 बिलियन इंक्रीज इन फंडिंग मिला है फॉर फ्रंट लाइन हेल्थ सर्विसेज. इसके साथ में फ्यूल रिस्पॉन्स के लिए भी एडिशनल फंडिंग फायर एंड एमरजेंसी को दी गई है. करेक्शंस साथ में पुलिस, कस्टम्स एंड एजुकेशन को भी दी गई है. और इसके अलावा अगर जो देखें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी बातें हुई है, और यहाँ पर बजट 2026 ने एक नई फंडिंग की ऐलान की है कि जहां पर एक बिल्ड किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर और इनेबल किया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी और साथ में लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए, और इसको लेकर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.8 बिलियन दिया गया है टू बिल्ड द कैम्ब्रिज टू पियरेरे एक्सप्रेस वे। तो ये भी बजट में था, इसका एक प्लान किया गया है। और इसके अलावा अगर जो आप देखें तो एजुकेशन को लेकर भी काफ़ी काम हुई है, एक $131 मिलियन का जो पैकेज है ये दिया गया है टू स्ट्रेंथन टीचिंग एंड लर्निंग, ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प किया जाए अपने रीडिंग राइटिंग और मैथ्स को लेकर ये इम्प्रूव कर सकें। तो ये सभी कुछ है अगर जो ग्लांस में आप देखें तो।

हम पर, मैं हूं अभी आपके साथ में, बस थोड़ी देर तक और हमारा और आपका साथ रहेगा। 6 तक हमने वादा किया था कि आपके साथ में बने रहेंगे, तो 6 के बाद में ही यहां से निकलेंगे और जाकर देखेंगे कि कैसे तैयारियां कर सके हैं अपने ट्रेवल के लिए। लेकिन अभी के लिए हमारा और आपका साथ बना है हम पर।

0: चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: हम Accurate Traffic.
2: Innovative Interiors, your luxury wardrobe specialist.
3: Coming up over the Bombays into the CBD, heading north on State Highway 1. It's still busy, but it is moving more freely than it had been earlier. There has been a crash, Papakura to Takanini northbound. There is a lane blocked there between Papakura and Takanini, so taking a bit of extra care. Everywhere else is looking pretty good, and if you're heading out to the airport, taking around 25 minutes.
2: Innovative Interiors, crafting wardrobe elegance. Discover more at innovativeinteriors.co.nz.
4: Fiji is on sale now at Flight Centre. Treat the family to

0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: This King's Birthday weekend, save up to 70% off at Bargain Blinds and Curtains. Sleep like royalty in elegant chairs or prep for winter with thermal lined curtains. Shop the royal sale at bargainblinds.co.nz now.
1: This is your invitation to a bloody important meeting. This National Blood Donor Week, put time in the calendar to give blood or plasma. Go to nzblood.co.nz and book your bloody important meeting now. Give blood. Give plasma. Save lives.
2: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडो जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल.
3: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
4: क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
5: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G. दैट्स 0800 564 424.
6: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है. क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें. गटरों को साफ रखें. खुली चीजों को बांध लें. अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें. अभी की गई तैयारी बाढ़ के तनाव से बचा सकती है. तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें. अधिक जानकारी के लिए विजिट aucklandemergencymanagement.gov.nz/floods.
7: Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vented dryer just $289, heat pump dryer just $599, all-in-one washing machine and dryer $799. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.

0: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
1: मुझे भी।
0: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाएं, खुशियाँ खिलाएं।
2: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
3: अपना बिन दिन कभी मिस ना करें, बस oaklandcouncil.gov.nz पे बिन डे सर्च करें, अपना एड्रेस एंटर करें और पता लगाएं। अगर छुट्टियों के लिए आपका बिन दिन बदला है तो तमाकी तुरुकी ऑल टुगेदर ओकलैंड।
4: MediaWorks Compliance, how can I help?
5: I've got this ad going around and around and around in my brain, and it's all because of you guys.
4: You.
5: It's all I can think about.
4: What does it sound like?
5: Yeah, I'd rather not.
4: Go on, why don't you have a crack?
5: Okay, got a plumbing problem.
4: Oh, I need a bit more than that.
5: They've got your back.
4: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
5: Oh, okay.
6: There's no better plumber to give it a crack.
4: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
5: No. I want a plumber.
7: Advertise with
8: MediaWorks.
7: New Zealand listens to us.
9: Joe's Supermart uses fibre for their payment systems, while staff secretly use fibre to share funny videos like the one Perry uploaded of his dog skateboarding down a street that happens to have an ad from Chorus which says New Zealand runs on fibre.
10: Do you know why so many of your neighbours are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mould and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer. Shower.

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: The beat of Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम

0: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
1: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
0: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी, कॉल 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
2: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा। कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाएं, खुशियाँ खिलाएं।
3: It's the final day of Rebel's King's Birthday Sale. Get up to 40% off store-wide on clothing, footwear, sports gear and more. Hurry, at least 25% off the entire store ends tonight at Rebel Sport. Stores open till 9 p.m.

0: See you online for T's and C's.
1: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट। squirrel.co.nz

0: करती हूँ कि तुम्हें मुझसे इश्क है?
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: I love you.
2: Yeah!

0: biggest hits.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Kya namaste, sat sri akal, assalamu alaikum, bula aapka swagat karte hain aaj ke is night cafe mein. Night cafe show jo main pehli baar kar raha hu yahan pe 8 se 12 abhi se leke 12 baje tak main yahan pe hu aap sabhi ke beech. Bahut sari baatein, bahut sari gupshup, bahut sare amazing gaane aap sabhi ke liye main leke aane wala hu. Shuruaat karte hain sabse pehle bahara gaane se. श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की आवाज में बहारा बहारा बहुत ही प्यारा गाना है. मेरा नाम कीर्तन है एंड देन यस आई विल बी हियर योर होस्ट योर दोस्त एंड ऑफ कोर्स आपके लिए यहां पे डीजे भी जो आपके लिए एक से बढ़कर एक गाने चलाने वाला हूं. सो यस लेट्स स्टार्ट विद बहारा सॉन्ग एंड आई विल गेट टू यू सम अमेजिंग लेटेस्ट खबर. लेट्स सी क्या आई है नई खबर थोड़ी देर में.

वेल ये सभी के लिए खबर ये है कि न्यूजीलैंड के मैकेंजी कंट्री में एक रेयर और स्टनिंग नेचुरल फिनोमेनन देखने को मिला, एक मूनबो यानी कि रेनबो एट नाइट। इस अनयूजुअल साइट ने लोकल्स और फोटोग्राफर्स दोनों को सरप्राइज कर दिया। वैसे मूनबो एग्जैक्टली रेनबो की तरह ही बनता है, लेकिन सनलाइट की जगह मूनलाइट यूज करके। इसके लिए फुल मून या फिर वेरी ब्राइट मून मॉइस्चर इन यूज होता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। इसके लिए फुल मून या फिर ब्राइट मून के साथ मॉइस्चर इन द एयर और परफेक्ट वेदर कंडीशंस का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। फोटोग्राफर्स ने बताया कि जब उन्होंने स्काई में मून बो देखा तो उन्हें पहले बिलीव ही नहीं हुआ। एक विटनेस ने कहा, इट मेड नो सेंस, क्योंकि नॉर्मली लोग रेनबो को डे टाइम फिनोमेनन के रूप में देखते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मूनबोज ऑफन ह्यूमन आइज को वाइट या फेंट दिखता है, लेकिन कैमराज लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफर के थ्रू उनके कलर्स को क्लियरली कैप्चर कर लेते हैं। मैकेंजी कंट्री का डार्क स्काई एनवायरनमेंट भी इस रेयर इवेंट को विजिबली बनाने में हेल्प करता है। सिंपल वर्ड्स में इमेजिन रात का टाइम हो, चांद चमक रहा हो और अचानक स्काई में रेनबो जैसी आर्क दिखे, बस वही रेयर मैजिक और मूनबो है। वाओ वाओ, मैं मतलब मूवी मैं फोटो देख रहा हूँ, इट लुक्स अमेजिंग यार, इट एक्चुअली लुक्स वेरी वेरी फैसिनेटिंग।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Night out with friends? See you there. Favourite band in town? Let's go! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
2: Bunnings Barbecues will be firing up across the country for a national sausage sizzle fundraiser for Motor Neuron Disease Action Month on Saturday, June the 6th. All funds raised go to MNDNZ for research and support for people living with MND. So come join us to show your support at your local Bunnings.
3: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
4: Bollywood ke sabse bade hit gaane. Azara le le tu maza.
5: Hum playing Bollywood's biggest hits.
6: Well, बॉलीवुड की थोड़ी बात कर लेते हैं। फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो को क्रिटिक्स ने एक रिफ्रेशिंग और रेयर चिल्ड्रन फिल्म्स के रूप में डिस्क्राइब किया है, स्पेशली ऐसे टाइम में जब फैमिली फ्रेंडली और किड्स फोकस्ड हिंदी फिल्म्स बहुत कम देखने को मिलती है। वैसे रिव्यू के मुताबिक फिल्म को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसका हार्ट वार्मिंग कंसेप्ट था, जहाँ स्टोरी टेलिंग, चिल्ड्रन के इमेजिनेशन, फैमिली बॉन्डिंग और पॉजिटिव वैल्यूज पर फोकस करती है। क्रिटिक्स का कहना है कि मूवी फ्लैशी सुपर हीरो स्पेक्टिकल से ज्यादा इमोशनल कनेक्शन और सिंपल एंटरटेनमेंट डिलीवर करती है, एक्चुअली करने की कोशिश करती है। फिल्म को वेल इंटेंशनड इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये यंग ऑडियंस को टारगेट करती है, मीनिंगफुल मैसेज भी देने की कोशिश करती है विदाउट बिकमिंग ओवरले प्रीची। फैमिली ऑडियंस और यंगर व्यूअर्स के लिए ये फिल्म एक क्लीन एंटरटेनमेंट ऑप्शन के रूप में प्रेजेंट की गई है। रिव्यू ये भी मेंशन करता है कि मूवी का एग्जीक्यूशन हर जगह परफेक्ट नहीं है, लेकिन सिंसियरिटी और इमोशनल वार्म्थ उनकी वीकनेस को काफी हद तक बैलेंस कर देती है। सो यस, अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ऑफ कोर्स यू ऑल नो कि द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो एक लाउड एक्शन पैक्ड सुपर हीरो फिल्म नहीं है, बल्कि एक फील गुड फैमिली मूवी है जो बच्चों के लिए इमेजिनेशन और पॉजिटिविटी का मैसेज लेकर आती है।

Well, yes, बात करेंगे आपके वीकेंड की. आपके वीकेंड कैसे गए यार? लाइक हाउ वाज योर वीकेंड? डू लेट अस नो कि कैसे रहे आपके, यू नो, ओवरऑल जितने भी जो समय आपने बिताया है वहाँ पे, कहाँ गए, क्या कैसे स्पेंड किया अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग वीकेंड को. जी हाँ, वेल यस, मेरा काफ़ी बढ़िया रहा. फ्राइडे और सैटरडे हमारा रहा इवेंट में, एक शो था वहाँ पे, हमने परफॉर्मेंस दी जो बहुत ही बढ़िया रहा. हमारा एक्सपीरियंस बेनाम्स के थ्रू, द बेनाम्स, जी हाँ, बहुत ही बढ़िया शो रहा हमारा. और परफॉर्मेंस, आई पर्सनली फील, ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम वी आर ग्रोइंग टुगेदर एज वेल, वी आर लर्निंग एज वेल, एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग, एंड वी आर गिविंग, वी आर ट्राइंग, वी आर एक्चुअली वर्किंग सो हार्ड टू गिव यू द बेस्ट म्यूजिक ever you could experience here in Auckland. अगर आपने, आप उनमें से एक थे, यानी कि अगर आप उनमें से एक थे जिन्होंने हमें एक्सपीरियंस किया है, तो डू लेट मी नो ऑन 5599. आप बताइएगा और मुझे लेट मी नो यार, अगर आपने मुझे सुना है तो बताना मुझे कैसा लगा. आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू गाइस. बट यस, एक पूजा भी हमने अटेंड करी है, मैंने और खुशबू ने. किसी घर पे जो ईयरली पूजा होती है वो अटेंड करी मैंने, जो काफ़ी अच्छी लगी हमें. और फीजी से हैं वो, हमारे नेबर्स, वहाँ पे गए थे हम. एंड देन आज दिन में, मॉर्निंग में एक्चुअली हमने एक शूट किया. मेरा एक जो नया म्यूज़िक वीडियो वो आ रहा है, बहुत ही जल्द आपको उसके बारे में अपडेट मिलेगा. सो यस, उसके बारे में आपको बताऊँगा. आप बस बने रहिए, और उसके बारे में आपके, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे द सिंगर साहेब के नाम से, या फिर VR3 फिल्म्स के थ्रू भी आप हम मुझे फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ अपडेट डालते रहेंगे. बट यस, ज़रूर बहुत ही जल्द आपको ये गाना मिलेगा, और ये सच में आपको बहुत पसंद आएगा, फॉर श्योर, ये इतनी मैं गारंटी लेता हूँ. जिसमें ऑफकोर्स लिखा है गाना मनप्रीत भाई, जिनका गाना है पप्पा टोए, उन्होंने गाना लिखा है. बहुत ही बढ़िया गाना है. और वो शूट करने के बाद ऑफकोर्स मैं थोड़ा घर गया, रिलैक्स चिलैक्स किया अपने बेटे के साथ, अपनी वाइफ के साथ आराम से. हमने थोड़ा टाइम पास के लिए कुछ एंटरटेनमेंट मूवी देखी, एंड देन आई एम हियर अराउंड 8 बजे से, जी हाँ, आपके बीच, आपके समक्ष. बहुत ही बढ़िया. वैसे ये जो अगला गाना है, बांध मेरे पैरों में पायल, सोनू निगम, सुनिधि चौहान की आवाज़ में. एंजॉय करिए.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे

अपने हिस्से के सारे अरमान दे दूं। इतना पागल हूं मैं तुम्हारे लिए, तुम मांगो दिल तो मैं जान दे दूं। एक

अब देखिए लॉन्ग वीकेंड जो है खत्म होने के कगार पे है एंड दिस इज द क्वेश्चन व्हिच आई वुड लव टू आस्क यू गाइस। आप मुझे बताइए, शॉपिंग भी गए होंगे आप, शॉपिंग भी करी होगी आपने मॉल्स जाके जहां पे भी आप गए होंगे, एंड डू लेट मी नो कि आपने अभी तक सबसे ज्यादा यूजलेस थिंग जो है वो क्या खरीदी। 5599 नंबर जहाँ पे मुझे आपको मैसेज करना है, यानी कि आप मुझे मैसेज करेंगे 5599 पे उस यूजलेस चीज का के बारे में बताओ। जी हाँ, कौन सी ऐसी चीज आपने खरीदी जो सचमुच बहुत ज्यादा यूजलेस थी। डांट भी पड़ी होगी या तो पेरेंट्स से या फिर पार्टनर से।

0: Mumbai's biggest hits. Budget Gandhi.
1: क्यों ना नमस्ते, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के नाइट कैफे पे, माय फर्स्ट एवर नाइट कैफे, जो शो में आप पब्लिक हॉलीडे के दिन कर रहा हूँ। माय नेम इज केतन और मैं 8 बजे से यहाँ पे हूँ। अभी बज चुके हैं 9, लेकिन मैं हूँ यहाँ पे रात के 12 बजे, लेकिन मिडनाइट शो तक। क्या बात है, मजा आ जाएगा आज वैसे। यस, काफी मैसेजेस मिले हैं। एक सवाल किया था मैंने कि आपने अभी तक कौन सी सबसे ज्यादा यूजलेस चीज खरीदी है। 5599 नंबर जहाँ पे आप मुझे अभी भी मैसेजेस भेज सकते हैं। लेट मी सी कौन किसके फनी मैसेजेस आए हैं, उन्हें हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे आफ्टर द लेटेस्ट खबर।

Well, अभी की लेटेस्ट खबर यह है कि फॉर्मर मनावातु पुलिस लीडर इंस्पेक्टर रॉस ग्रैंथम को ऑफिसर ऑफ द न्यूजीलैंड ऑर्डर ऑफ मेरिट ONZM से ऑनर किया गया है और उन्होंने इस रिकग्निशन को हम्बल फील करने वाला मोमेंट बताया है न्यूजीलैंड ऑर्डर ऑफ मेरिट में। वैसे ग्रैंथम ने न्यूजीलैंड पुलिस में 1979 में करियर स्टार्ट किया और डेकेड्स तक वेलिंगटन और मनावातु रीजन में वेरियस लीडरशिप रोल निभाई। उनका रीसेंट रोल मनावातु एरिया कमांडर 2023-26 रहा, जहां उन्होंने पुलिसिंग ऑपरेशंस और कम्युनिटी सेफ्टी इनिशिएटिव्स को लीड किया न्यूजीलैंड पुलिस। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक ONZM ऑनर उनकी सर्विस को पुलिसिंग और पब्लिक सेफ्टी के लिए दिया गया था। ये अवार्ड किंग्स बर्थडे ऑनर लिस्ट का पार्ट था, जहां न्यूजीलैंड के डिफरेंट सेक्टर्स के इंडिविजुअल्स को आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए रिकॉग्नाइज किया गया था। ग्रैंथम ने रिएक्शन में कहा कि ऐसे रिकॉग्निशन मिलना उनके लिए सरप्राइज और इमोशनल मोमेंट था और ये उनकी पूरी पुलिसिंग जर्नी को वैलिडेट भी करता है। सो यस, डिकेड्स की सर्विस के बाद उन्हें नेशनल लेवल पर ऑनर मिला है और वो इसे एक टीम एफर्ट अचीवमेंट की तरह देखते हैं, सिर्फ पर्सनल अवार्ड की तरह नहीं।

0: driving you home?
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला.
3: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
4: अच्छा आप दिलजीत तो
3: आए आए बताओगे यार.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. King's Birthday Sale on now with up to 60% off. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
5: At Bunnings Trade, we've got your next build covered from foundation to finish. With our estimating and takeoff service, our team provides costings and calculated quantities, then partner with local suppliers to keep you covered throughout your build. Call us on 0800 134 872. Bunnings Trade.
6: Adore your floor for less with Flooring Extras.

Well, Priya कहती है, I bought a fancy water bottle with time markers. I still forgot to drink water. पानी पियो भाई, पानी पियो. मैं भी अभी देखो आज कॉफी नहीं, आज ना ग्रीन टी पीऊंगा मैं. सो यस, अभी बहुत गर्म पानी है तो थोड़ी देर में पीऊंगा, अभी हाल फिलहाल तो मैं पी नहीं सकता. और साथ में जो कलर है वो भी निखर के आ रहा है. देव कहते हैं, आई बॉट एन अब रोलर. ये क्या होता है? थिंकिंग आई वुड गेट 6 packs. अच्छा, इन अ वीक. इट्स नाउ अ कोट हैंगर. आई बॉट एन एब. अच्छा, एब्स. ओके ओके, नाउ आई गॉट इट. आई बॉट अ ab roller thinking I would get 6-pack abs in a week. It's now a coat hanger. Very funny, very funny. Anjali kehti hai, bought self-help books and never opened them. Karan kehte hai, bought a phone tripod used once for a blurry video. Okay. Neha kehti hai, bought expensive kitchen gadgets but eat noodles most days. ये तो है यार, मतलब. बट थैंक यू यार आपके सारे मैसेजेस के लिए. एक और जस्ट आया अभी, बॉट योगा मैट. इट्स नाउ परमानेंटली ऑन द फ्लोर एज डेकोर. ये सारी चीज़ तो है. बट थैंक यू सो मच, काफ़ी फनी मैसेज भेजे आपने. और बस आप ऐसे ही सुनते रहिए. अगला जो गाना है आप सभी के लिए मेरी तरफ से.

वेल, आज 1 जून है, यानी कि नया महीना शुरू हो चुका है, उसकी पहली तारीख है। और बात करते हैं कौन सी आज के दिन घटना घटित हुई थी, यानी कि कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो काफी पॉपुलर भी हुआ था, प्लस ऑफ कोर्स हिस्ट्री में भी रिकॉर्ड हो गया। वेल, आज के दिन यानी कि 1 जून 1960 के बाद है जब न्यूजीलैंड का टेलीविजन एरा ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, जब ऑकलैंड से पहला ऑफिशियल टीवी ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिट किया गया। ये ब्रॉडकास्ट शॉटलैंड स्ट्रीट स्टूडियो से रात 7:30 बजे स्टार्ट हुआ था और टोटल अराउंड 3 आवर्स चला। उस टाइम ये सिर्फ ऑकलैंड एरिया तक ही अवेलेबल था, यानी पूरी कंट्री में टीवी नहीं पहुंची थी शॉटलैंड स्ट्रीट। यहाँ पर जैसे फर्स्ट एवर टीवी नाइट में मिक्स कंटेंट था, इम्पोर्टेड शोज जैसे द एडवेंचर ऑफ रॉबिनहुड, एक लाइव इंटरव्यू विजिटिंग ब्रिटिशर्स बैलरीन के साथ, और लोकल परफॉर्मर ऑफ हॉवर्ड मैरिसन क्वार्टेट भी इंक्लूडेड था। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस टाइम टीवी बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी थी न्यूजीलैंड के लिए। लोग पहली बार लाइव मूविंग पिक्चर्स घर के अंदर देख रहे थे, जो उस एरा में काफ़ी रिवॉल्यूशनरी एक्सपीरियंस था। सो यस, 1960s में न्यूजीलैंड ने ऑफिशियली टीवी एज स्टार्ट की और उस एक ब्रॉडकास्ट ने पूरे कंट्री के मीडिया और एंटरटेनमेंट का फ्यूचर जो है उसे चेंज कर दिया।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या
3: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।

0: सबसे बड़े हिट गाने
1: कभी भी कहीं भी।
2: Well, ये रहा मेरा सवाल। मेरा सवाल ये है कि what's something you are too old for but still enjoy? जी हाँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप बहुत बड़े हो चुके हैं उस चीज़ के लिए बट फिर भी आप enjoy करते हैं। मैं अगर बताऊँ, मुझे गेम्स, वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है। मैं हो चुका हूँ बड़ा बट आई स्टिल इन्जॉय इट लाइक अ किड। जी हाँ, और छोटे छोटे गेम्स लाइक नॉट लाइक COD एंड ऑल, वो तो मैं, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता ऑनेस्टली, बट मोबाइल गेम्स जो होते हैं कार रेसिंग, क्रिकेट या ये सब मैं बहुत खेलता हूँ। आप मुझे भेजिए 5599 पे, व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच आर टू ओल्ड फॉर बट स्टिल एन्जॉय।

0: biggest hits.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Kia ora, namaste, sat sri akaal, aapka phir se swagat karte hain aaj ke night cafe mein. Mera naam Ketan hai, main hoon midnight tak, yani ki 12 baje tak raat ki. ठंड बढ़ रही है बट लकीली स्टूडियो और यहाँ पे पूरे मीडिया वर्क्स में काफ़ी अच्छा बढ़िया तरह का टेम्परेचर उन्होंने सेट कर रखा है विच इज़ ग्रेट विच इज़ अमेजिंग. आप भी बने रहिए. जी हाँ, वैसे अगर ठंड है तो आप भी हीटर चला दीजिए या फिर आई वुड से कि गर्म कपड़े पहने और गरम गरम चीज़ खाइए, बहुत सही है. और वेदर का देखिए बाहर यार, बहुत सुबह से बहुत ही हवा है. एक्चुअली सुबह से नहीं, कल से ही बहुत हवा है, तो आउटडोर एक्टिविटीज़ करने में तो थोड़ा मुश्किल हुई. अरे एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, हमारी जो शूट हुई थी वो एक्चुअली म्यूजियम में भी हुई. मैं पहली बार म्यूजियम गया हूँ, ऑकलैंड म्यूजियम अंदर, तो आई एम बट सरप्राइज कि इतनी खूबसूरत चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे है एंड आई हैव नेवर बीन टू ऑकलैंड म्यूजियम बिफोर. तो मैं ऑब्वियसली शूट के पर्पज से गया था, तो आई वॉज विथ वन ऑफ माई फ्रेंड जो कि फिल्म कर रहा था एंड ऑफकोर्स मनप्रीत भाई जो जिन्होंने गाने लिखे हैं उनके साथ गया था. तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. जैसे वहाँ से फ्री हुआ मैंने खुशबू को बोला दैट आई थिंक आई शुड ब्रिंग यू गाइस हियर, यू दे शुड कम हियर. और देखते हैं अगर नेक्स्ट वीकेंड में हमें प्लान टाइम मिलता है तो डेफिनेटली हम तीनों आएंगे, तीनों एज इन मैं, खुशबू और इहान. लेट्स सी यार. बट आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा, हाउ मच वुड यू रेट ऑकलैंड म्यूजियम आउट ऑफ 10? मुझे तो बहुत फैसिनेटिंग लगा, लाइक आई वुड डेफिनेटली गोना गिव इट 10 आउट ऑफ 10.

वेल, न्यूजीलैंड में लेटेस्ट अपडेट ये लेके आया हूँ कि उनके मुताबिक फ्यूल स्टॉक्स जो है वो काफी स्टेबल और स्टडी है अभी हाल फिलहाल, और एक्स्ट्रा डीजल शिपमेंट्स अब कंट्री की तरफ रूट कर रहे हैं, मतलब सप्लाई चेन में कोई इमीडिएट शॉर्टेज का सिग्नल नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल सभी कैटेगरीज में स्टॉक्स नॉर्मल रेंज के अंदर और मिनिमम रिक्वायरमेंट से ऊपर बने हुए हैं। रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से फ्यूल शिपमेंट्स रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यू हो रही है और सिस्टम स्मूथली ऑपरेट कर रहा है। लेटेस्ट फिगर शो करते हैं कि पेट्रोल और जेट फ्यूल थोड़ा फ्लक्चुएट हुए हैं, लेकिन डीजल स्टॉक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है। ओवरऑल पिक्चर यही है कि सप्लाई चेन हेल्दी फ्लो में है और इम्पोर्ट स्केड्यूल्स भी स्टेबल हैं। अथॉरिटीज का कहना है कि एडिशनल डीजल कार्गोज एन रूट होने से नियर टर्म स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, स्पेशली ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और फ्रेट सेक्टर्स के लिए जो डीजल पर हैवीली डिपेंड करते हैं। जी हाँ, तो फ्यूल का कोई क्राइसिस नहीं है, सप्लाई स्टेबल है और एक्स्ट्रा डीजल आ रहा है तो सिस्टम और कंफर्टेबल हो जाएगा। This is the future, man.

ये रहे मैसेजेस जो मैंने एक सवाल किया था थोड़ी देर पहले कि कौन सी ऐसी चीज है जो आप बहुत ज्यादा ओल्ड हो उस चीज के लिए बट स्टिल एंजॉय, लाइक व्हाट इज द वन थिंग यू आर टू ओल्ड फॉर बट स्टिल एंजॉय. जवाब मिला है रवि भाई का, स्टिल आर्ग्यूइंग विद माय सिब्लिंग्स ओवर द टीवी रिमोट लाइक आई एम 12 इयर्स ओल्ड. दैट इज सो क्रिएटिव यार, क्रिएटिव और दैट इज सो फनी एज वेल. प्रिया कहती है कार्टून्स, आई विल एक्ट लाइक इट्स फॉर द किड्स बट आई एम फुली इन्वेस्टेड. So cool. मेरे को भी कभी कभी पसंद आते थे कार्टून एंड आई लव लाइक ये जो फिक्शंस वाली जो मूवी होती है ना, मेरे को बहुत पसंद आती है. बाइंग स्नैक्स एट द डेयरी एट 11 p.m. लाइक आई डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज द नेक्स्ट डे. दैट्स कूल. अंजलि कहती हैं स्लीपिंग विद माय टेडी बियर नो शेम. ये मैंने देखा है काफ़ी लोग पसंद करते हैं, लाइक दे नीड टू हैव समथिंग बिसाइड आई मीन नॉन ह्यूमन आई वुड से. करण कहते हैं माउंट रॉस्कल से प्लेइंग फीफा लाइक इट्स अ वर्ल्ड कप फाइनल एवरी टाइम. नेहा कहती हैं स्विंगिंग एट द प्लेग्राउंड व्हेन नो किड्स आर अराउंड. दैट इज सो कूल यार, थैंक यू सो मच यार. एक और ने मैसेज किया अभी जस्ट, विक्रम कहते हैं वाचिंग WWE एंड स्टिल बिलीविंग इट्स रियल अ लिटिल बिट. वेल आई थिंक फॉर दैट यू नीड टू लिसन टू द पॉडकास्ट जहां पे आपको ये शायद जवाब मिल जाए कि WWE रियल होता है या नहीं होता है, जिसमें रुजबेन सैंडी ने नया पॉडकास्ट लॉन्च किया है और वो पॉडकास्ट काफ़ी एंटरटेनिंग है, काफ़ी फनी है, काफ़ी बढ़िया है. जहाँ पे शैंकी सिंह आए थे यहाँ पे, जो खुद एक 7 फुट टॉल है रेसलर WWE के, जी हाँ, और वो आपको बताएंगे कि WWE जो है वो असली होती है या नकली, ये सारी चीज़ बताएंगे. साथ में सलमान खान के साथ उन्होंने फिल्म भी की थी भारत, उसका कैसा रोल रहा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं. एंड ऑफकोर्स अगर ये लिंक चाहिए आपको डायरेक्टली तो आप ड्राइव लिखिए और 5599 में भेज दीजिए. एंड यस, वो जो वीडियो पूरा एडिट हुआ है वो मैंने किया है मेरी कंपनी के अंडर, ऑफकोर्स इंस्पायर मीडिया वर्क्स. तो आप कोई भी मार्केटिंग करवाना हो वीडियो से रिलेटेड या फोटोज रिलेटेड, डू लेट मी नो. रियल स्टेट वीडियोज़ हम उसमें माहिर हैं, काफ़ी सालों से उसका एक्सपीरियंस है, प्लस इवेंट वीडियोज़ भी हम करते हैं. तो यस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन जस्ट फ्लिक अ मैसेज ऑन इंस्पायर मीडिया वर्क्स. यू कैन लुक ओवर देयर इंस्टाग्राम पे, वहाँ से आप फॉलो भी कर सकते हैं. बट मेक श्योर कि ये पॉडकास्ट आप ज़रूर देखें. क्या क्या मार्केटिंग करिए ना, मज़ा आ गया.

वेल एक कम्युनिटी इवेंट्स भी हो रहे हैं यहाँ पे, उनके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। श्रीमद् भगवत कथा होने जा रही है, ऑर्गेनाइज जो है ऑर्गेनाइजर वो है श्री राधा कृष्ण मंदिर एंड ऑकलैंड इंडियन एसोसिएशन, उन्होंने किया है। 5 से 11 जून के बीच चलने वाला है, आप पहुंच जाइए। 25th एनिवर्सरी ऑफ श्री राधा कृष्ण मंदिर ऑकलैंड को सेलिब्रेट करें महात्मा गांधी सेंटर में, जी हाँ, 145 न्यू नॉर्थ रोड ईडन टेरेस ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, सुबह 9:30 बजे के बाद से यू माइट गेट समथिंग ओवर देयर ऑफकोर्स। उसके बाद 13 जून को होने वाला है 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, 25 ऑनस्लो एवेन्यू मनुकाऊ में रामकृष्ण मंदिर में 13 जून को, आप सुबह 7 बजे पहुंच जाइए वहां पे। साथ में ऑकलैंड मराठी एसोसिएशन इज डूइंग आनंद मेलावा ऑन एक्चुअली ये तो हो चुका है, सॉरी माय बैड, बट यस आप बाकी के जो इवेंट्स है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। इट्स गोना बी एन अमेजिंग यार, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग इवेंट, आप जाइए और सारे भक्तों को पूरी तरह से न्योता है वहाँ पे, जाइए और महाप्रसाद विल बी सर्व्ड एज वेल।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जोगी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: Divine, sirf Rova par.
1: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing, in association with RNZ News. Change is in the air.
2: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, e-waste हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। auckland.gov.nz/where-it-goes पे। तमाकी तुरुकी, ओल्टुगेदर ऑकलैंड।
3: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927 88 600.

0: Hollywood's biggest hits.
1: Kia ora, namaste, welcome back. You are listening to Midnight Cafe, Night Cafe with me, Ketan. जी हाँ, मैं यहाँ पे 8 बजे से हूँ और ये 12 बजे तक हूँ, यानी कि मिडनाइट तक हूँ. आप एंजॉय करिए. शुरुआत करेंगे ये तूने क्या किया. जावेद बशीर की आवाज़ में एंजॉय करिए. गाना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया है. और यस, मेरे शो के लिए भी आप बस सुनते रहिए अंटिल 12.

जला है, दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है।

Well, yes, weather, आपको पता ही है बाहर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, विंडी है और बारिश भी हो रही है. सो यस, न्यूजीलैंड में एक स्ट्रॉन्ग वेदर फ्रंट अभी कंट्री को हिट कर रहा है, जिसके कारण नॉर्थलैंड और टॉप ऑफ द साउथ आइलैंड में फ्लडिंग का सीरियस थ्रेट बन चुका है. नॉर्थलैंड रीजन तस्मान डिस्ट्रिक्ट मेट सर्विस के अकॉर्डिंग ये सिस्टम एक ह्यूमिड नॉर्दर्ली एयर फ्लो के साथ आया है, जो हैवी रेन और स्ट्रॉन्ग विंड्स ला रहा है. कुछ एरियाज में ऑलरेडी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है, जहां 24 आवर्स में हंड्रेड्स ऑफ एमएम रेन गिर चुकी है, स्पेशली नेल्सन और वेस्ट कोस्ट रीजन्स के आसपास. अथॉरिटीज का कहना है कि नॉर्थलैंड के लो लाइंग एरियाज और रिवर साइड रीजन में फ्लैश फ्लडिंग और सर्विस फ्लडिंग का हाई रिस्क है, और इस तरह तस्मान और बुलर रीजन में लैंड स्लिप्स और रिवर लेवल रिस्क का कंसर्न है. मेट सर्विस ने मल्टीपल हैवी रेन वार्निंग और वॉचेस इशू की है, और सिविल डिफेंस ने लोगों को एडवाइस किया है कि फ्लड प्रोन एरियाज में अलर्ट रहें, अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करें और इमरजेंसी अपडेट्स फॉलो करें. वेदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिस्टम एक स्लो मूविंग ट्रॉट है, इसीलिए रेन एक शॉर्ट बर्स्ट नहीं बल्कि एक्सटेंडेड पीरियड्स तक कंटिन्यू रह सकता है, जो फ्लडिंग रिस्क को और इंक्रीज करता है. सो यस, दैट इज द लेटेस्ट खबर. अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं उस तरफ, तो मेक श्योर कि आप एक बार वेदर चेक कर लें, रोड साइड भी चेक कर लें, एंड देन ऑफकोर्स अगर हो सके तो अवॉइड करें उस जरिए को जब तक ये वेदर नॉर्मल नहीं हो जाता है. बट अगर यू कैन नॉट, मेक श्योर कि आप एक बार हर एक चीज़ चेक कर लें बिफोर यू लीव योर हाउस.

0: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
2: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
3: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
4: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
5: अनस्टॉपेबल 18 साल वेट करने के बाद फाइनली एक नहीं दो कप जीतने का मौका मिल चुका है, जीत चुकी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। वेल यस, ये आखिरी मैच कल हुआ था बिटवीन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जहां पे आरसीबी वर्सेस टाइटन, गुजरात टाइटन के बीच मैच था, और गुजरात टाइटन के पास भी, दोनों टीमों के पास एक्चुअली अपना जो कप है उसको दो नंबर पे कन्वर्ट करने का मौका था, जिसमें गुजरात टाइटन की शुरुआत बहुत ही सही नहीं रही। साई सुदर्शन और शुभमन गिल 12 और 10 के बाद कोई भी खास कुछ खेल नहीं सका, अपार्ट फ्रॉम वॉशिंगटन सुंदर जो कि 50 बनाए उन्होंने 135 की स्ट्राइक रेट से। बट जवाब में आरसीबी वाज लाइक ऑन अनदर लेवल। जी हाँ, अगर ओपनर्स की भी बात करें तो 32 रन वेंकटेश अय्यर ने बनाए, विराट कोहली नॉट आउट रहे हैं 75 पर, यानी कि आखिरी जो छक्का था वो छक्का देख के मुझे वर्ल्ड कप 2011 याद आ गई, जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मार के वर्ल्ड कप जिताया था, उसी तरीके से इन्होंने भी छक्का मारा, उन्होंने जिताया नहीं था वर्ल्ड कप, बट यस ही वॉज द वन हु फिनिश्ड इट। सो यस, इस मैच में भी विराट कोहली ने 75 पे आखिरी छक्का लगाया और उससे ये मैच जीत गई। एंड ऑफकोर्स उसके बाद टिम डेविड ने भी 24 रन बनाया, कुछ बीच में एक दो विकेट गिरे थे शायद, सांसे फिर से रिलीव हो रही थी, बट इट वॉज द डे ऑफ गुजरात टाइटन। सो यस, दिस इज द सेकेंड टाइम आर सी बी हैज बिकम अ विनर। वाओ, व्हाट अ मैच यार, व्हाट अ मैच।

ये सवाल मेरे जहन पे भी था और आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे काफी ऐसे ड्राइवर्स होंगे, शायद उनके जहन में भी होगा. मेरा नाम केतन है वैसे. थैंक यू सो मच फॉर कीप लिसनिंग अंटिल नाउ. एंड यू जस्ट मैं जवाब देने वाला हूँ वो अबाउट ड्राइविंग के टाइम पर अचानक नींद या हैवी टायर्ड फील क्यों होते हैं. वेल, न्यूजीलैंड में इससे रोड सेफ्टी का एक काफ़ी सीरियस रिस्क होता है, बिकॉज उसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, हुए भी हैं. सो यस, पहला तो ये कि स्लीप शॉर्टेज, अगर आपकी नींद कम है, लाइक सबसे पहले तो आपने अगर 5 से 6 घंटे की नींद अच्छी नहीं ली है तो रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है और ब्रेन अलर्ट नहीं रहता, यानी कि लॉन्ग ड्राइविंग या फिर लेट नाइट ड्राइविंग इस रिस्क को और भी बढ़ा देता है. एंड सेम वर्क्स फॉर योर नॉर्मल रूटीन एज वेल, नॉट जस्ट ड्राइविंग बट नॉर्मल रूटीन एज वेल. उसके बाद बॉडी क्लॉक जो है वो रात या अर्ली मॉर्निंग आवर्स में बॉडी नेचुरल स्लीप मोड में होती है, इसीलिए उस टाइम ड्राइविंग करना ज़्यादा रिस्की हो जाता है. यानी कि अगर आप जिस टाइम सोते हैं और अगर उस टाइम पर आप ड्राइव कर रहे हैं तो अगेन थोड़ा इफेक्ट तो होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत हो चुकी होती है सोने की. मोनोटोनस ड्राइविंग, लंबी स्ट्रेट रोड्स, सेम सीनरी और कंटिन्यूस ड्राइविंग ब्रेन बोर्डम मोड ट्रिगर्ड कर देता है, और जिस वजह से हाईवे हिप्नोसिस भी कहते हैं. ये काफ़ी होता है साउथ में, बिकॉज यहाँ पे ऑकलैंड में उतना नहीं होता है बिकॉज इट इज़ सो बिजी, बट वंस यू लीव द ऑकलैंड आपको सेम चीज़ दिखती है, सेम ग्रीन, सेम ब्लू, सेम क्लाउड्स एंड देयर इज़ नथिंग टू सी अराउंड. तो उस वजह से आपका जो हिप्नोसिस वाली जो बातें जो अभी मैंने बताई है वो शुरू हो जाता है, और उस वजह से भी आपको नैप आने शुरू हो जाता है. तो उस टाइम तो मैं क्या करता हूँ, मैं आई ऑलवेज कीप समथिंग टू मंच सो दैट नींद नहीं आए मुझे. लॉन्ग ड्राइविंग विदाउट ब्रेक्स, जितना देर तक ब्रेक नहीं लोगे उतना फटीग बिल्ड होता है और अटेंशन ड्रॉप होता रहता है. तो यस, यू ऑलवेज नीड टू टेक अ ब्रेक जब जब आपको ऐसा फील हो. लाइफस्टाइल फैक्टर्स, स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, अनहेल्दी फूड या न्यू बॉर्न केयर जैसी सिचुएशन भी फटीग को इंक्रीज कर सकता है. सो मेक श्योर आप ये सारी चीज़ें भी ध्यान दें, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं या ऐसा कुछ होता है तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इस पे आप ज़रूर गौर करिए.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

0: एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत ही बढ़िया आज का दिन, आज का समय, आज की बातें और आज की जो नाइट कैफे की जो गपशप थी वो भी। जी हाँ, बस बने रहिए अभी तो ओवरनाइट। इफ यू गाइस आर स्लीपिंग, गुड नाइट फ्रॉम मी। इफ यू नॉट, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू सम अमेजिंग सॉन्ग। शुरुआत करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गाने से। बढ़िया, आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से सोइए और कल को काम भी होगा ऑफकोर्स। लॉन्ग वीकेंड खत्म हो रहा है अभी थोड़ी देर में, सो यस, मिलते हैं कल लंच बॉक्स शो में, मंडे टू फ्राइडे वाले शो में। जी हाँ, वैसे मंडे तो आज निकल गया है, बट यस कल से अंटिल फ्राइडे 12 से 3 वाला शो तो है ही। एंजॉय करते रहिए, गुड नाइट, टेक केयर एंड लव यू।
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड।

0: calm because Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम द बीट ऑफ बॉलीवुड,
2: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: नाइट फ्लाइट।

रेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Night Flight on Hum.
1: Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दिलजीत हो?
4: आए आए बताओगे यार।
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. King's birthday sale on now with up to 60% off. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
7: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
6: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
7: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
6: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
8: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
9: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Night Flight.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज
3: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने,
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
0: है। 6 to 10 a.m.

0: ठोकरें खा खा पता चला, फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे।
1: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
2: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
3: Night Flight.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: नसीला नसीला तेरा नैना चुराइले हमरा चैना

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर।
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927 88 600. Night Flight.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी तो हमने ना पहले कभी देखी थी ना कभी सुनी थी
1: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th ऑफ जून
3: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटेड एम
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
7: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम परफॉर्मेंस भी एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV जीरो इमिशंस मैक्सिमम सेविंग्स आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल
8: हम टाइम चेक हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक
9: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. Heavy rain has caused more highway closures at the top of the south. The road between Canberstown and Pelorus Bridge is out because of flooding. Sections of State Highway 60 are also cut off due to down lines and trees. Motorists are urged to avoid travel in these areas. There's disappointment and frustration at the King's Birthday long weekend road toll. 7 people have died, including 3 in a single crash near Waiuru. Superintendent Steve Greeley believes most fatalities can be avoided.
10: There is, in most cases, preventable and unnecessary. If it wasn't for a mistake on someone's part, most people would be with us today, but that's not the case, sadly.
9: Gas stakeholders are being put on notice with moves to make the market more transparent amid tightening supplies. Energy Minister Simeon Brown says the information currently on hand is fragmented, incomplete and outdated.
11: Really important when we've got dwindling supplies to be able to know exactly how much is being used and how much is available. Other countries have similar types of regulatory models.
9: In the US, there have been celebrations for the would-be 100th birthday of beloved Hollywood icon Marilyn Monroe. More than 1,000 Marilyns dressed up in her iconic white dress and platinum blonde wig, setting a new world record. Serena Williams in sport is returning to competitive tennis for the first time since 2022. The 44-year-old 23-time Grand Slam champion will play doubles at Queen's Club in London this month. And the All Whites play their first FIFA World Cup warm-up match tomorrow. Defender Tyler Bindon's looking forward to the game against Haiti in Florida.
12: I think it'll be a good test for us. You know, we can only get better from here and hopefully we can start on a positive note.
9: That's Football with Hisense, proud partner of the FIFA World Cup.
8: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
13: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
14: सूचित किया जाता है कि सुपर फिजी के स्वर्गीय राम शरण की पत्नी यानी महेंद्र शरण शैलेंद्र शरण उषा मारन सुमन शर्मा और प्रवीण वर्मा की मां उमावती शरण की मृत्यु ऑकलैंड अस्पताल में हो गई अंतिम संस्कार कल दिन में 1 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 02-111-911-07 पर संपर्क कर सकते हैं सुपर फिजी के स्वर्गीय राम शरण की पत्नी यानी महेंद्र शरण शैलेंद्र शरण उषा मारन सुमन शर्मा और प्रवीण वर्मा की मां उमावती शरण की मृत्यु ऑकलैंड अस्पताल में हो गई अंतिम संस्कार कल दिन में 1 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 02-111-911-07 पर संपर्क कर सकते हैं
13: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी
8: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
15: करते शिद्दत के साथ करते हैं
8: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
16: आज मौसम के बारे में कहा गया है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स एज वेल, तो इसीलिए आपको थोड़ा यू नो प्री प्लान करना है, तैयार रहना है खराब मौसम के लिए. इनफैक्ट आज तेज रफ्तार से हवा चलने के साथ साथ बादल गरजने की भी संभावनाएं जो है ये बताई जा रही है. अभी फिलहाल टेम्परेचर 17.8 डिग्रीज है, हाई ऑफ 20 एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर. आज का ओवरनाइट टेम्परेचर 12 डिग्रीज रहेगा और सनसेट आज का होने वाला है एट आज का सनसेट जो है ये होने वाला है 5:14 PM पर. The Breakfast Show.

0: Up.
1: 5 मिनट हो रहे हैं, 6 बजकर नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। मंगलवार है 2 तारीख जून, आज की ये सुबह आप सभी को बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो। वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, और आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आप सभी को भी अ वेरी गुड मॉर्निंग, आज की सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं। वेलकम टू द मंथ ऑफ जून, वेलकम टू विंटर ऑफिशियली,
1: एंड सरप्राइजिंगली वार्म स्टार्ट टू द विंटर। आज जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, टेम्परेचर कुड गो एज हाई एज 20 डिग्रीज, लेकिन आज कुछ गंभीर बारिश का अनुमान जो है ये भी लगाया गया है। खैर जो भी हो, विंटर में आपका स्वागत हम कर रहे हैं। 3 महीनों का ये जो दौर होता है ये काफी डिफिकल्ट होता है कई लोगों के लिए।
2: बिल्कुल, क्योंकि सर्दी ज्यादा होती है और ठंडी के मौसम में कई लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है, स्पेशली अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप नौकरी पर जा रहे होते हैं तो उस टाइम पर टू फेस सच अ वेदर इज अ बिट डिफिकल्ट, बट वी हैव बीन देयर, वी हैव डन दैट, और हमें पता है कि क्या क्या तैयारियां जो है ये करनी है। तो डेफिनेटली आप भी हमारे साथ बनी रहिएगा, क्योंकि आपके साथ आज के सफर को तो हम इंजॉय करने ही वाले हैं, लेकिन साथ में इन तैयारियों में भी आपके साथ हम जरूर जुड़ेंगे। फिलहाल तो जी
1: सॉरी, लॉन्ग वीकेंड अच्छा था आपका?
2: मैं भी वही बात करने जा रही थी वीकेंड के बारे में।
1: अच्छा,
2: कि वीकेंड जो है ये मेरा तो अच्छा था, इनफैक्ट इवेंटफुल था, हैप्पी था, लेकिन लॉन्ग वीकेंड भी बाकी लॉन्ग ये जो लॉन्ग वीकेंड था ये बाकी लॉन्ग वीकेंड जैसा ही निकला, एकदम शॉर्ट निकला मेरे लिए। और इसका तो एहसास मुझे एक्चुअली तब हुआ जब सैटरडे सुबह से लेकर मंडे रात कब हो गया मेरे को पता ही नहीं चला। और ये मैं एक्चुअली सोच रही थी मंडे रात को कि मैं ट्यूसडे को प्रोग्राम की शुरुआत में आप सबसे वीकेंड के बारे में ही पूछूंगी, तब जाकर मैंने ये रियलाइज किया कि इट वेंट सो फास्ट, इट वाज लॉन्ग वीकेंड बट आई फेल्ट इट वाज रियली शॉर्ट।
1: तो अच्छा है आपका लॉन्ग वीकेंड शॉर्ट रहा हो या फिर एक्सट्रीमली लॉन्ग रहा हो, जो भी हो उसके बाद अब एक नए वीक में, एक नए महीने में, एक नए सफर में, एक नई सुबह में आपका साथ देने के लिए हम आ गए हैं, और 4 घंटों के लिए आपका साथ देंगे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, और ग्लोबल हेडलाइंस थोड़ी ही देर बाद। और उससे पहले आज का सनी साइड अब भी हम आपके लिए इस प्रोग्राम में लेकर आएंगे।

0: Sunnyside Up.
1: आज की जो कहानी है बहुत खूबसूरत है और ये एक्चुअली हमें बताती है कि कभी कभी कुछ रिश्ते जो आप ऐसे नहीं बनाते हैं, मतलब दोस्ती के भी नहीं हो सकते हैं वो, और आपका जो घर परिवार का रिश्ता भी नहीं है, ये नॉट फैमिली वाइज रिलेटेड एंड ऑल, बट फिर भी वो कितना मजबूत होता है कि कभी कभी आपको क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, उस तरीके से भी वो आपको पहचान सकते हैं. सो ये कहानी इज फ्रॉम फ्लोरिडा इन USA. और क्या हुआ था कि नियरली एक डेकेड के लिए, यानी कि 10 सालों तक 78 ईयर ओल्ड चार्ली हिक्स इनका नाम है, ये एक फेमिलियर फेस रहे हैं एट ए लोकल रेस्टोरेंट इन फ्लोरिडा. और यहाँ पर ये कम से कम ट्वाइस अ डे जो है जाते हैं और ऑलवेज सेम मील ऑर्डर करते हैं. और इनका जो मील है उसका नाम है गम्बो विद लाइट राइस एंड नो क्रैकर्स, दैट्स द मील ही ऑर्डर्स. और यहाँ के जो रेस्टोरेंट स्टाफ हैं वो इनको इतने अच्छे से जानते हैं कि जब वो सडनली इनके रेस्टोरेंट उन्होंने आना बंद कर दिया, दे बिकेम अ बिट कंसर्न्ड. अमंगस्ट देम वाज द शेफ ऑफ दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट जिनका नाम डोनाल्ड स्टॉलवर्थ बताया गया है. उन्होंने इनको कॉल करने की कोशिश की सेवरल टाइम्स लेकिन विदाउट सक्सेस, कोई आंसर नहीं आया उधर से. सो ही ग्रू अ बिट मोर सस्पिशियस एज वेल. एंड आफ्टर सेवरल डेज हैज पास्ड विद नो साइन ऑफ हिम, तो डोनाल्ड जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया वो कि वो खुद चार्ली पर जाकर चेक करेंगे एट हिज अपार्टमेंट. एज ही वाज अबाउट टू लीव उन्होंने एक अंदर से एक आवाज जो है ये सुनी. वो गए है चार्ली के घर और वहां पर जाकर वो इसे ढूंढ रहे थे इनको घर के बाहर से. तो सडनली उन्होंने आवाज जो है ये सुनी कि अंदर से कोई उनको पुकार रहा है, नॉट टेकिंग हिज नेम बट आस्किंग फॉर हेल्प. अपेरेंटली चार्ली जो है अपने घर के अंदर ये गिर गए थे और उनको काफी गंभीर चोट भी आई थी. एंड ही हैड बीन लाइंग ऑन द फ्लोर फॉर डेज विद ब्रोकन रिब्स एंड सीवियर डिहाइड्रेशन, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ये कहाँ है, इनके साथ क्या हुआ है. और ये वहां पर पड़े थे जब तक कि डोनाल्ड डिडंट फील लाइक कुछ गड़बड़ है और उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि वो जाकर इन पर चेक करेंगे. सो एज सून एज ही रियलाइज्ड कि वहां पर कुछ गड़बड़ है और समवन फ्रॉम इनसाइड द हाउस इज क्राइंग फॉर हेल्प, उन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाया. फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स वहां पर आए और वो चार्ली को लेकर हॉस्पिटल गए जहां पर उनको ट्रीटमेंट दी गई. एंड विद टाइमली इंटरवेंशन ऑफ कोर्स उनकी जिंदगी जो है ये बच गई. नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स वाज कि ये जो स्टोरी है इट डिड नॉट एंड विद द रेस्क्यू, क्योंकि उनके रिकवरी के दौरान ये जो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है वहाँ के स्टाफ एंड एम्प्लॉइज दे हैड विजिटेड हिम कंटिन्यूसली, ब्रिंगिंग हिम हिज फेवरेट डिश जो वो ऑर्डर करते थे उनके स्पॉट से, उनके रेस्टोरेंट से. एंड द स्टाफ लेटर हेल्प्ड हिम मूव इनटू अ सेफर अपार्टमेंट जो उनके रेस्टोरेंट के पास हो, ताकि इट्स ईजियर फॉर देम टू स्टे कनेक्टेड विद हिम और उन पर नजर बनाए रखे, ताकि अगर कभी वापस से ऐसी कोई घटना घटे तो दे नो कि ओके ही इज नियर बाय, लेट्स गो क्विकली चेक ऑन हिम. और ये एक ऐसा जेस्चर है जिसकी मैंने कहा ना तो इनके बीच में दोस्ती है ना तो कोई रिश्तेदारी है, लेकिन फिर भी एक ऐसा रिश्ता है जहां पर दे फेल्ट लाइक कि दे नीड टू डू समथिंग फॉर दिस पर्टिकुलर गाय. वो एक कस्टमर है उनके रेस्टोरेंट के और ज्यादा कोई लेना देना है नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ही हैज बीन सो लॉयल टू दैट रेस्टोरेंट कि वो 10 सालों से उसी रेस्टोरेंट आ रहे हैं हर रोज ट्वाइस अ डे. एंड उसी वजह से वो रिश्ता उनका बना एंड उसी वजह से वहां के जो स्टाफ है उनको ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है. एंड दैट्स हाउ दे डिसाइडेड कि लेट्स फाइंड आउट. सो दिस इज अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड जहां पर काइंडनेस और ऐसी ह्यूमैनिटी आज भी जिंदा है.
2: और इसी के बलबूते पर यू कह सकते हैं कि इंसानियत में लोगों का विश्वास जो है ये भी बना हुआ है. तो कभी कभी ऐसा होता है ना हम लोगों के साथ भी कि कई लोग ऐसे होते हैं जो शायद दिन रात किसी एक पर्टिकुलर शॉप में हम जाते हैं तो चेहरे से एक दूसरे की पहचान हो जाती है, हालांकि वी मे नॉट नो द नेम, या फिर कोई पड़ोस में ऐसा रहता हो, उतनी गहरी दोस्ती नहीं हो, उतना आना जाना नहीं हो, लेकिन जान पहचान और अच्छे बोल चाल की वजह से हमेशा एक दूसरे का ख्याल हम रखते हैं. तो यही कहानी आज आपके लिए सनी साइड अप में. थोड़ी देर बाद ग्लोबल हेडलाइंस हम आपके लिए लेकर आएंगे.
3: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
4: देखो आ गए.

0: चाहे आप हमके दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी हैव द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
3: Award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
4: Kahani of Indelible Homes.
5: MediaWorks complaints. How can I help?
6: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
5: Thank you.
6: It's all I can think about.
5: What does it sound like?
6: Yeah, I'd rather not.
5: Go on, why don't you have a crack?
6: Okay, got a plumbing problem.
5: Oh, I need a bit more than that.
6: They've got your back.
5: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
6: Oh, okay.
7: There's no better plumber to give it a crack.
5: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
6: No, I want a plumber.
1: Advertise with
8: MediaWorks.
1: New Zealand listens to us.
9: Kino could take something small and make it big. In fact, it could turn $1 into $250,000. Will your little go a long way? Play in store or online at mylotto.co.nz.
10: Sun Tours case successful March 2026 Best of India Tour ke baad. Ab bookings open hai for Best of India September 2026 Tour. Delhi ke shopping, Agra ka Taj Mahal, Jaipur Amer Fort aur Elephant Ride, LP mein houseboat ka experience aur Aanche Mumbai ki Bollywood Studios visit with all buffet meals, rides aur 5-star accommodation. All for just $8,500 per person. Contact Anil on 0800 for Sun Tours. That's 0800 478686. Limited spaces.
11: The beat of Bollywood.
12: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Global Headlines.
14: सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस में, ईरान ने लेबनान में इसराइल के अटैक्स को सीज फायर का वायलेशन बताते हुए यूएस के साथ चल रही बातचीत को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है, जबकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें डील के लिए इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है। ईरानियन मीडिया के मुताबिक ईरान और उसके एलायंस अब ग्लोबल ट्रेड के लिए बेहद ज़रूरी बब अल मंदेब स्ट्रेट के रास्ते नए फ्रंट्स खोलने पर विचार कर रहे हैं, जिससे बड़ा इकोनॉमिक नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल की मिलिट्री को हिजबुल्ला के गढ़ में हमला करने के नए ऑर्डर्स दिए हैं और साउथ लेबनान में अपनी ऑफेंसिव को और तेज कर दिया है। इंडिया और म्यांमार ने कल सिक्योरिटी, ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प लिया, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के प्रेसिडेंट ओ मिन ऑंग लैंग के साथ दिल्ली में बात

0: और सप्लाईज डिलीवर किए। टेम्सवर्थ के अबटुआ में काम करने वाले ये व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था, लेकिन मैरिटल इश्यूज और पासपोर्ट खोने के बाद वो सबसे अलग हो गया और अब वियतनाम और टिमोलेस के बाकी लोगों के साथ वहां रह रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने एक बार फिर आईपीएल टाइटल को अपने नाम कर लिया है। कल हुए फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत गुजरात टाइटंस के खिलाफ 5 विकेट से हुई। HSBC जो स्पेन सेवंस है उसमें मेंस और वेमेंस कंपटीशन को सप्तांत ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। मेंस डिवीजन में ऑस्ट्रेलिया की जीत साउथ अफ्रीका से हुई, जबकि वेमेंस कंपटीशन में ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत जो है ये रिकॉर्ड की गई है। उसके बाद इस सप्तांत फ्रांस सेवंस खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप से पहले कई टीमें इंटरनेशनल फ्रेंडलीज खेल रही हैं। आज सुबह मोंटेनेग्रो की जीत बल्गेरिया के खिलाफ 1-0 से हुई। अफगानिस्तान ने मालदीव्स को 1-0 से हराया। स्लोवेकिया 2-1। अभी 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। नॉर्वे की जीत स्वीडन के खिलाफ 3-0 से हो रही है, जबकि टर्की मैसेडोनिया से 2-0 से आगे है। कुछ देर बाद ऑस्ट्रिया और टूनिसिया का मैच खेला जाएगा। दिन में 11 बजे कोलंबिया कोस्टारिका का सामना करेगा, जबकि 1 बजे कनाडा और उज्बेकिस्तान का मैच खेला जाएगा। इन सभी मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस।
1: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
3: मैं लाऊं अपना ए गेम।
1: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: 27 मिनट रह गए हैं अभी 7 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर अगर आप हमारा साथ दे रहे हैं थैंक यू सो मच। बॉलीवुड में हर दिन हर समय कुछ ना कुछ नया आता रहता है और एक्ट्रेस अनीत पड्डा जो हैं इनके काम को बहुत ज्यादा सराहा गया था। वो कौन सी फिल्म थी जिसमें ये आई थी?
1: सैयारा
0: में इनके काम को बहुत पसंद किया गया था एंड उसके बाद उनकी आने वाली जो फिल्म है उससे एक वीडियो जो है ये लीक हो गया है।
1: अच्छा
0: हाँ वेल द मेकर्स और जो लोग इस फिल्म से जुड़े हैं वो उतने खुश नहीं हैं बट द इंटरनेट इज डेफिनेटली बजिंग और इस ये जो वीडियो है ये एक बहुत ही दमदार एक्शन सीक्वेंस है दैट इज मेकिंग वेव्स ऑनलाइन और इस ये जो सीन है उसमें एक लड़की जो है एक व्यक्ति को घसीटते हुए ले जाती है एंड टाइज हिज लेग्स टू अ रोप दैट्स हुक टू अ हॉर्स और ऐसा कुछ अनीत पड्डा ने पहले कभी नहीं किया और ये एकदम कहा जा रहा है रो है जो उस फिल्म की शूटिंग या उस फिल्म के सेट्स से रिलीज हुआ है या फिर लीक हुआ है सॉरी नॉट रिलीज हुआ है
1: आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये इनकी दूसरी फिल्म है जिस पर ये काम करने वाली है द फर्स्ट वन बींग सैयारा सो फर्स्ट वन तो काफी रोमांटिक फिल्म थी और अब दूसरी फिल्म एक्शन फिल्म है वेरी इंटरेस्टिंग लेट्स सी हाउ इट गोज। फिलहाल के लिए चलिए बॉलीवुड से जुड़ी और भी बहुत सी चीजें जो है ये सामने आई है द रो दैट हैज बीन गोइंग ऑन अबाउट रणवीर सिंह बींग बैंड बाय FWICE नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव ओवर डॉन 3 डिस्प्यूट को लेकर तो इस मामले में पद्मनी कोल्हापुरी जो कि वाइस प्रेसिडेंट है सिंटा की सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन की इन्होंने कहा है कि इस ऑनगोइंग डिस्प्यूट के चलते जिसमें एक्सएल एंटरटेनमेंट और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीनियर एम्प्लॉयज जो है ये शामिल हैं इस इशू के मामले में वो रणवीर सिंह के साथ खड़ी हैं और जो सिंटा बेसिकली जो सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन है वो उनको सपोर्ट कर रहा है रणवीर सिंह को सपोर्ट कर रहा है इस मामले में।
0: ओके सो लेट्स सी अभी यू नो सलमान खान जो है ये भी मीडिएशन के लिए आए हैं और रणवीर सिंह की टीम की ओर से एक स्टेटमेंट जो है ये आया है लेकिन आई बिलीव फरहान अख्तर ने अभी तक कुछ नहीं कहा है।
1: नो आई हैवंट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम हिज साइड ना ही किसी तरह का स्टेटमेंट उन्होंने कहीं पर रिलीज किया हो और ना ही तो समथिंग दैट हैज बीन गोइंग ऑन कि यू नो ये हो सकता है फरहान अख्तर ने इस मामले में कहा हो नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज गेट।
0: तो अगर कुछ अपडेट आता है ये हम आपके लिए लेकर आएंगे ओनली ऑन हम फिलहाल 23 मिनट रह गए हैं 7 बजने में
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा
3: डोंट माइंड लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है
4: Accurate traffic.
5: Mildale House and Land Packages.
6: It's rainy and windy with a high of 20. We have a heavy rain watch and a strong wind warning in place, which is causing some ferry and flight cancellations. On the northern, it's 44 minutes from Silverdale. It's busy near Snow Planet. On the northwestern, 19 minutes from Massey, slow near Lincoln Road. On the southern, 47 from Drury and 24 from Monaco. Southwestern free flowing at the moment.
5: Award-winning builders, wide range of homes. Mildale's Show Home Village, open daily. Everything's right here.
7: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें गटरों को साफ रखें खुली चीजों को बांध लें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें अभी की गई तैयारी बाढ़ के तनाव से बचा सकती है तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें अधिक जानकारी के लिए विजिट auckland emergency management.govt.nz/floods
8: Oakland, तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena Book your tickets on drytickets.co.nz For sponsorships call Karam Hundal on 027-514-6477
4: discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
9: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
9: Available at selected branches. T's and C's apply.
10: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
11: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
12: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994399 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: अभी तो लगभग 20 मिनट रह गए हैं सात बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स. थैंक यू सो मच. लंबे सप्ताहांत के बाद भी आप हमें भूले नहीं, आपने सुबह सुबह हमको याद किया, अपने मैसेजेस जो है ये हमारे पास भेजे. सबसे पहले मिस्टर मटा मटा, राम राम, जय माता दी, हैप्पी ट्यूजडे एवरी वन, हैव अ ब्लेस्ड डे. थैंक यू सो मच आपके वक्त और मैसेज के लिए. आपको भी इस दिन की शुभकामनाएं.
3: और गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, मैंडी की ओर से ये मैसेज आया है. थैंक यू सो मच मैंडी फॉर योर मैसेज एज वेल.
2: गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल हैव एन अमेजिंग डे. थैंक्स फॉर बीइंग द साउंडट्रैक टू आवर मॉर्निंग्स. बेस्ट विशेस अकू, थैंक यू सो मच. आपको भी इस सुबह की, इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं.
3: और बॉबी मान जी, लाइक एवरी मॉर्निंग, इनका भी मैसेज हमारे पास आ जाया सुबह 4 बजे. गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, एंजॉय द शॉर्ट वर्किंग वीक, स्टे ब्लेस्ड. जय बजरंग बली, जय सियाराम. आपको भी बॉबी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ और समय के लिए.
2: तो आज आपने हमें याद किया, शुक्रिया. वैसे अगर आप आज कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी का बर्थडे है, किसी की शादी की सालगिरह है, तो अपने मैसेजेस समय से पहले हमें भेजना ना भूलें, ताकि 7:30 बजे के बाद आज हम आपको विश कर सकें. और आपका नहीं तो शायद फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में किसी का बर्थडे या शादी की सालगिरह हो, तो वो भी आज आप हमें बता सकते हैं 5599 पर.
3: एब्सोल्युटली. और आपको ये बता दें कि ये जो वीक है 2nd of June, आज से इसकी शुरुआत जो है ये हो रही है, मतलब वर्किंग वीक इन न्यूजीलैंड. कल तो छुट्टी थी, तो शॉर्ट वीक है ये. और देखते ही देखते कब ट्यूसडे से फ्राइडे आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा. बट रिमेम्बर, टुमारो इज़ वेंसडे एंड टुमारो इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं. तो काफ़ी दिनों से चलता आ रहा ये पावरबॉल जो है हैज़ नॉट बीन स्ट्रक, एंड फॉर टुमारो द पावरबॉल जैकपॉट विल बी $28 million.
2: वाओ, 28 बिग मिलियन डॉलर्स.
3: एब्सोल्युटली. तो अगर आप भी जैसे कि मैंने कहा अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, टुमारो नाइट वुड बी द नाइट टू ट्राई दैट आउट.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Tubo jao, papi ho. Tubo jao.
2: Driving you home.
3: The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने।
6: वो भी I love you वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ भी किसने बनाया? वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप दिलजीत तो?
5: आए आए बताओगे यार।
3: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Monaco and Poke Koi. King's birthday sale on now with up to 60% off. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Accurate traffic.
7: 15% off airport parking.
8: Morning, we have a heavy rain watch and a strong wind warning in place, and it is causing a few delays to Gulf Harbour ferries and also to domestic flights. On the northern, it's taking an hour from Silverdale with heavy patches all the way to the city. On the northwestern, 38 from Massey. On the southern, it's an hour 28 from Drury with heavy patches at Green Lane, and it's slow on the southwestern.
7: 15% off Auckland airport parking. Book now using promo code EARLYBIRD. Conditions apply.
9: Trade Depot now helps people in Auckland save hundreds on hardware. Double power points, $7. Clear silicone sealant, $4. Painter masking tape, $2. Stainless steel flexi hoses, $4. Save hundreds on hardware, tools, plumbing, electrical and paint supplies. Only at Trade Depot in Onehunga or shop online.
10: This is a message on preparing for earthquakes from the Natural Hazards Commission.
11: Whoa!
12: Whoa!
11: Whoa!
12: Whoa!
10: When it comes to earthquakes, a bit of prep can make a big difference. Things like securing tall or heavy furniture or making your risky chimney safer can turn a
11: whoa
10: into a
12: whoa.
10: Don't wait for the whoa. Protect your whānau. Search Quake Safe Your Place to learn more.
13: Kiwi kids are active kids, creative kids, sporty kids. Are you a wee bits kid?
14: Shop and scan to win a share of $800,000 at Woolworths. Just buy any three products from Cadbury, Makona, Coca-Cola, Chobani and more for your chance to win instant money off your shop. In-store only at Woolworths. T's and C's apply.
0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Breakfast Catch Up. Throwback.
15: आज के पहले थ्रोबैक का वक्त अब हो चुका है, जबकि 11 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। 11 मिनटों के बाद न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है ये हम आपके लिए इस प्रोग्राम में लेकर आएंगे, और आज तमाम चीज़ों के बारे में बातें होने जा रही हैं, और इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स जो है ये हम आपको बारी बारी से देते रहेंगे। और एक यूनिक स्टोरी आई है एक शख्स के बारे में जो क्या बोलते हैं कैन जूस,
16: हाँ गन्ने के जूस,
15: हाँ गन्ने का जूस जो है ये बेचता था। तो एक कस्टमर जो है ये उनके स्टॉल पर जाकर रुका, और जब उनके बीच एक सिंपल कॉन्वर्सेशन जो है ये चल रहा था, कॉन्वर्सेशन में ही ये पता चला कि उस स्टॉल का जो मालिक है उस वो इंस्टाग्राम पर भी है।
16: अच्छा, उनका अकाउंट है
15: इंस्टा पर। अकाउंट है इंस्टा पर, एंड ही एक्चुअली हैड 125,000 फॉलोअर्स।
16: वाओ,
15: दैट्स
16: इंप्रेसिव।
15: हाँ, उसके बाद जाकर ये जो पर्सन है इन्होंने सोशल मीडिया पर अपना जो एक्सपीरियंस जो है ये शेयर किया, और कहा कि भाई ऐसे ही आप किसी को एकदम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि पीपल आर डूइंग इट टफ बट दे आर मेकिंग इट हैपन।
16: Absolutely. और आजकल के ज़माने में you know, just because if someone is doing something जो शायद हम उस तरह से पहले उस पर्टिकुलर काम को नहीं देखते थे कि इसे एक अच्छा प्रोफेशन नहीं देखा जाता था, वो चेंज हो रहा है, वो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। एंड द रीज़न इज़ बिकॉज पीपल हैव एक्चुअली स्टार्टेड वैल्यूइंग द फैक्ट कि काम आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन सही तरीके से, लीगल तरीके से कर रहे हो, एंड यू आर अर्निंग मनी, पैसे आप कमा रहे हो, वो जरूरी है।
15: थोड़ी देर बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 17.3 degrees temperature अभी ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं. आज का हाई 21, कम से कम 12 degrees. बारिश होगी और आज सुबह के वक्त कुछ गंभीर बारिश हो सकती है एंड देन बाद में चलकर कुछ हल्की बारिश आज आप एक्सपीरियंस करेंगे. खुली जगह पर तेज हवाएं चलेंगी. सनसेट 5:14 PM पर होगा.
0: For sure, with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune.

0: Welcome to Morning Madness on Hum, playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए जारी है. अभी 3 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर. इस घंटे तो यू नो भाग दौड़ लगी रहेगी. घर में इधर से उधर बच्चों को स्कूल जाना है, पेरेंट्स नीड टू गेट टू ऑफिस, और इसी अफरा तफरी में आपको थोड़ा सेटल डाउन करने की हम कोशिश करेंगे. और पहली कहानी इस घंटे की इज अबाउट अ टूरिस्ट. ये इंडिया की है और ये गई थी आई थिंक अराउंड 1 साल पहले स्विट्जरलैंड घूमने.
1: ओके.
0: और जब गई वहाँ घूमा, एंजॉय किया, वापस आ गई, और उसके लगभग 1 साल बाद उनके पास आया एक ट्रैफिक इंफ्रिंजमेंट नोटिस.
1: नोटिस ही बोलने जा रही थी मैं.
0: ट्रैफिक इंफ्रिंजमेंट नोटिस यानी टिन आया, और वो था 150,000 रुपीस का लगभग. एंड द फाइन लैंडेड इन द मेल लगभग 1 साल छुट्टी के बाद, जिसकी बाद ये महिला जो है शी वाज कॉट ऑफ गार्ड. और उन्होंने कहा कि वो समझने की कोशिश कर रही हैं कि क्या वो अपील कर सकती हैं, कम करा सकती हैं या वेव ऑफ करा सकती हैं. और उन्होंने सोशल मीडिया पर जाकर सवाल पूछा, हैज एनीवन हियर रिसीव्ड अ ट्रैफिक वायलेशन फाइन फ्रॉम स्विट्जरलैंड मंथ्स आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अ वेकेशन. उन्होंने बताया कि उनको ये मिला है नीली आफ्टर ईयर ऑफ आवर रोड ट्रिप. वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या हम इसको अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. और अभी तक ओवर 1.3 मिलियन व्यूज इनके इस पोस्ट को मिल चुका है.
1: लेकिन जवाब मिला कि नहीं? व्यूज मिले वो तो सही है, लेकिन जो सवाल इन्होंने पूछा उसका जवाब इनको मिला कि नहीं मिला?
0: आई डोंट थिंक सो. लोग कह रहे हैं कि आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल टू वेव. ऑल्सो एज यू हैव टेकन इट ओवर टू सोशल मीडिया अथॉरिटीज, मै मेक श्योर टू सेट एन एग्जाम्पल कि अगर आप परदेश में भी रहते हैं, इफ यू कम इन एज अ टूरिस्ट यू नीड टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कंट्री.
1: एब्सोल्युटली. तो अब तो जरूर इनको एज एन एग्जाम्पल इस्तेमाल किया जाएगा. वेरी राइटली सेड दिस वन जो जिसने भी पॉइंट आउट किया है. बट लेट्स सी व्हाटएवर द सिचुएशन इज, होपफुली शी गेट्स एन आंसर एटलीस्ट. और अगर आंसर ना मिले तो भैया भरपाई जरूर कर दो, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू द सेम सिचुएशन एंड दिस इज क्वाइट अपसेटिंग. इनफैक्ट कुछ ऐसा, आई मीन नॉट इन अ डिफरेंट कंट्री, लेकिन यहीं पर हुआ था. एंड एक फंक्शन अटेंड करने के लिए गए हुए थे हम, जहाँ पर गेस्ट नंबर तो अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी इज समथिंग क्वाइट बिग, लेकिन पार्किंग उतना है नहीं. एंड व्हेन वी रीच देयर पार्किंग थी, लेकिन उन्होंने पार्किंग जो है 3-4 पार्किंग आई थिंक ब्लॉक करके रखी हुई थी, सेइंग कि वो कैटरिंग टीम के लिए है ना, आप वहाँ पे गाड़ी नहीं पार्क कर सकते. सो वी लाइक ओके, तो आप कहीं पे सजेस्ट कर सकते हो कि कहाँ पे पार्किंग आस पास हो, बिकॉज वी डोंट नॉर्मली गो टू दैट एरिया, इट्स नॉट समथिंग वी विजिट एवरी डे, तो हमको पता होगा ना. हमने पूछा कि अच्छा यहाँ पे कहाँ पे पार्क कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ये एकदम नेक्स्ट टू द बिल्डिंग वहाँ पर कुछ ऐसे शॉप्स वगैरह है, उनका पार्किंग आप इस्तेमाल कर सकते हो. इनफैक्ट हमारे फंक्शंस के लिए यहाँ पर आफ्टर आवर्स आप वो पार्किंग यूज होता है हर बार, तो यू कैन यूज इट. तो वी वेंट एंड पार्क दवा कहा दिया. एंड नॉट जस्ट अस, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल हु अटेंडेड द फंक्शन वो भी वहां पर अपनी गाड़ी वो जाकर लगा रहे थे, बिकॉज दे वर एडवाइज्ड बाय द पर्सन एट द पार्किंग लॉट कि आप वहां पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं. एंड फंक्शन खत्म हो गया. उसके बाद में आई थिंक फंक्शन के 2 हफ्ते बाद और 1 हफ्ते बाद एक फाइन आया, जो पहले किसी और के पास आया, तो उन्होंने पूछा कि आपके पास आया, फिर किसी और के पास आया, उन्होंने बोले आपके पास आया, तो ऐसे पता चला कि अच्छा इनके पास तो आ गया, हमारे पास नहीं आया, हमको लगा हमको फाइन नहीं मिला है. बट उनके फाइन मिलने के 2 हफ्ते बाद हमको भी फाइन आया, और फिर जितने लोगों ने वहाँ पे गाड़ी लगाई थी सबको फाइन आया. और फिर सबने ये सोचा कि लाइक आई मीन इट इज अनफेयर ना, बिकॉज वी वर एडवाइज बाय दैट पर्टिकुलर वेन्यू के जो पार्किंग लॉट में थे कि वहाँ पे आप डाल सकते हो, इट्स बीइंग यूज्ड, तो हमने डाल दिया. फिर जब हमने उनको अप्रोच किया कि दिस इज द सिचुएशन एंड दे सेड हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपने किया आप भरो. It was quite upsetting, in fact.
0: I don't know क्या situation है कैसे, but
1: how come you don't know, you were the one who parked the car.
0: मैं उसका नहीं बोल रहा, मुझे तो पता है क्योंकि मुझे इस भाई साहब ने बोला था कि आप जाकर बाजू में गाड़ी लगा दो, it's all good, yeah, all taken care of. हमने तो पार्क करके हम तो पार्क करके चले गए फंक्शन अटेंड करने के लिए. But the thing is, I really can't understand. अगर आप नहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास उस जगह की, या फिर यू डू नॉट हैव द अथॉरिटी, व्हाई आर यू इवन गाइडिंग योर कस्टमर्स और पीपल हु हैव कम टू अटेंड द फंक्शन, कि आप जाकर वहां पर
1: वहां गाड़ी
0: पार्क करो एंड दे एंड अप विद फाइंस व्हिच आई नेवर पेड.
1: Yeah, in fact, वो भी problem क्या हो गया? Because we were trying to understand what went wrong. Because we were not parking on our own. We were advised to park there, na? Otherwise, के आसपास free की parking देखकर या फिर paid parking भी चलो देखकर हम गाड़ी लगा ही देते. Because that would have been our responsibility. But this is something that has happened. And the good part out of this was कि the only person जिन्होंने सबसे पहले inform किया था कि fine आया, उन्होंने तो अपना fine pay कर दिया. और वो एक certain amount पे pay कर बच गए. अभी जिन बाकी लोगों ने किया ही नहीं था ना, उनका बढ़ता ही जा रहा है.
0: सो लेट्स सी, ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं. अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है यहाँ न्यूजीलैंड में पार्किंग को लेकर, डू लेट अस नो. लेट्स सी हमारे जैसा एक्सपीरियंस किसी का है या नहीं. हमने तो अभी तक फाइन नहीं पे किया, बिकॉज आई मीन वी वांट जस्टिस. अगर गलती होती
1: तो justice.
0: हमें इंसाफ चाहिए. अगर गलती अपनी हो तो पैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. गलती की है तो उसकी भरपाई भी करेंगे. लेकिन अपनी मर्जी से हमने जाकर गाड़ी वहां नहीं लगाई. हमको वहां पर गाइड किया गया एंड वी पार्क्ड इट देयर. और उसके बाद जब बोल रहे हैं तो सुनने के लिए कोई है ही नहीं. खैर जो भी हो, 10 मिनट हो रहे हैं फिलहाल अब 7 बजकर.
2: शादी कर सकते हैं
3: क्वीन विक्टोरिया की तरह.
2: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? तो वैसे ही लगेंगी. मलिका तिल फरेब.

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Tumo jao, papio. Tumo jao.
0: Rashi Vibes.
2: तो लीजिए भाई, इस हफ्ते का आपका पहला राशि वाइब मेष यानी एरीज। पैसे हासिल करने में अगर कुछ कठिनाइयों का सामना आप कर रहे थे तो ये दूर होंगी, लेकिन कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। आज मन में कुछ डर सा समाया रहेगा, लेकिन परिवार में सुख शांति जो है ये बनी रहेगी।
3: और आज वृषिनि टॉरस, आपके लिए बताया जा रहा है कि आज का दिन फाइनेंशियली देखा जाए तो प्रोग्रेस करने का दिन है आपके लिए। और साथ में आपके लिए ये भी कहा गया है कि फैमिली में आपको काफ़ी सपोर्ट और सहयोग मिलेगा, जिसकी वजह से आपका ये जो अच्छा समय चल रहा है इस समय का फायदा उठाइए और मेक सम इम्पोर्टेंट डिसीजंस, जिस पर काम करते हुए भविष्य में चलकर आपको और ग्रोथ जो है ये मिल सकता है।
2: मिथुन यानी जेमिनी, आज ऑफिस में काफी सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन परिवार के बारे में थोड़े वरीड आप हो सकते हैं। आज किसी एंटी एंटरटेनिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इनवाइट किया जा सकता है। ट्रेवल अच्छा जाएगा और अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से अपने बिजनेस को और आगे आप बढ़ाएंगे।
3: करकने कैंसर, आपके लिए कहा गया है जो जरूरी फैसले आपको करने हैं वो आज बहुत सोच समझ कर करने होंगे। थकावट महसूस करेंगे आज, बिकॉज पास्ट फ्यू डेज हैव बीन क्वाइट हैवी फॉर यू, स्पेशली इमोशनली एंड मेंटली। और आपके लिए ये भी कहा गया है कि लेन देन के मामले में आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, टेक योर टाइम, अच्छे से सोच समझ कर ही आप जो भी फैसला करने वाले हैं वो कीजिए।
2: सिंह यानी लियो, बिजनेस और बढ़ेगा, ऑफिस में प्रमोशन मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा है, घर में सुख शांति बनी रहेगी। यू विल बी रियली एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे टुडे। और आज घर बाहर लोग काफी इंक्विजिटिव रहेंगे आपके बारे में।
3: एंड उसके बाद में अगर आज देखा जाए तो कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि दूर से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, घर में मेहमान आएंगे और इनके साथ अच्छा समय बीतेगा आपका, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, जिसकी वजह से रिस्क से भरे काम भी आज आप जरूर कर पाएंगे।
2: तुला यानी लिब्रा, फायदा होगा लेकिन गैम्बलिंग वगैरह से दूर रहें। आज किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आप सभी तरफ से सफलता हासिल करेंगे, बिजनेस ट्रेवल आपका अच्छा जाएगा।
3: वृश्चिक ने की स्कॉर्पियो, दूसरे के झगड़े में ना पड़े ये सलाह आपको दी जा रही है, लेन देन में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। और आज आपके लिए कहा गया है कि फिजिकली आपको कोई चोट वगैरह पहुंचा सकता है या फिर इनफेक्ट आपको चोट लग सकती है, एंड दैट्स द रीजन आज आपको बहुत बहुत केयरफुल रहकर चलना है।
2: धनु यानी सेजिटेरियस, फायदे के मौके आपको मिलेंगे, पार्टनर्स का सपोर्ट रहेगा, बॉसेस काम से खुश होंगे, लेकिन दौड़ धूप ज्यादा करनी पड़ेगी। ये भी ख्याल रखें कि दूसरों के काम में बिल्कुल इंटरफियर ना करें, बिजनेस ट्रेवल आपका अच्छा जाएगा, तो वहीं आंखों में कुछ दर्द आज आप महसूस कर सकते हैं।
3: और उसके बाद मकर यानी कैप्रिकॉन, बिजनेस अच्छा चलेगा, घर और बाहर बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस आप एक्सपीरियंस करेंगे। आज आपके लिए कहा गया है हैप्पी रहेंगे, कोई बड़ा काम करने का भी मन आपका बन सकता है, जिसकी वजह से यू विल गेट सम गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, आज बिजनेस से अच्छा फायदा होगा और कुछ थकावट महसूस करेंगे, मे बी वीकेंड आपका थोड़ा हैवी रहा हो, और आज खुशियां होंगी, अपने आप को किसी तरह की चोट या बीमारी से बचाए रखें, पैसे भी आज आपको मिल सकते हैं।
3: एंड फाइनली आज मीन यानी पाइसेस के लिए बताया जा रहा है कि आज आपको सोच समझकर डिसीजंस लेने होंगे, पुराना रोग भी उभर कर आपको वापस से परेशान कर सकता है। आज ये भी आपके लिए कहा गया है कि गाड़ी चलाते समय, किसी भी तरह की मशीनरी का इस्तेमाल करते समय यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो दीज वर योर राशि वाइब्स फॉर टुडे। उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा कमाल का गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ मॉर्निंग मैडनेस में आगे बढ़ते हुए थोड़ी देर बाद आज का सेलिब्रिटी अलार्म,
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
4: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
5: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: तो जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, अब वक्त हो चुका है आज का सेलिब्रिटी अलार्म हम आपके लिए इस प्रोग्राम में लेकर आए।
1: तो आज जिनकी आवाज है ये आपको पहचाननी है, हम आपको एक छोटा सा ऑडियो क्लिप सुनाएंगे एंड वंस यू लिसन टू इट आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन हो सकते हैं। अगर आपने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया तो जल्दी से हमारे पास मैसेज कीजिएगा, BF लिखेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद में अपना आंसर अपना नाम लिखकर 5599 पर आप हमें भेज सकते हैं। और ये जो सेलिब्रिटी है इनके बारे में हम आपको बता दें, ये किसी भी इंडस्ट्री से हो सकते हैं। वी आर नॉट ओनली गेटिंग सेलिब्रिटी वॉइसेस फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, लेकिन हर एक इंडस्ट्री से ये हो सकते हैं, पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो। सो दैट्स व्हाई लेट्स सी कि आप में से कितने लोग हैं जो आज की सेलिब्रिटी की आवाज को अच्छे से पहचानते हैं।
0: लंबे सप्ताह के बाद आप वापस आए हैं तो हफ्ते की शुरुआत थोड़ा हल्का हम आपके लिए कर रहे हैं। अच्छी तरह से आज की आवाज जो है ये आप सुन लें।
2: 2+2/2 क्या
0: ये है आज के हमारे सेलिब्रिटी?
1: बहुत बहुत इजी है मेरे लिए। आई मीन आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी फॉर एवरीवन, बट मेरे लिए बिकॉज आई लव दिस एक्टर और बहुत यू नो पसंद करती हूँ मैंने, बिकॉज बहुत अच्छे लगते हैं मुझे जो भी काम करते हैं। सो एक तो मैंने बात ही बात में आपको ये बता दिया कि एक्टर है, पर क्या आपको पता है कि ये कौन है? बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू क्लूज टुडे, यू जस्ट हैव टू गेस। अगर किसी ने भी नहीं पहचाना इनकी आवाज तो यही आवाज आपके लिए हम तब तक लेकर आएंगे ऑन द ब्रेकफास्ट शो जब तक कि कोई इसे पहचान ना ले।
0: तो अच्छी तरह से आवाज एक बार फिर आप सुन लें।
2: 2+2/2 क्या?
0: तो अब अपना जवाब आपको हमारे पास भेजना है। सबसे पहले लिखें BF, उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम, और उसे हमारे पास भेज दे आज के सेलिब्रिटी अलार्म के लिए।
3: Hollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
5: मैं लाऊं अपना A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में, न्यूजीलैंड में किंग्स बर्थडे लॉन्ग वीकेंड पर अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में अभी तक 7 लोगों की जान जा चुकी है, जिसे पुलिस मिनिस्टर मार्क मिचेल ने पिछले 10 सालों का सबसे खराब रोड टोल और एक ट्रेजेडी बताया है। सबसे दर्दनाक हादसा कल सुबह स्टेट हाईवे 1 पर वायोरू के पास हुआ, जहां 2 गाड़ियां आमने सामने से टकरा गईं और इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले टोपो, डनीडन और वही की आइलैंड में भी मौत के मामले सामने आए थे। मेट सर्विस ने वार्निंग दी है कि आज सुबह नॉर्थ आइलैंड के ऑकलैंड, तारानाकी, वाइकाटो और टोपो जैसे इलाकों में तेज और लोकलाइज्ड हेवी रेन यानी गंभीर बारिश हो सकती है। देश के वेस्ट कोस्ट और नॉर्थ साउथ आइलैंड के कई हिस्सों के लिए 20 से ज्यादा सीवियर वेदर वार्निंग्स जो हैं ये जारी किए गए हैं। सुपर रग्बी कॉम्पिटिशन के क्वालिफाइंग फाइनल्स इस सप्ताह खेले जाएंगे। शुक्रवार की रात 7 बजे हरिकंस ब्रम्बीज को वेलिंगटन में होस्ट करेगा। शनिवार को 4:35 PM पर क्रुसेडर्स ब्लूज से खेलेगा, जबकि रात 7 बजे चीफ्स और क्वींसलैंड रेड्स का मैच खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप से पहले कुछ इंटरनेशनल फ्रेंडलीज खेले जा रहे हैं। आज सुबह नॉर्वे की जीत स्वीडन के खिलाफ 3-1 से हुई। टेकी ने नॉर्थ मेसिडोनिया को 4-0 से हराया। अभी ऑस्ट्रिया और ट्यूनिसिया के बीच मैच खेला जा रहा है। प्रथम हिस्से का खेल पूरा होने वाला है और अभी भी दोनों टीमें नील ओल से बराबर हैं। आज दिन में 11 बजे कोलंबिया कोस्टारिका से खेलेगा, जबकि 1 बजे कनाडा और उज्बेकिस्तान की भिड़ंत होगी। इन सभी मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
2: Breakfast show with Vijay and Pooja,
3: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Hum, accurate traffic.
4: Century Batteries, New Zealand's trusted battery.
5: Morning, it's rainy and windy with a high of 20. We have a heavy rain watch and a strong wind warning in place, causing a few cancellations to Gulf Harbour ferries and also to domestic flights. On the northern, it's 1 hour and 5 minutes from Silverdale to the city. The northwestern, 46 from Massey, it's congested. On the southern, it's 1 hour 35 from Monaco, and the southwestern is very busy.
4: As the cold mornings roll in, be ready with New Zealand's trusted battery, Century Batteries.

0: ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी तो हमने ना पहले कभी देखी थी ना कभी सुनी थी।
1: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th ऑफ जून।
3: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटेड एम।
4: Sun Tours के successful March 2026 Best of India Tour के बाद अब bookings open है for Best of India September 2026 Tour। Delhi की shopping, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और Elephant Ride, LP में houseboat का experience और आमचे मुंबई की Bollywood Studios visit with all buffet meals, flights और 5-star accommodation, all for just $8,500 per person. Contact Anil on 0800 for Sun Tours. That's 0800 478686. Limited spaces.
5: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रिस्पांस। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
7: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
8: Bunnings Barbecues will be firing up across the country for a national sausage sizzle fundraiser for Motor Neuron Disease Action Month on Saturday, June the 6th. All funds raised go to MNDNZ for research and support for people living with MND. So come join us to show your support at your local Bunnings.
9: Farmer's massive King's Birthday Sale is now on. Up to 40% off women's clothing and lingerie, and up to 40% off men's clothing and underwear. Plus, great deals on beauty. Savings fit for a king at Farmer's. Conditions and exclusions apply.
10: The beat of Bollywood.
11: World's best, hamari koi branch nahi hai.
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
10: Birthday greetings.
13: Iska birthday bhai?
14: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
13: Happy birthday to you.
15: मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज का दिन आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो। आज अपनी सालगिरह आप मना रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू आवर फ्रेंड सुखविंदर ऑन हर बर्थडे। मे ऑल हर डिजायर्स कम ट्रू, गॉड ब्लेस हर। अमनजीत या अमन है, साथ में मनजीत हैं, नीतू, गौरी, प्रीति, निर्जा, सुविंदर, सोनी और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी आज आपको याद कर रहे हैं। तो सुखविंदर, आज का ये खास दिन आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इनके साथ आज दीप्तेश प्रसाद, आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं खुशी के इस मौके पर। तमाम परिवार वाले आज शुभकामनाएं और बधाइयां आपको दे रहे हैं। और पत्नी है आपकी सृष्टि और इनके साथ अन्य जितने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं सभी की ओर से आज के स्पेशल डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। उन्नीस मिनट रह गए हैं अभी 8 बजने में और आज सेलिब्रिटी अलार्म में कुछ लोगों ने सही तो कुछ लोगों ने गलत जवाब हमारे पास भेजे और जो जवाब हमें चाहिए था इट वॉज पंकज त्रिपाठी।

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum Accurate Traffic.
2: Brought to you by Public Trust.
3: With a heavy rain watch and a strong wind warning in place, we have a few cancellations for ferries around Gulf Harbour and Hobsonville Point, and also some domestic flights. On the northern, it's 1 hour and 13 minutes from Silverdale to the city. It's 52 minutes on the northwestern from Massey. On the southern, 54 from Monaco, and it's heavy southbound on the southwestern, half an hour from the city to the airport.
2: Create your will online with Public Trust from $69. Includes annual free update.
1: Fiji is on sale now at Flight Centre. Treat the family to a tropical escape where kids can stay, eat and play free on selected Fiji holidays. Hurry, these tropical deals won't last long. Book online or in store now. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
4: Ma, it's already your dinner? Ha, it's about
5: to be. Jab kashish desi ghee se khana banega, to yahi to hoga. New Zealand mein most advanced technology se bana. Grass fed danedar cow ghee. Jab khane mein hogi itni shuddhata, itna swad. तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
4: हाँ, एक चपाती मुझे भी।
5: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियां पकाएं, खुशियां खिलाएं।
6: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट। squirrel.co.nz
7: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
8: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
7: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
8: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846 9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई

0: तो आज का जो इस घंटे का थ्रोबैक है बस आपको थोड़ी देर में हम जरूर सुनाएंगे, जिसके लिए आपको हमारे साथ तैयार रहना है. बट बिफोर दैट अ ब्यूटीफुल स्टोरी दैट आई'ड लाइक टू शेयर विद यू ऑल द वे फ्रॉम जापान. यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत और ट्रेडिशनल मेथड जो है ये इस्तेमाल किया जाता है टू केयरफुली रीलोकेट ट्रीज, ताकि वहाँ पर जो पर्टिकुलर लोकेशन हो, अगर किसी तरह का यू नो डेवलपमेंट का काम वगैरह चल रहा हो तो जो पेड़ हैं उन्हें काटा ना जाए, इकोसिस्टम जो है इसे डिस्टर्ब ना किया जाए, बल्कि जो पेड़ होते हैं उन्हें फ्रॉम द रूट्स वहाँ से निकाला जाता है, उखाड़ा जाता है बेसिकली, और उन्हें रीलोकेट किया जाता है. और इस तरह से जैसे जो घर नहीं होते जो ट्रांसपोर्ट करते हैं यहाँ पे हम, बस उसी तरह से. तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इट इज डन वेरी केयरफुली, ताकि जो पेड़ के जड़ हो, जो सबसे जरूरी चीज है, ये बहुत सिक्योरली रैप किए जाते हैं, उन्हें प्रिजर्व किया जाता है जब तक ये पेड़ ट्रांसपोर्ट होता है, ताकि जब उसे नए लोकेशन पर डाला जाए तो वहां पर वो अच्छे तरह से ग्रो करे और उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, उसका ध्यान रखा जाता है. और ये पूरा का पूरा जो ट्रेडिशनल मेथड है इसका नाम है निमवाशी. और ये इसीलिए किया जाता है कि किसी भी जगह पर किसी भी तरह का जो डेवलपमेंट का काम चल रहा हो, किसी तरह के बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हो, वहाँ पर वो भी चलते रहें और जो नेचर है उसका भी ख्याल रखा जाए.
1: कमाल का तरीका जो है. ये जैपनीज इनोवेशंस जो है और उनके जो आइडियोलॉजीज हैं इसको वैसे भी दुनिया भर में काफ़ी पसंद किया जाता है. दिस इज अनदर वन ऑफ देम. थ्रोबैक का ये गाना आप एंजॉय करें और इसके बाद लेटेस्ट न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 17.3 डिग्रीज टेम्परेचर अभी ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं. आज का हाई 20 है, ओवरनाइट कम से कम 12 डिग्रीज रहेगा. आज सुबह के वक्त कुछ ज्यादा बारिश, बाद में चलकर रह रहकर हल्की बारिश हो सकती है. सनसेट आज का शाम 5:14 पर होगा.
0: Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: वेलकम टू द रश ऑन. हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर आप हमारे साथ दे रहे हैं. थैंक यू सो मच. ट्रेन पेट्रोल का वक्त है और ट्रेन पेट्रोल में आज हम कुछ बातें करने जा रहे हैं चाय के बारे में.
3: चाय के बारे में?
1: हाँ.
3: ऐसी क्या बातें करनी है आपको?
1: ऐसी बात करनी है क्योंकि टेस्ट एटलस ने रिलीज कर दिया है टॉप 100 टीज ऑफ द वर्ल्ड का लिस्ट.
3: ओके.
1: और पूरा 100 का 100 तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जल्दी जल्दी आपको टॉप 10 बता देते हैं. नंबर 10 पर 4.1 रेटिंग के साथ जो चाय है, होपफुली आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ग्योकुरो. ग्योकुरो ग्योकुरो जो है ये एक जापानीज ग्रीन टी है, तो आप गूगल करके देख सकते हैं या रिसर्च करके पता लगा सकते हैं. नंबर 9 पर है उलोंग. उलोंग ये एक सेमी ऑक्सीडाइज्ड टी है फ्रॉम चाइना. दैट्स ऑन नंबर 9. नंबर 8 गेनमाइचा. गेनमाइचा 4.1 रेटिंग के साथ, ये भी इट्स फ्रॉम जापान.
3: ओके.
1: नंबर 8 पर ये है. नंबर 7 पर चाइना की चाय है शेंगपू एयर. दैट्स ऑन नंबर 7. नंबर 6 दार्जिलिंग चाय.
3: ये बहुत पॉपुलर है ना, दार्जिलिंग टी.
1: नंबर दैट्स ऑन नंबर 6. नंबर 5 पर आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, पू एयर.
3: ओके,
1: होपफुली इट्स राइट. ये भी चाइनीज टी है. और नंबर 4 पर सेंचा फ्रॉम जापान. और नंबर 3 पर है सिलोन ब्लैक टी. दैट्स फ्रॉम श्रीलंका.
3: इंटरेस्टिंग.
1: और ये नंबर 3 पर है. नंबर 2 पर होजीचा.
3: नंबर 2
1: होजीचा जो है नंबर 2 पर, इट्स फ्रॉम जापान. और नंबर 1 पर कौन सी चाय होगी?
3: मसाला चाय.
1: एग्जैक्टली.
3: ओह दैट्स इंटरेस्टिंग. मैं तो ऐसे ही बोल दिया था, बिकॉज जो भी लिस्ट में आप बता रहे थे, आई हैव नॉट ट्राइड एनी ऑफ दोज टीज, बट आई हैव नोटिस समथिंग कि टॉप 10 में जापानीज टी जो है ये बहुत पॉपुलर है.
1: यस, जापानीज टी और चाइनीज टी भी. दो चाय ये इंडिया के हैं, श्रीलंका की चाय भी है, बट चाय मसाला टेक्स द केक. मसाला चाय इज वर्ल्ड्स बेस्ट टी अकॉर्डिंग टू टेस्ट एटलस.
4: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है.

0: पूजा।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
3: Indelible Homes, your building expert.
4: गाड़ी चलती रहे, टेंशन बिल्कुल नहीं। ऑकलैंड का ट्रस्टेड नाम RPS टायर्स, कार SUV ट्रक या फोकलिफ्ट, हर व्हीकल के लिए टॉप क्वालिटी टायर्स, पार्ट्स एंड टूल्स, डायरेक्ट इंपोर्टर्स ऑफ रोड वन एंड अदर क्वालिटी टायर्स विद अ सॉलिड प्राइस बीट गारंटी। 4x26 ईस्ट तमाकी रोड पापा टोटोए प्लस 24 आवर मोबाइल सर्विस। फॉर बल्क ऑर्डर्स कॉल रॉन ऑन 0221753941 और विजिट rpstyres.co.nz और देयर फेसबुक पेज। RPS टायर्स, ड्राइव सेफ, ड्राइव स्मार्ट।
5: Put a bloody important meeting in your calendar right now. This National Blood Donor Week, give blood or plasma. Go to nzblood.co.nz to see if you can donate and book your bloody important meeting now. Give blood. Give plasma. Save lives.
6: Wormsley Road has reopened. Thanks for your patience while we upgraded the road to help reduce flooding in Mangere. Find out more by searching Auckland Council Te Ararata Creek.
7: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
8: मुझे भी।
7: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
0: Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
10: What's your take?
11: लगभग 17 मिनट हो रहे हैं 8:00 बजकर। What's your take का वक्त अब हो चुका है और आज नंबर जिस पर आपको कॉल करना है याद रखें 0800-004866। लंबी छुट्टियों के बाद वापस आज आप शायद लौट रहे हैं तो उतना हैवी टॉपिक आपके लिए हम नहीं लेकर आए हैं। बेसिक, वेरी बेसिक स्टडी जो है इसे पब्लिश किया गया था लगभग 4 साल पहले साइंस डेली में और उसके बाद हमने सोचा चलो यही आज आपसे पूछते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, बस इतना ही हमें जानना है कि क्या आप इस स्टडी से सहमत हैं। डू यू अग्री और नॉट। बस अगर कोई रीज़न है जो आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो ये स्टडी जो पब्लिश की गई थी उसमें ये कहा गया कि फॉलिंग इन लव मेक्स यू लेस प्रोडक्टिव। जब आप प्यार में होते हैं तो आप अपना काम जो है उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते या नहीं कर पाते हैं। जब दिन रात चारों ओर आपका दिमाग जो है, आपका दिल जो है अपने प्यार के बारे में ही सोचता है तो द अबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड कंप्लीट टास्क आर लाइकली टू डिमिनिश। खत्म हो सकते हैं या कम हो सकते हैं योर अबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड कंप्लीट योर टास्क। ये स्टडी साइंस डेली में जून 2022 में पब्लिश की गई थी और अभी जून 2026, 4 साल हम आगे आ गए। क्या अभी भी हालात वही हैं? क्या आपको लगता है स्टडी में जो भी पाया गया क्या वो सही है या आपको लगता है नहीं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, काम अपनी जगह, प्यार अपनी जगह, जिंदगी जो है ये चलाने के लिए, जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलता, पैसे भी चाहिए, पैसों के लिए काम भी चाहिए, और काम मिले तो काम करना पड़ेगा। तो 0800-004866 इस नंबर पर अब आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय जो है ये हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या आप सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, और अगर कोई रीज़न है तो वो भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। ये स्टडी जो है इसे कंडक्ट किया था डॉक्टर हैंक वैन स्टीनबर्ग ने, जो कि लेडन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी के हैं, और स्टडी में ये पाया गया कि एली स्टेजेस ऑफ अ रोमांटिक रिलेशनशिप जब होता है तो एक शख्स जो है इस अपने आप पर वो अपना काबू जो है थोड़ा खो देता है, और ऐसा नहीं कि ये मेल्स या फीमेल्स पर ज़्यादा असर करता है, बस एक समान सभी में होता है। तो टॉपिक तो हम आपके लिए पेश कर चुके हैं, अब आपका इंतज़ार है, होपफुली आपके पास कुछ हो शेयर करने के लिए, कम से कम हाँ या ना तो आप बता ही सकते हैं। किसी ने मैसेज किया है, यस आई बिलीव दैट एंड इट मेक्स यू गेन वेट टू। अच्छा, इनको तो लगता है कि आप अगर आप प्यार में बहुत हो तो आपका वजन भी ऊपर जा सकता है या जाएगा, जाता है। तो अब वक्त है आपकी राय जो है ये हमें सुननी है। वीड लव टू नो व्हाट्स योर टेक कि फॉलिंग इन लव मेक्स यू लेस प्रोडक्टिव। जो स्टडी में बात सामने आई, कहां तक आप उससे सहमत हैं या असहमत हैं, वो आज आपको हमें बताना है। अभी तक तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही शख्स है जिनको शायद थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हुआ इस टॉपिक में, और अगर आपको भी ज़रा सा भी हुआ है या फिर आपने कुछ सोचा है इसके बारे में, टॉपिक सुनने के बाद आपके जहन में कोई ख्याल आया है तो हमें ज़रूर बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग परविंदर।
10: गुड मॉर्निंग,
11: कैसी हैं आप? हम ठीक हैं, आप बताइए।
10: वेरी बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि होता होगा, प्यार में जब पता होता है तो दिमाग में कम चलता है, पर मेरे लिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरी लाइफ थोड़ा सा भी नॉर्मल से डेविएट होती है ना, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे कुछ भी हो, मैं तो निकम्मी बन जाती हूँ।
11: अच्छा।
10: हाँ, जैसे अगर थोड़ा बात का स्ट्रेस हो जाएगा मुझे, मेरा काम पे ध्यान ही नहीं लगेगा।
11: अच्छा।
10: ये अभी आप जब बोला है मैंने तब नोट किया, पहले जब मैं हस्बैंड से मिली थी तब मेरा दिल नहीं करता था ऐसे काम वाम पे जाने का, पर वही ना मरता क्या ना करता, रेंट रूंट की तो भरना था,
11: जाना तो पड़ेगा ही,
10: जाना तो पड़ेगा। पर अब मैं देखती हूँ कि हाँ चलो मैरिड है ना, प्यार तो चलो है, पर और भी चीजें आजकल मेरे को निकम्मा बना देती है, थोड़ी सी टेंशन वाली बात हो, प्रॉब्लम वाली बात हो, मतलब जब भी हार्मोन रिलीज होते हैं ना बॉडी से तो मैं निकम्मी बन जाती हूँ।
11: थैंक्स फॉर बींग सो फ्रैंक एंड ओपन। थैंक यू परविंदर आपके कॉल के लिए, यू हैव अ वंडरफुल डे, और आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। हेलो।
12: गुड मॉर्निंग जी, गोविंद देश है, बात कर रहा हूँ।
11: अरे गोविंद भाई कैसे हो, बड़े दिनों बाद आज आपका कॉल आया।
12: कई बार हो जाता है जी, सोचता रहता हूँ कि कोई और कॉल करे, उनको भी मौका दे। तो ये चक्कर है। तो मुझे लगता है कि वैसे मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जब किसी को कोई प्यार होता है या कुछ होता है तो कुछ उसका काम पे या किसी पे असर पड़ता है उसका, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है। देखो प्यार अपनी जगह है, ठीक है, प्यार तो हम अपने परिवार से भी करते हैं, सबसे करते हैं, लेकिन अगर प्यार के कारण अगर आपका कुछ कोई काम प्रभावित हो रहा है, जैसे कि जैसे आपने बताया अभी कि पैसा भी चाहिए और जिंदगी जीने के लिए, तो मेरी सोच यही है कि उसका प्यार का काम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है।
11: ओके। इंटरेस्टिंग, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए। तो एक हैं जिन्होंने कहा कि हाँ भाई, सिर्फ प्यार ही नहीं, जब भी कुछ हालात से ये गुजरती हैं, किसी भी हालात से गुजरती हैं, तो काम में इनका मन नहीं लगता। गोविंद भाई कह रहे हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, काम तो है, करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि प्यार में हो गए तो भाई आपका काम करने का मन नहीं होता है। किसी और का टेक्स्ट आया है, होता है, जब मेरे एक्स को करियर बनाना था तब वो प्यार में ज़्यादा फोकस था, फिर मेरी शादी हो गई उसके बाद करियर पे फोकस किया और अच्छी जॉब मिली उसे, लेकिन क्या फ़ायदा, आज हम साथ नहीं। अच्छा ओके, जब इनको करियर बनाना था तब वो प्यार पे ज़्यादा फोकस थे। इंटरेस्टिंग, आओ 800-00 हम, आओ 800-00-4866 ये हमारा नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय जो है ये शेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, हेलो,
13: बोल देते हैं।
14: गुड मॉर्निंग, आकृति बोल रही हूँ, कैसे हैं?
11: मैं ठीक हूँ आकृति, आप कैसी हो?
14: I'm all well, thank you. To answer your question, काम बहुत जरूरी है definitely, but मुझे लगता है कि there has to be a balance somewhere. तो काम yes, काम करो, लेकिन try to be a bit more expressive in your relationship. तो you know,
13: but the question is, this research says the love affects your work. It's not that you

0: what you know from work. अगर देखो आपके दिन दुनिया में अगर आपकी जिंदगी में दो ही काम है योर लव इंटरेस्ट एंड योर वर्क इंटरेस्ट. तो अगर आपका इफ यू थिंक ऑन दी जस्ट साइंटिफिक इवैल्यूएशन कि अगर आपका 100% फोकस वर्क पे होना चाहिए तो वो लव अगर डिस्ट्रैक्शन है तो yes it will take you away from one thing क्योंकि एक इंसान एक टाइम पे एक ही चीज कर सकता है.
1: चलो भाई
0: चाहे जितना मर्जी प्रोडक्टिव हो आप जितने मर्जी. तो मेरे हिसाब से यस अगर मेरी जिंदगी में सर मुझे काम ही करना होता और मेरी जिंदगी का पर्पस कुछ और नहीं होता आई विल बी अ वेरी बैड लोनर बट आई विल बी वेरी गुड एट वर्क.
1: दैट्स इंटरेस्टिंग.
0: मतलब आपकी पर्सनल लाइफ तो खत्म ही हो जाएगी ना. मतलब यू वुड बी अ मशीन यू वोंट बी अ ह्यूमन देन.
1: एग्जैक्टली.
2: आई बिग टू डिफर.
1: ओके ओके.
2: आई कैन से समथिंग ऑन दैट.
1: या या या बोलिए जी.
2: ओके आई थिंक लव इज अ वेरी vast thing. It also depends ki aap love ko kis context mein le rahe hai na. So it's not just an emotional thing, it's a scientific fact. Ab depend karta hai ki aap kaun se research ka baat kar rahe hai. Kuch I would like to have a look at that as well. Kyunki
0: I think aapne doctor uska jisne research ki thi unka naam liya tha shayad aapne.
1: Ha ha ha. Leiden University ke jo shakhs the unka naam hai Dr. Henk van Steenberg. That's the name of the person. Anyways, आप try कर सकते हैं. In the meantime, आप दोनों discuss कर सकते हैं. अभी कितनी journey आपकी बाकी रह गई है?
2: अरे यार, वो तो कोई फायदा नहीं है. वो हम discuss करते ही नहीं है कौन.
0: आज पूजा जी नहीं आए ना.
1: नहीं ऐसे topics जब discuss करते हैं तो उनको नहीं रख सकते यार ना.
2: हम तो साथ ही आज एक गाड़ी में हमारा बुरा हाल हो रहा.
0: चलो हम हीटेड कन्वर्सेशन करेंगे इसको.
1: चलो ऑल द बेस्ट. थैंक यू. यू हैव अ वंडरफुल डे. थैंक यू बाय बाय. अभी उतना टाइम नहीं है हमारे पास तो आप 5599 पर टेक्स्ट करके हमें बता सकते हैं कि क्या आप सोचते हैं. फॉलिंग इन लव मेक्स यू लेस प्रोडक्टिव. द फीलिंग ऑफ ब्लॉसमिंग व्हेन यू फॉल इन लव एक्चुअली अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी. एक स्टडी जो है ये कंडक्ट किया गया जैसे हमने बताया. इस स्टडी में ये पाया गया दैट इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ अ रोमांटिक रिलेशनशिप द इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव कंट्रोल डिक्लाइंस. 2022 में 4 साल पहले ये स्टडी किया गया और उसमें ये पाया गया कि द मोर अ पर्सन इज एनवलप्ड इन लव द मोर डिफिकल्ट इज इट टू इग्नोर इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन. द रिजल्ट ऑफ दिस स्टडी अप्लाई टू मैन एंड वेमन मीनिंग दैट प्यार का असर कुछ अलग नहीं होता है. और इन एडिशन टू वेन स्टीनबर्ग स्टडीज मैनी प्रीवियस स्टडीज हैव शोन दैट द अबिलिटी टू इग्नोर डिस्टर्बिंग इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेंटेन लॉन्ग टर्म रोमांटिक रिलेशनशिप्स. भाई क्या क्या बातें आ रही हैं इसको लेकर. तो आपकी भी कोई राय है 5599 पर आप हमें जरूर टेक्स्ट कर सकते हैं.
3: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ. मैं लाऊं अपना ए गेम. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Tumo jao, papi ho. Tumo jao.
2: Accurate traffic.
3: Wardrobes Direct 30th birthday sale on now.
4: Good morning, it's rainy and windy with a high of 20. Still a heavy rain watch in place, but the strong wind warning has eased. Cancellations to ferries and some domestic flights this morning. On the northern, it's 45 from Constellation Drive to the city. On the northwestern, 51 from Massey. On the southern, just over an hour from Monaco, and the southwestern is heavy southbound. And the run to the airport, 33 minutes.
3: Mega savings this month only at Wardrobes Direct, two showrooms, Mount Wellington and Silverdale.
5: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
6: मुझे भी
5: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
7: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
8: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे.
7: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
9: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड.
10: Maddie didn't think she needed a DVS system.
11: I've got a heat pump.
10: That should do, but it didn't do it, did it, Maddie?
11: No, my windows wouldn't stop crying condensation.
10: So Maddie got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
12: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
0: The show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
13: तो आपके लिए लेकर आ रहे हैं द रश आवर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और जैसे कि आपको पता है कि रश आवर में काफी डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजों के बारे में हम बातें करते रहते हैं. दिस टाइम अराउंड आपसे बातें करना हम चाहते हैं अबाउट बलून डॉग. नाउ इफ यू हैव सीन बलून डॉग समवेयर ऑन द वॉल्स इन द सिटी समवेयर, कहीं पर आपने कुछ तो देखा है बट यू डोंट रियली रिमेम्बर ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं, बलून डॉग इज बेसिकली अ प्ले. इंडियन इंक थिएटर कंपनी बलून डॉग प्ले जो है कि लेकर आ रहे हैं टू ऑकलैंड न्यूजीलैंड, विच इज रिटन बाय जेकब राजन एंड जस्टिन लुविस, और जस्टिन लुविस ने इसे डायरेक्ट भी किया है. ये एक अवार्ड विनिंग परफॉर्मर है जेकब राजन, और MNZM जो है ये स्टेज पर वापसी कर रहे हैं द वर्ल्ड प्रीमियर ऑफ बलून डॉग, अ डीपली मूविंग एंड टाइमली न्यू प्रोडक्शन जो रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत ही खूबसूरत कहानी कबूलीवाला जो है इससे इंस्पायर्ड है. इट इज सेट इन द 21st सेंचुरी इन ऑकलैंड, और ये ब्यूटिफुली आपको एक कहानी सुनाता है दैट फॉलोज द अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप बिटवीन अ 5-year-old गर्ल एंड एक लोनली माइग्रेंट वॉकर, और कैसे उनकी फैमिली जो है उनकी आंखें खुलती है टू दिस अनकंफर्टेबल ट्रुथ अबाउट देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम. तो ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो आप देखना चाहते हैं, अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. फॉलोइंग अ सोल्ड आउट प्रीव्यू सीजन, इंडियन इंक्स का जो लेटेस्ट थिएट्रिकल मास्टरपीस है, ये आप जरूर एंजॉय कर सकते हैं विद ह्यूमर और लाइव ओरिजिनल म्यूजिक, डांस एंड जो प्योर थिएट्रिकल मैजिक होता है बेसिकली, वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो इसी वजह से अगर आप बलून डॉग देखना चाहते हैं, आप अपने टिकट्स जो है ये ग्रैब कर लीजिएगा. एंड फॉर दैट यू नीड टू विजिट iticket.co.nz, iticket.co.nz जहां से आप टिकट्स बुक कर सकते हैं. एंड इट्स हैपनिंग इन द क्यू थिएटर इन ऑकलैंड जो 3rd जून से लेकर 20th ऑफ जून के बीच रहेगा. सो एवरी सिंगल डे देयर इज अ शो. आप जाकर iticket.co.nz पर विजिट करते हुए चेकआउट कर सकते हैं किस दिन का किस टाइमिंग का शो जो है ये आपको देखना है.
14: इट ऑलरेडी साउंड्स सो इंट्रीगिंग कि यू नो किस तरह से माइग्रेंट्स जो है शायद वो बहुत रिलेट कर पाए. तो आप जल्द से जल्द अपने टिकट्स जो है ये ले लें एंड मेक श्योर यू विजिट वन ऑफ द शोज़.

0: Punjabi swag is on.
1: Hey,

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: Accurate traffic.
3: Denza premium plug-in hybrid SUVs.
4: Good morning, it's rainy and windy with a high of 20. Still a heavy rain watch in place, but the strong wind warning has eased. Cancellations to ferries and some domestic flights this morning. On the northern, it's 45 from Constellation Drive to the city. On the northwestern, 51 from Massey. On the southern, just over an hour from Monaco, and the southwestern is heavy southbound. And the run to the airport, 33 minutes.
3: Visit Denza, Auckland City. Plug-in hybrids from $89,990 plus on-road costs today.
5: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
6: मुझे भी।
5: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
7: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे
8: चूड़ी कंगन पायल बाली झुमके और चोकर ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं समझे
7: सोना संसार पापा टोटो जहां था वहां अभी भी है शॉप इनसाइड विद आशा डिजाइन स्टूडियो कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स पापा टोटो
9: सोना संसार 138 ग्रेट साउथ रोड पापा टोटो सोना संसार यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड
10: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
11: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
12: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz
1: The Breakfast Show.

0: Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए जारी है. थोड़ी देर बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट. अगले घंटे हम आपको बताएंगे हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है.
2: और आज एक खबर आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं राइट या इन न्यूजीलैंड. ये कहानी जो है ये है, ये घटना जो है घटी है और इससे जुड़ी बातें जो है ये अब खबरों में भी आ रही है. अपेरेंटली क्राइस्टचर्च की एक महिला है जिनका नाम जैस्मिन हैनम बताया जा रहा है, या हैन हैम जो है ये इनका नाम है, हैज बीन ऑर्डर्ड टू लीव हर काइंगा और अ होम जब इनके रिपीटेडली हैरेसिंग हर नेबर्स एंड पोस्टिंग सम ऑफ द इंसिडेंट्स ऑन टिकटॉक वाले कुछ वीडियोस जो है ये सामने आए हैं. सो बेसिकली क्या हुआ कि टेनेंसी ट्राइब्यूनल जो है इनको ये पता चला दैट जैस्मिन कमिटेड 3 सीरियस एंटी सोशल इंसिडेंट्स विद इन अ 90 डे पीरियड. सबसे पहली चीज उन्होंने की दैट शी पुट इंसल्टिंग स्टिकर्स ऑन अ नेबर्स वर्क व्हीकल. दूसरी चीज शी रोट एन अब्यूसिव लेटर टू एन एल्डरली नेबर और उनको थ्रेटन किया उनके कैट को लेकर. तीसरी चीज उन्होंने वर्बली अब्यूज की एक और एक एल्डरली नेबर को और उनके डॉग को लेकर उनको थ्रेटन किया. और जो ट्रिब्यूनल है इन्होंने ये सुना कि दैट शी हैड पोस्टेड वीडियोस ऑन टिकटॉक शोइंग हरसेल्फ हैरेसिंग नेबर्स एंड सेइंग शी इंटेंटेड टू डिस्टर्ब देम. वो करना चाहती थी ऐसा जी. लेकिन अपने डिफेंस में उन्होंने कहा कि शी इज अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस रेजिंग चिल्ड्रन विद एडिशनल नीड्स और जो इंसिडेंट्स है वो सिंपली नेबरहुड डिस्प्यूट्स एंड देयर वर प्रॉब्लम्स विद द कंडीशन ऑफ हर हाउस. तो इस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही थी. सो बेसिकली द ट्राइब्यूनल रूल्ड अगेंस्ट हर और उन्होंने एक्सेप्ट किया दैट पेरेंटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल बट सेड दैट स्ट्रेस डिड नॉट एक्सक्यूज रिपीटेड एंटी सोशल बिहेवियर ओवर सेवरल मंथ्स. और ये भी पता चला कि ये जो बिहेवियर है इनका इट वेंट फार बियॉन्ड अ नॉर्मल नेबर डिसएग्रीमेंट और जो एल्डरली नेबर्स थे उनके वो इनसे डर रहे थे और इनकी वजह से स्ट्रेस में थे. देर हैड बीन सेवरल आई थिंक 7 पुलिस कंप्लेंट्स इनके अगेंस्ट जो किया गया था. और जो हैरेसमेंट है इंटरफियर्ड विद नेबर्स राइट टू लिव पीसफुली इन देयर होम्स जिसकी वजह से इनके अगेंस्ट ये फैसला जो है ये किया गया कि जो ट्राइब्यूनल है उन्होंने उनकी टेनेंसी को टर्मिनेट किया and gave her 2 weeks to move out.
1: I mean, understandable है कि आप difficulty का सामना कर रहे हैं लेकिन उसका consequence जो है पड़ोसियों को तो नहीं भुगतना चाहिए ना.
2: You know, this is something that is nothing new, I would say. और the worst part is कि लोग अक्सर दूसरों के साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं जो वो नहीं चाहते कि उनके साथ हो. आप फॉर एग्जांपल यू नो वर्क प्लेस एनवायरमेंट्स को ही देख लीजिए. लोग किसी के साथ अपने कलीग्स के साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे जो वो खुद नहीं चाहेंगे कि उनके साथ हो बट जब ऐसे कुछ सवाल उठते हैं उनके बिहेवियर को लेकर देन द फर्स्ट थिंग दैट पीपल कम सेइंग इज कि आई एम गोइंग थिंग्स विद थिंग्स इन माई लाइफ एंड यू गाइस डोंट नो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. एंड सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हो रहा है. उन्होंने खुद ऐसी हरकतें की विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. आप अपने नेबर्स को बेसिकली डरा धमका रहे हो और फिर एट द एंड यू ट्राइंग टू डिफेंड योर सेल्फ बाय सेइंग कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, आप इतनी डिफिकल्टी का सिचुएशन का सामना जो ये कर रहे हो एंड दैट इज वाई इट्स वेरी स्ट्रेसफुल एंड यू आर नॉट एबल टू हैंडल योर सेल्फ.
1: ऐसी और भी कई कहानियां हैं जो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे थोड़ी देर बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट.

लो पसीना पोछ लो। आंखों में शरारत है, होठों पे शिकायत है, बेचैन तबीयत है, बेताब सी हालत है, कुछ कहूँ इजाजत।

0: accurate traffic.
1: Fuel savings at gas today.
2: It's rainy and windy today with a high of 20. Still a heavy rain watch in place for another hour or so, and some cancellations to ferries and domestic flights. On the northern, it's 40 minutes from Constellation Drive to the city, 44 on the northwestern from Massey. On the southern, it's 53 minutes from Monaco. The southwestern is heavy southbound, and the run to the airport will take you 28 minutes.
1: Save 15 cents per litre on fuel today at gas with your everyday rewards card.
3: JB Hi-Fi's King's Birthday Mega Deals on now. Save big on phones, TVs, computers and more. Get the LG 2.1 channel soundbar with Dolby Digital for just $298. Ends 3rd June. JB, you've done it again.
4: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
5: मुझे भी
4: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाएं खुशियाँ खिलाएं
6: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम परफॉर्मेंस भी एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV जीरो इमिशंस मैक्सिमम सेविंग्स आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल
7: The Beds R Us King's Birthday Sale is on now with up to 60% off selected sleepyhead beds like Serenity Breeze, Queen Size, now from 1499. Don't miss the King's Birthday Sale at Beds R Us Manukau and Pukekohe.
8: When you see them on the road, you suddenly remember you have wing mirrors. Suddenly orange doesn't mean speed up. Suddenly you don't need to check your phone at the lights. And you're suddenly checking your blind spots. Yep, seeing them means you're suddenly on your best behaviour. Drive like cops are around. Because they are.
9: Hum, time check.
10: Good morning, it's Amit Thik, 9 baj rahi hain.
9: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
11: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. Three extremist Israeli settlers are now subject to New Zealand travel bans. Mel Logan reports.
12: New Zealand is joining Australia and the EU in the move. Foreign Minister Winston Peters says the three individuals have actively worked to expand illegal settlements in the West Bank, including through violence. He says the travel bans are not about the Israeli people or its government.
11: Pharmacies will be able to offer subsidised treatment for some minor ailments from today. It includes medicine for fevers, pain, head lice and scabies. Zoom pharmacist Dean Radzipaji believes it's a game changer.
13: It's allowing the pharmacist to step up and alleviate some of the pressure that we're seeing at GP clinics. And obviously it's making it easier for patients to get access to these medicines, which is great.
11: Money transfer company Wise shows nearly half of Kiwi travellers claim money doesn't feel real when overseas. It also found nearly 70% are caught out by charges like foreign ATM fees. There's excitement as the government pledges $2.5 million for new e-bike charging stations in the regions. Diane Drummond from the Hauraki Rail Trail says it's great news.
14: We've really noticed the increase in e-bike users. Nearly 50% of our people are using e-bikes, so this allows people with a bit of range anxiety to travel the whole trail.
11: In sports, Serena Williams is returning to competitive tennis for the first time in 4 years. The 44-year-old will play doubles at a tournament in London this month. TNT sports analyst John McEnroe speculates why Serena is coming back.
15: I know that she didn't win a major after she had her first kid, and I know that that was something that she wanted to prove she could do.
11: And Kiwi squash star Paul Cole is safely through to the third round of the prestigious British Open.
9: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
16: World's best, hamari koi branch nahi hai.
9: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
10: Almost 18 degrees temperature ho chuka hai Auckland mein aaj ka high 20 overnight kam se kam 12 degrees rahega barish jo hai dheere dheere aaj thamti jayegi aur aaj ka sunset sham 5:14 par hone ko hai
9: breakfast Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. What's going on? Kya bakte ho?
17: Arre kehna kya chahte ho?
10: What's going on? मैं आपका स्वागत हम कर रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. थोड़ी देर बाद कम्युनिटी की खबरें वगैरह हम आपके लिए लेकर आएंगे.
18: वैसे आज का क्या वक्त हो आपके लिए ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद इन इंडिया, जहां पर वहां के एक अलग किस्म के कॉन्सेप्ट को हम कह सकते हैं कि ये इसके बारे में काफी बातचीत हो रही है. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन देन दिस इज नॉट द फर्स्ट प्लेस जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है. इससे पहले आई थिंक वी हैड स्पोकन अबाउट ऑन आवर शो ओनली, किसी एक एशियन कंट्री में ये हो चुका है, अनाउंसमेंट हो चुकी है कि ऐसा एक है. आई थिंक इट वॉज कोरिया जहां पर ये अनाउंस हुआ था. बट हैदराबाद में अपेरेंटली ये जो कॉन्सेप्ट है ये सामने लाया गया है. एंड दिस इज अबाउट द चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल, जहां पर ये जो हिस्टोरिक सेंट्रल जेल है इसे अब विजिटर्स के लिए ओपन कर दिया गया है. एंड यू कैन फील द जेल एक्सपीरियंस, जहां पर आप 12 से 24 घंटे 12 टू 24 आवर्स एक कंट्रोल्ड प्रिजन स्टाइल सेटअप में बिता सकते हैं. नो क्राइम, नो पनिशमेंट, जस्ट अ रॉ टेस्ट ऑफ लाइफ बिहाइंड बार्स. बेसिक सेल से लेकर जेल का खाना और वहाँ के जो स्ट्रिक्ट रूटीन्स हैं, लिमिटेड फ्रीडम है, और जो भी लोग इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उनको बेसिकली एक रियलिटी चेक मिल रहा है. ये एक नया जेल म्यूजियम जैसा है जिसे लॉन्च किया गया है, दैट शोकेसेस द एवोल्यूशन ऑफ प्रिजंस फ्रॉम द निज़ाम एरा टू दिस एरा. और ये एक सरप्राइजिंग कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है. बिना किसी तरह के क्राइम की अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सपीरियंस करें जेल का खाना, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का एनवायरनमेंट, तो अब आप ये कर सकते हैं.
10: भाई एक्सपीरियंस करने के लिए दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नहीं कि ये गलत है, लेकिन और भी कई चीज़ें हैं, आप वो एक्सपीरियंस करो.
18: इसीलिए इसे क्या बकते हो कहते हैं ना.

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: 12 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर व्हाट्सएप ऑकलैंड में क्या हो रहा है या आने वाले दिनों में क्या कुछ होने को है इसकी जानकारियां हम आपको देते रहते हैं. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और इट्स गोइंग टू हैपन ऑन द 8th ऑफ अगस्त. तो अभी कास्टिंग जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है लेकिन एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अगर आपको सेटा में या फिर इस तरह के परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट है तो सीता माँ के रोल के लिए तलाश जो है ये की जा रही है. अगर आप रामलीला में सीता माँ का किरदार जो है ये निभाना चाहते हैं तो अभी ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास. जल्द से जल्द आप मास्टर अशोक को संपर्क कर सकते हैं 021-179-5459 पर. याद रहे 021-179-5459 पर आप संपर्क कर सकते हैं.
4: और इसके अलावा आपको याद दिला दें कि खास तौर पर ये शुरू होने जा रहा है 5th of June से. आज 2nd of June है यानी कि इसी फ्राइडे से ये शुरू होगा श्रीमद् भागवत कथा और 25th एनिवर्सरी ऑफ श्री राधा कृष्ण मंदिर इसके मौके पर ये होने जा रहा है. श्री राधा कृष्ण मंदिर एंड ऑकलैंड इंडियन एसोसिएशन मिलकर इसे आपके लिए लेकर आ रहे हैं और इनफैक्ट यहाँ पर जो कथाकार रहेंगे पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा, तो आप डेफिनेटली इसका हिस्सा बन सकते हैं. महात्मा गांधी सेंटर राधा कृष्ण मंदिर 145 न्यू नॉर्थ रोड ईडन टेरेस पहुंचकर ये 5th June से लेकर 11th of June तक रहेगा.
3: इसके अलावा ग्रैंड कीर्तन संध्या इसी शुक्रवार को होने जा रही है वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एफ पपटोए टोएबे और पहली बार एक साथ आप देखेंगे रोनल सिंह रोनू और 3 सालों के बाद स्टेज पर अपनी वापसी कर रहे हैं न्यूजीलैंड के जैनेश सेवक. तो इन दोनों कलाकारों को पहली बार एक साथ देखने का मौका. टिकट्स सिर्फ $20 हैं जो अब आपके लिए उपलब्ध हैं जेस फ्रेश मार्ट शेली रोड पापटोए टोए से.
4: और साथ ही साथ आपको याद दिला दें कि खास तौर पर होने जा रहा है दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट और रामकृष्ण मंदिर 25 Onslow Ave पर 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ. ये रहेगा सैटरडे 13th of June को और आप सभी इसमें हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित हैं.
3: और कम्युनिटी की ये खबरें आपके लिए हम लेकर आते हैं. आपके पास भी कोई खबर है जो और लोगों तक आपको पहुंचानी है तो buzz@hamfm.com पर अपने ईमेल्स जो हैं ये आप हमें ज़रूर भेज सकते हैं.

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Bunnings does have heaps of things you can do to keep your home winter ready. No one likes a draft. We've got door seals, window seals, moisture absorbers make sure nothing's getting too damp. Little things make a big difference.
2: Moriday MDS5 screw-on silver door seal, only $27.51. HPM 3-in-1 bathroom 2 heat fan and light, $141.80. Click 2000 watt upright desktop fan heater, just $15.
1: We can help you get winter ready for less. Lowest prices are just the beginning.
3: The puffer you've been eyeing? Maybe it's a sign. Kathmandu's winter sale is on now. Enjoy 40 to 50% off our most loved puffer jackets. However you do winter, do it with Kathmandu.
4: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
6: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
5: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
6: Available at selected branches. T's and C's apply.
7: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
8: क्यों, क्या हुआ?
7: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424.
9: माँ, एक चपाती होती है ना?
10: हाँ, एक चपाती मुझे भी.
11: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
10: हाँ, एक चपाती मुझे भी.
11: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाएं.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 19 मिनट हुए हैं फिलहाल अब 9 बजकर और चाइना में क्लास 16 के ग्रेड 1 के स्टूडेंट्स जो हैं 6 महीने तक इन्होंने मेहनत की और उसके बाद एक बहुत ही जिगेंटिक लेकिन परफेक्टली फंक्शनल आरसी पाइपा प्लेन बनाया है.
3: पाइपा प्लेन,
2: आरसी पाइपा प्लेन.
3: व्हाट इज आरसी पाइपा प्लेन? आई डोंट अंडरस्टैंड.
2: आरसी मींस रिमोट कंट्रोल.
3: अच्छा, पेपर प्लेन जो रिमोट से चलता हो.
2: यस, इसका विंग स्पैन जो है 6 मीटर से ज्यादा है. फ्यूजलेज लेंथ ऑफ 5.06 मीटर्स. और दुनिया का सबसे बड़ा आरसी पेपर प्लेन जो है इसे सक्सेसफुली टेस्ट किया गया एलिया दिस मंथ, क्योंकि ये लगभग 15 मिनटों तक हवा में था बिफोर सक्सेसफुली लैंडिंग ऑन द ग्राउंड.
3: दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई डोंट नो, हम तो उस जमाने से है जहां पर मैनुअल काइट्स बनाते थे हम कागज से, न्यूज़पेपर और वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो नारियल के पत्तियों में होता है ना स्टिक, उसका इस्तेमाल करते हुए. और जमाना देखो कितना आगे चल गया है कि जिस जहाँ से हम, जिस जमाने से हम आए, कागज का नाव, कागज के काइट्स, ये सारी पतंग, बेसिकली ये सारी चीजें हम बनाते थे. और आजकल के बच्चे जो है ये कागज से रिमोट कंट्रोल वाला जाइगेंटिक एरोप्लेन बना रहे हैं.
2: हमारे एरोप्लेन्स तो कम से कम, मेरे तो शायद 5 सेकंड
3: हवा में रहते हैं. और जो रॉकेट जैसा दिखता है ना, जेट प्लेन जैसा,
2: उनकी लैंडिंग भी बहुत ही खतरनाक होती है. उस समय पर उनके रनवे पर कोई होना नहीं चाहिए.
3: पर यार, दिस इज आल्सो समथिंग फन दैट वी यूज्ड टू डू एज किड्स. आई डोंट नो, मुझे अगर अभी कोई बोले कि आपको पेपर प्लेन बनाना है या जो पेपर बोट हो या फिर काइट हो बनाना हो, आई थिंक आई फॉरगॉटन हाउ टू डू दैट. मेरे को अब याद ही नहीं. बट ये बचपन के टाइम पर ऐसी बेसिक चीज़ें थी जो हम करते थे मज़े के लिए, हम बनाते थे मज़े के लिए, और हमारे लिए यही खिलौना होता था. आई मीन उस टाइम पे ज़्यादातर लोगों के पास ज़्यादा खिलौने नहीं होते थे, बट दीज वर द थिंग्स वी यूज टू प्ले विद. और जिनके पास होते भी थे तो भी वो इससे खेलते थे. सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू स्टिल रिमेम्बर कि कैसे जो प्लेन है, बोट है और वो जो काइट है, ये पेपर से बनाते हैं. आपको याद है भी?
2: नहीं, काइट्स आई डिड नॉट प्ले विद काइट्स एज अ किड.
3: नो,
2: आई डिड नॉट प्ले विद काइट्स, बट एरोप्लेन मैंने बनाया है पेपर वाला.
3: याद है बट कैसे बनाते भी?
2: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल याद है. अब पहले 5 सेकंड उड़ता था, अब 1 सेकंड उड़ेगा. वो अलग
3: वो बात अलग है.
2: एंड आई यूज्ड टू मेक, हम लोग उसको गाड़ी बोलते थे. इसके बारे में बहुत साल पहले आई थिंक मैंने बताया था कि एक लंबी सी लकड़ी होती थी जो हमारे कंधे से लेकर नीचे जमीन तक जाती थी.
3: right.
2: और जो जमीन पर पार्ट होती थी उसमें एक और छोटी सी लकड़ी होती थी जिसके दोनों ओर टिन के टायर्स हम लगा देते थे.
3: राइट.
2: टिन के टायर्स लगाते थे और फिर कंधे से जो लकड़ी नीचे जाती थी जहां हाथ पहुंच सके वहां पर उसके लिए एक स्टेयरिंग लगा देते थे.
3: वेरी नाइस.
2: और यहाँ तक कि हम लोगों में, बच्चों में कंपटीशन भी चलता था कि कौन सबसे अच्छा सजाता है अपनी गाड़ी को. एंड वी यूज्ड टू टेक इट टू द शॉप.
3: बेचने के लिए
2: नहीं,
3: तो
2: अगर घर से भेजे हमें कोई कुछ खरीदने के लिए,
3: ओ, ऐसे चलाते, हाँ, चलाते.
2: तो हम अपनी गाड़ी लेकर जाते थे. पैदल कौन जाएगा?
3: अच्छा, गाड़ी में बैठ के जाते थे.
2: अपनी गाड़ी लेकर जाओ.
3: इंटरेस्टिंग. या दीज वर सम ऑफ द फन थिंग्स वी यूज्ड टू डू एज किड्स. बट आप हमें जरूर बताइए कि क्या आपको याद है वो कागज से जो नाव और यू नो प्लेन और काइट वगैरह जो बनाते थे बचपन में हम. डू यू रिमेम्बर हाउ टू मेक इट? इफ यू डू, यू विल लेट अस नो. अगर लास्ट आपने कब बनाया वो भी आप जरूर में बता सकते हैं. फिलहाल थोड़ी देर बाद विल लेट यू नो कि कैसे आप जान सकते हैं WWE से जुड़े कुछ सीक्रेट्स. You'll basically get a chance to hear it from the horse's mouth. और क्या है ये, कौन है ये जो आपको ये राज बता सकते हैं? Someone जिन्होंने इनफैक्ट सलमान खान के साथ भी काम किया है और जिनके एसोसिएशन द ग्रेट खली के साथ भी है. तो जानने के लिए बस हमारे साथ ही रहिएगा.
0: Bollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
1: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Nice song. Katrina Kaif thi aur
1: सिद्धार्थ मल्होत्रा.
0: हाँ.
1: बार बार देखो, उसी फिल्म का गाना है ये. एंड कटरीना
0: नहीं देख पाया मैं.
1: आपने नहीं देखा? एक बार भी नहीं देखा?
0: पता नहीं. आई जस्ट नो आई हैव सीन दिस सॉन्ग समवेयर.
1: But it's a interesting movie. I watched it. मुझे फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई, wouldn't lie.
0: आपने भी बार बार नहीं देखा?
1: बार बार नहीं देखी मैंने, एक बार ही देखी. बट गाने मुझे इस फिल्म के काफ़ी अच्छे लगे. एंड सेम नोट, जहाँ पर कटरीना कैफ का नाम आपने मेंशन किया, तो रिसेंटली इन्होंने कुछ पोस्ट जो है ये किए हैं आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम ऑन हर इंस्टा. वेल, लास्ट पोस्ट आई थिंक इन्होंने अपने हस्बैंड के बर्थडे पर किया था, लेकिन उससे पहले 11th ऑफ मई को इनको इनका पहला मदर्स डे का विश जो है ये मिला था आफ्टर बिकमिंग अ मॉम. तो उस टाइम पे भी इनका एक पोस्ट जो है ये आया था. बट शी हैज़ डन अ पोस्ट लाइक लास्ट नाइट आई थिंक, और बिफोर लास्ट नाइट, प्रॉब्ली यस्टरडे, समटाइम्स यस्टरडे. और ये इतना खूबसूरत पोस्ट रहा इनका, जहाँ पर इन्होंने अपना जो ग्रेटिट्यूड है टुवर्ड्स मई के दिखाया, सेइंग मई यू बीन अमेजिंग, और फिर यू नो हैप्पी फैमिली. और अपने बाल बड़े फ्लॉन्ट किए इन्होंने, खूबसूरत लंबे लंबे बाल इनके.
0: मतलब क्या किए? बाल
1: फ्लॉन्ट किए, मतलब ऐसे यू नो दिखाया. खूब
0: शी बिकेम कशिका.
1: व्हाट?
0: नहीं, कशिका भी ऐसे बाल अपने
1: हाँ,
0: ऐसे
1: वो अपने बाल लहराती है ऐसे, नो डाउट. पर इनके बहुत लंबे बाल थे ना, तो वो ऐसे हवा में आ गए, उड़ा रही थी, एंड तब तक फोटोज वगैरह क्लिक किए गए इनके. प्रोबेबली विकी कौशल माइट हैव डन इट, क्योंकि बहुत सी फोटोज इन्होंने पोस्ट किए. तो उन फोटोज को लेकर भी काफी यू नो लोग रिएक्ट कर रहे कि शी इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, शी इज लुकिंग सो amazing after becoming a mom also, like she is beautiful, but then after becoming a mother she looks even more beautiful. So but in this entire post I think that one thing which was quite a lot of focus jis par tha wo the inke baal. Aur of course Katrina Kaif koi post kare aur us par itna reaction na ho, ye to ho hi nahi sakta. That particular post of hers got more than 2 million likes on Insta.
0: Cool.
1: But इनके खुद की फॉलोइंग ऑन इंस्टा इज 78.7 million समथिंग.
0: हाँ ना?
1: Yeah, she's very much followed online. Right, फिलहाल के लिए चलिए बॉलीवुड से हटकर आते हैं WWE की दुनिया में. हमने आपसे कहा था कि you'll get a chance to know bit of the secret कि WWE की दुनिया में एक्चुअली क्या होता है. बहुत से बार ऐसा हमें लगता है कि कई तरह की चीज़ें जो है कि जो दिखाई जाती थी वो स्क्रिप्टेड होती है, पर क्या वो असल में स्क्रिप्टेड होती है या नहीं? तो ये आपके लिए बहुत से इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ लेकर आए हैं सैंडी एंड रूसबे अनफिल्टर्ड के नए एपिसोड में, जहां पर उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू किया फॉर्मर WWE सुपरस्टार शैंकी सिंह का. 7 फुट टॉल है ये और रेसलर है बाय प्रोफेशन, और हरियाणा के एक छोटे से गांव से ये ग्लोबल WWE के स्टेज पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी जर्नी कैसी रही इनकी फ्रॉम इंडिया टू WWE ये शेयर किया. लाइव बिहाइंड द सीन्स ये इन्होंने शेयर किया, जो इंजरीज है, रिस्क है, और फिजिकल टोल जो बेसिकली आपके बॉडी पर पड़ता है उसके बारे में बातें की. प्लस ही हैड ऑल्सो स्पोकन अबाउट द फैक्ट दैट ही गॉट अ चांस टू वर्क विद सलमान खान उनकी फिल्म भारत में. हाँ. और सेट्स पर सलमान खान के साथ कैसा इनका सिचुएशन रहा, क्या कुछ एक्सपीरियंसेस थे. एंड ऑफ कोर्स ही हैज बीन ट्रेन्ड अंडर द ग्रेट खली, तो ग्लोबल स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका इनको मिला, और कैसे इनको गाइडेंस मिला फ्रॉम समवन हु इज लिटरली क्वाइट ग्रेट, द ग्रेट खली. तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आप भी कैच कर सकते हैं अनफिल्टर्ड के लेटेस्ट पॉडकास्ट में, और ये आपको मिलेगा वे एवर यू गेट द पॉडकास्ट फ्रॉम. आप रोवर ऐप जो है ये भी विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर भी ये आपको जरूर मिल जाएगा.
0: तो आप ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजे, और इसका लिंक जो है ये आपके पास आ जाएगा, और बड़ी आसानी से आप इसे एंजॉय कर सकते हैं. माय गॉड, मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ कितने 2 मिलियन लाइक्स,
1: 2.6 मिलियन
0: से ज़्यादा लाइक्स जो है इनको इनके पोस्ट पर मिले हैं.
1: Did you get a chance to see the post उन्होंने किया था?
0: नहीं, अभी तो नहीं.
1: अगर इंस्टा पे जाकर आप इनका नाम टाइप करोगे तो फटाक से आपको इनका अकाउंट मिल जाएगा, and you can just go and see. I think it's a nice, beautiful collaboration of different photos जिन्होंने यहाँ पर you know post किए हैं.
0: Okay.
1: But anyways, आजकल
0: आपको सबसे ज्यादा लाइक्स किसी एक पोस्ट पर कितने मिले?
1: मेरे को?
0: हाँ.
1: Ooh. I don't know. मैंने कभी इसे ध्यान नहीं दिया.
0: 2.7 million?
1: No. मैं कुछ एक शब्द बोलने जा रही थी जो शायद इसे रेडियो पे बोलना नहीं चाहिए, बट नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ. आई थिंक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, माय सोशल मीडिया इज नॉट रियली फॉलोड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, या फिर ना तो ज्यादातर लोग मेरे को उतना लाइक्स वगैरह जो है मेरे सोशल मीडिया पे देते हैं. मैं खुद भी उतना खास ऐसे पोस्टर अपडेट्स वगैरह नहीं करती हूँ, सो नो कंप्लेंट्स देयर, बिकॉज आई हैव नेवर कम्पीटेड सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स एंड लाइक्स के लिए ना. इफ आई वुड हैव वर्क टुवर्ड्स इट तो शायद सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट.
0: ओके,
1: बट सबसे ज्यादा इफ यू से अगर मेरे को किसी पोस्ट पे मिला है, आई एम जस्ट हैविंग अ लुक एंड आई एम जस्ट गोइंग टू सी इंस्टा, कि इंस्टा पर किसी एक पोस्ट पे मेरे को सबसे ज्यादा लाइक्स वगैरह अगर किसी पे मिला. आई थिंक वन पोस्ट जिसमें मेरे को 179 लाइक्स मिले थे.
0: ओके, सो आप हमें बताइए आपके किसी एक सोशल मीडिया पर आपको सबसे ज्यादा लाइक्स जो हैं कितने मिले, ये नहीं बताइए कि कौन सा पोस्ट, बट सबसे ज्यादा लाइक्स जो है या फिर व्यूज जो है ये कितने मिले आपको, वो आप नहीं. माइन आई वुड से आई मीन फॉर श्योर नहीं बोल सकता, बट वन ऑफ माय पोस्ट उसके व्यूज जो है
1: 322,546.
0: वाओ, दैट्स नाइस, दैट वाज द व्यूज एंड लाइक्स उसके अराउंड 7,200
1: थे. नॉट बैड एट ऑल, कहाँ मेरा 179 और वो भी 2020 में किसी एक पोस्ट में मिला था मेरे को. इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर मैं अपना आई थिंक कल ही मैंने एक पोस्ट जो ये किया था उसमें मेरे को सिर्फ 7 लाइक्स मिले हैं इंस्टा पर, एंड आई एम ओके, आई एम हैप्पी विद इट. आई नो कि आजकल ये सोशल मीडिया ऑनलाइन इज समथिंग दैट मैटर्स अ लॉट. इनफैक्ट लोगों को यहाँ पर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो बेसिकली इंडिया में है इसका मेन हब, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि न्यूजीलैंड में भी अब ऐसा होने लगा है कि अगर आपके पास फॉलोअर्स ना हो, आपके पास लाइक्स ना हो, तो आपको काम नहीं मिलता, सर्टन टाइप ऑफ काम नहीं मिलता. यहाँ पे भी ऐसा होता है, पीपल गो अहेड एंड से कि अरे नहीं नहीं वो नहीं चाहिए, उनके पास तो सिर्फ इतने ही फॉलोअर्स है या इतने ही लाइक्स है, पर वो चाहिए क्योंकि इनके फॉलोअर्स उनके लाइक्स काफी है. बट इट्स ऑल समथिंग दैट एवरीवन हैज अ चॉइस ना, कि उसको क्या चाहिए.
0: एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी, यू नो,
1: दैट्स व्हाट मैटर्स. एग्जैक्टली,
0: वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है भाई. एक पोस्ट जो मेरा था 7,200 लाइक्स, एक पोस्ट रहता ऐसा भी है जिस पर एक लाइक आया था.
1: एग्जैक्टली, ऐसा होता है. बट आपने बड़ी अच्छी टॉपिक जो ये छेड़ी, आई विश वी हैड डिस्कस्ड इट सम अदर टाइम, जहाँ पे शायद बाकी अगर आप हमें इनफैक्ट अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं. वी फील लिसनिंग टू अस 0800-4866 पर आप कॉल करके दे भी सकते हैं. एंड आई बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट इट कि हमारा जो काम है, हम एक ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं जहाँ पर इट्स बेसिकली द जॉब डिमांड्स फॉर पीपल टू नो यू, कि लोग अगर आपको जानेंगे तभी तो आपको सुनेंगे ना. अगर वो आपको नहीं जानते वो आपको नहीं सुनेंगे, और आपको नहीं जानेंगे तो आपको सुनेंगे नहीं, आपको पसंद नहीं करेंगे, तो इट वुडंट बी अ थिंग जहां पर कंटिन्यूटी होगी ना, कि लोग आपको सुनते रहेंगे. सो दिस जॉब एक्चुअली डिमांड्स फॉर पीपल टू नो यू अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं. एंड एट टाइम्स आई जेन्युइनली फील बैड, मेरे को सच में ऐसे बहुत बुरा लगता है कि वाई इज इट दैट कि शायद आई एम नॉट आउट देयर, पीपल डोंट रियली नो मी, पीपल डोंट नो दैट समवन ऑफ दिस नेम ऐसे किसी एक रेडियो स्टेशन में है, इनका एक सोशल मीडिया अकाउंट है, वट एवर. बट देन देयर कम्स अ टाइम जब आई एम ओके विद दैट थिंग, कि इट्स फाइन, इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज आई एम एन आरजे, आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, आई एम नॉट अ कॉन्टेंट क्रिएटर. और जो चीज़ कॉन्टेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स करते हैं आजकल या कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होता. आई कांट बी, आई डोंट लाइक टू बी सीन बेसिकली पब्लिक प्लेसेस में भी. कोई मेरे को अगर बोल दे जहां पर 10-20 लोग भी खड़े होकर आपको देख रहे हैं, इफ दे आस्क मी टू स्पीक इन सच प्लेसेस, मेरी हालत खराब हो जाती है लिटरली. आफ्टर फ्यू मिनट्स आई माइट गेट कंफर्टेबल, बट शुरुआत में मैं बहुत बहुत हालत खराब हो जाती है, एंड इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर मी टू यू नो बी समथिंग जो उस तरह से लोगों को एंटरटेन कर सके. बट व्हेन इट कम्स टू रेडियो, I know for a fact that I'm doing a good job. I need to do better. That's another thing.
0: There's always room for improvement for all of us.
1: Yeah.
0: But आज you know, चलो ऐसा करते हैं कि अभी last week हम लोग बातें कर रहे थे about Tim Paine.
1: Yes. Oh, on the same note, do you know how many followers he has now?
0: कल या परसों आप मुझे बता रही थी कि
1: 3 million cross.
0: 3 million के पार हो चुके हैं.
1: 3 million क्रॉस कर दिया था उन्होंने तब, एंड आई कैन ओह नाउ इज 4 मिलियन से ज्यादा हो गए.
0: अच्छा 4 मिलियन से ज्यादा हो गए. एक शख्स ने मांग की कि उनके उनको आप जाकर लाइक करें या फॉलो करें, व्हाटएवर जो कुछ भी हो, टिम पेन जो ऑल वाइट सॉकर टीम प्लेयर है,
1: एंड ओनली बिकॉज उनको उनकी कैपेबिलिटी की वजह से नहीं, बट उनको फॉलोअर्स नहीं थे उनके सोशल मीडिया पे, और इस वजह से उनको एक ऐसी लिस्ट में डाला जहां पर उनको लीस्ट पॉपुलर यू नो प्लेयर्स के एक लिस्ट में डाला गया था. एंड समवन हु यूज्ड टू फॉलो हिम नोज कि उनकी कैपेबिलिटी कुछ और है, एंड ही डजंट डिजर्व टू बी इन दैट लिस्ट.
0: ओके, तो अभी अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई डोंट नो उनके तो
1: आप टीम पेन नहीं है, डोंट रिक्वेस्ट फॉर फॉलोअर्स.
0: मैं टीम पेन नहीं हूं, वो बंदा मैं उसका नाम भूल गया ना. मैं वो भी नहीं हूं, लेकिन बहुत छोटा हूं उससे,
1: ऑब्वियसली
0: वेरी वेरी स्मॉल. बट आपके कितने फॉलोअर्स हैं फेसबुक पर?
1: फेसबुक पर
0: इंस्टा की बात मत करना, मैं तो 6 महीने में एक बार इंस्टा पे जाता हूँ. तो
1: फेसबुक आई डोंट नो व्हाटएवर इज बीइंग सीन नाउ, जो मुझे दिख रहा है इसमें 1.9 ही है, 1.9 1900.
0: ओके 1900, कम से कम 100 लोग तो अभी सुन रहे होंगे हमें ना.
1: आई डोंट रियली नो.
0: अगर 100 लोग अगर सुन रहे हैं, चलो देखो हमारे बोलने से कोई किसी का पेज फॉलो करता है या आपका पेज फॉलो करता है या नहीं, मेरा तो छोड़ दो.
1: नहीं नहीं नहीं, आई एम ओके.
0: अरे अभी देखना है मुझे ना.
1: चॉइस दैट पीपल शुड मेक.
0: एग्जैक्टली, इट्स अ चॉइस. जिसको नहीं करना होगा वो नहीं करेगा.
1: वो नहीं करेगा वैसे भी. राइट.
0: लेकिन क्या यू नो, जैसे आपने कहा कि कभी कभी आपको भी बुरा लगता है कि भाई ऐसा क्यों है.
1: Yeah, obviously.
0: तो अभी चलो आज हफ्ते का पहला दिन इनको थोड़ा खुश करते हैं. अब I don't know how do you find her page on Facebook.
1: मेरा नाम ही काफी है ना, वो आपको टाइप करोगे मेरा, अगर आप मेरे चेहरे से वाकिफ है तो दिखेगा, आप समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं.
0: हाँ, इनका नाम है पूजा कुमार. और जब आप क्लिक करोगे पूजा कुमार पे तो आ जाएगा 1900 फॉलोअर्स. लेट्स सी, जाने से अभी 17 मिनट रह गए हैं 10 बजने में, एंड अराउंड 6-7 मिनटों का टाइम है, एंड देन वी विल कम बैक टुमारो एंड सी.
1: मेरे पे क्यों बिल फाड़ रहे वैसे आप?
0: नहीं मेरे पे, तुम्हारे पे नहीं, अपने पे फाड़ रहा हूँ कि मेरी बात कोई सुनता भी है कि नहीं.
1: ओ, अच्छा वैसा.
0: हाँ
1: बट ये रिवर्स थिंग भी हो सकता है ना, मेरे पे भी तो बिल फट रहा है ना. But anyways, it's a world of choices and freedom, and of course people have got a right to choose and follow whoever they want to. But the reality also stays there कि आजकल digitally चीजें जो हैं ये इतनी ज़्यादा इस पर emphasis रहती है, इसको इतना importance मिलता है कि कहीं ना कहीं जो लोग शायद digitally अपने आप को उतना expose नहीं कर पा रहे हैं, showcase नहीं कर पा रहे हैं रदा, तो उनको उतना अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है. दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड एंड कीप योर सेल्फ विद द टाइम. जो जो चीज़ जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे अपने आप को आप अपडेट करते रहें, एंड कीप ऑन गेटिंग थिंग्स डन दैट वे ना.
0: ओके, सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव मेड इट वेरी सिंपल फॉर यू. अगर आपको पेज ढूंढने में डिफिकल्टी हो रही वो भी इजी कर दिया हमने.
1: ओके, क्या आपने
0: बस BF लिखकर 5599 पर भेजो, आपके पेज का लिंक है, उनको मिल जाएगा. आई एम सो इंटेलिजेंट, आई एम सो फास्ट.
1: डू दैट, ओ माय गॉड, दिस इज नॉट राइट इन अ वे, एथिकली इट्स रॉन्ग.
0: एथिकली नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कोई मेरे इन्फ्लुएंस में आता है कि नहीं, वो मेरे को देखना है.
1: अच्छा,
0: BF इनके 1900 फॉलोअर्स हैं, जाने से पहले कितने फॉलोअर्स कर सकते हैं और कल सुबह भी वापस आकर देखेंगे. सो BF लिखकर 5599 पर भेजें.
1: इट्स लाइक अ
2: मॉर्निंग.
0: हां, इट्स लाइक अ क्या?
1: इट्स लाइक अ क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट.
0: हां, फॉर माय सेल्फ
1: सर्वे.

0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
2: Here for all things Brinta. Sniffles on the sofa, frosty footy games, oh riff, cozy evenings with hot soup, and roasts with crispy to a tea veggies. Whatever your plans this winter, see you at Foursquare. What'll it be today? They call me.

0: 9 मिनट रह गए हैं अभी 10 बजने में. 9 मिनटों के बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए होगा इस प्रोग्राम में, और उसके बाद काशिका आ जाएंगी माय टाइम में आपका साथ देने के लिए. चलो कम से कम 4-5 लोग ऐसे हैं जो मेरी बात को कभी कभी सीरियसली ले लेते हैं.
1: हाँ, इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो मैसेज भी किया मेरे पास, और आई थिंक एक आया है अनीश आनंद नाम है इनका. इन्होंने कहा है कि विजय भाई के बोलने पर आपको भी ऐड करना चाहिए. हैव अ वंडरफुल डे, ऑल द बेस्ट विद दिस चैलेंज.
0: दैट्स स्वीट अनीश.
1: अभी इट्स वेरी वेरी स्वीट ऑफ हिम. या तो लेट्स सी, चैलेंज की तरह इसे हम भी देख रहे हैं. मतलब मैं तो देखना नहीं चाहती थी ये, बट देख रहे हैं क्या ही करें अभी. तो लेट्स सी हाउ इट गोज.
0: नितिका फ्रॉम द गार्डन्स और आदि क्राइस्टचर्च से, इन दोनों ने कहा कि वी आर ऑलरेडी फॉलोइंग.
1: अभी
0: दो बातों का वक्त हो चुका है. कल
1: जी, सुनाइए.
0: कल जब हम वापस आएंगे तो बाकी का देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है. लेकिन दो बातों में आज, पहली बात जो है, कहते हैं कि जब जेब अपनी होती है तो ख्वाहिशें खुद ब खुद समझदार हो जाती हैं.
1: ओह, दैट इज सो ट्रू.
0: और आज की दूसरी बात
1: जी,
0: 4 लोग 40 बातें 400 अफवाहें. किस किस पर ध्यान दोगे?
1: Absolutely. You have to make the choice कि आपके लिए जरूरी क्या है, और ध्यान देने लायक वर्थ क्या है, इस बात को आपको समझना चाहिए और समझना पड़ेगा. इनफैक्ट चले इन्हीं बातों के साथ अब आपसे चाहेंगे इजाजत. जाने का समय हो रहा है. अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. Have a wonderful day, wonderful Tuesday, and enjoy the week ahead as well.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
3: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927 88 600.

0: ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी तो हमने ना पहले कभी देखी थी ना कभी सुनी थी।
1: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th ऑफ जून।
3: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटेड एम।
4: Worry? No worries.
5: South Auckland's buses just became a lot better.
4: Oh my. Oh my.
5: With better bus routes, more frequent buses, and more.
4: Grey South Road? Now even greater.
5: Search AT Better South Auckland Buses for more.
6: Time check. By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
7: Morning, I'm Bridget Hasty with the latest at 10. The Prime Minister won't be changing the country's nuclear-free policy while in office. Speaking at a meeting in Singapore, Defence Minister Chris Pink says it would be helpful to have a conversation about nuclear propulsion. But as RNZ reports, Christopher Luxon says it's staying put.
8: Because our nuclear-free position, I think, has had massive support across the country and it won't be changing, and it certainly won't be changing while I'm Prime Minister.
7: State Highway 6 at the top of the south will be open under convoy shortly. Bad weather has caused flooding between Canvastown and Pelorus, with traffic to be taken under escort from 10:30 in both directions. The system is expected to be used until around midday, when it is then expected to be open under a 50k speed limit. A pharmacist believes expanded services they can now provide will relieve pressure on GPs. From today, that will include minor ailments like fevers, pain, head lice and scabies. Zoom Pharmacy's Dean Razapaji thinks it will make a tangible difference.
9: Only question I've got is, can we get enough people to know about it? It's whether people know that they can receive treatment at subsidised rates from their local pharmacies.
7: Aryna Sabalenka has advanced to the French Open quarterfinals. The women's tennis number one beating four-time Grand Slam champion Naomi Osaka 7-5, 6-3.
10: She's such a great player, always tough battles against her.
7: And tickets to Saturday's Super Rugby playoff between the Crusaders and the Blues in Christchurch have just gone on sale to the general public. All four matches at the new stadium so far have been sellouts.
6: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
11: The highs of 20, overnight temperature of 12. Aaj ka forecast bataya ja raha hai, cloudy day rahega, kuch showers expected hai. 5:14 par sunset bataya ja raha hai, and it feels like 18 degrees right now.
6: Non-stop Bollywood.
12: Jo bhi karte shiddat ke saath karte
6: hain. Bollywood's biggest hits. My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
13: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye, kyunki aa rahi hai.
6: My Time with Kashika.
11: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू पीपल। तीन दिन की छुट्टी है और उसके बाद जब आप लोगों के पास आते हैं ना, तो देखिए आवाज़ में भी वो खनक आ जाती है और वो मूड भी जो होता है एकदम अपलिफ्टेड होता है। वैसे ओवर द लॉन्ग वीकेंड आपने क्या किया था बताइए बताइए भाई, ये इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए जानना, बिकॉज इसी के बेसिस पर मेरा शो माय टाइम विद काशिका शुरू होता है। मेरा टाइम तो आपके साथ जुड़ जाता है 10 से 12 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे कशिश फूड्स के सौजन्य से। लेकिन मैं अपने टाइम को जब आपके टाइम के साथ जोड़ती हूँ, तब मेरा काम यही होता है बताना दैट टाइम इज़ मनी, और किस तरह से आप अपने इस ब्यूटिफुल सी जो जर्नी आपकी है उसमें आप कितना ज़्यादा अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं, क्योंकि आप नहीं हैं तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं है, है कि नहीं। अच्छा ये बात है तो मैं आपके साथ करती ही रहती हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारे एक्सपर्ट अड्डा में आने वाले हैं नन अदर देन लीगल एसोसिएट्स की टीम। सो देखते हैं थोड़ी देर में कौन हमारा साथ देता है। कोई अगर आपके पास सवाल है 5599 पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं।
6: बचाओ क्या,

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: तो जब मैं बात कर रही हूँ एक्सपर्ट अड्डा की, तो मेरे पास एक सवाल आया है एंड लीगल एसोसिएट से हमारा साथ निभाने के लिए स्टूडियो लाइन पर आ चुके हैं नन अदर देन राज प्रदीप सिंह जी। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर, कैसे हैं आप?
2: कशी गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग टू ऑल हम एफएम लिसनर्स।
1: सर आपका लॉन्ग वीकेंड कैसा गया? बिजी
2: या वेट and cold
1: looks like definitely and yes. मेरे पास एक सवाल आया है, इन्होंने पूछा है what are the new changes in immigration, what is it, how can it affect the applicants?
2: Yeah, that's right Kashika ji, आज से start हो गया है actually from yesterday first June, जो ये level 3 के लिए इन लोगों ने English की requirement start कर दी है, तो उससे काफी applicants, I think even in the morning I met one client, he was from a construction industry, तो वो ये कि carpenter का visa बढ़ाना है, मैं कहा yeah, that's right, it will be required English, और English basic English है 4.0 या PT29, तो इसमें काफी सारे लोग हैं जो already न्यूजीलैंड में especially जो लोग 3 साल के visa पे काम कर रहे थे और वो construction इंडस्ट्री है या हॉर्टिकल इंडस्ट्री, हॉर्टिकल्चर वाली इंडस्ट्री है लेवल 3, सो दे आर अफेक्टेड अ लॉट इन दैट, बट ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम इट्स गुड फॉर यू नो एप्लीकेंट एंड एम्प्लॉयर्स एंड लोकल बिजनेस कम्युनिटी कि एटलीस्ट जिन लोगों को यू नो बेसिक इंग्लिश में कम्युनिकेशन आता है, कम्युनिटी में अंडरस्टैंडिंग है, या जो शॉपिंग है, या लोग जो स्पोर्ट्स में है, उनको काफी इजी रहेगा कि यार ये इन लोगों को सबको जो यहाँ काम कर रहे हैं दे कैन कन्वर्स इन बेसिक इंग्लिश, स्पेशली ये जो कंस्ट्रक्शन के जो है लेवल 3 के, जैसे कारपेंटर है, ग्लेजियर है, प्लास्टर है, टाइलर है, फ्लोर फिनिशर हैं, पेंटर्स हैं, तो इन सारे लोगों को काफी हेल्प रहेगी एंड साथ में जो है ट्रेड के हैं जैसे हेयर ड्रेसर, बेकर, पेस्ट्री कुक, नर्सरी पर्सन या फर्नीचर से अगेन कैबिनेट या फर्नीचर मेकर्स हैं, सीनियर लाइफ स्टॉक फार्म वर्कर हैं, या फ्रूट प्रोडक्शन में हैं, या एग्रीकल्चर ये जो वेजी में प्रोडक्शन में हैं, टीम लीडर, सुपरवाइजर जो उसके लेवल 3 के हैं, ट्रैक्टर ड्राइवर हैं, फोकलिफ्ट वाले हैं, तो इन सबको अब इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। तो डेफिनेटली इट्स केस बाय केस, तो जैसे जिनके केस होंगे उन लोगों को दे कैन डिस्कस विद अस एंड वी कैन एडवाइज देम हाउ टू डू इट। इन साथ में जो नई चेंजेस हैं ये आपने जैसे ये तो आज से स्टार्ट हो रहे हैं एंड एक 24 अगस्त से वो रेजिडेंस के चेंजेस होंगे, वो हम आपके साथ नेक्स्ट वीक में भी कवर कर सकते हैं, या जो लोग सुन रहे हैं अपने केस की प्रिपरेशन दे कैन डू इट नाउ, जो अगस्त में सोचते हैं दे मे बी क्वालिफाइड टू अप्लाई रेजिडेंस वीजा, क्योंकि काफी वर्क एक्सपीरियंस वो उनका कम हो जाएगा, जैसे बैचलर डिग्री है उनका पहले 3 साल था तो वो सिर्फ 1.5 साल में अप्लाई कर सकते हैं।
1: अच्छा।
2: और जो न्यूजीलैंड के यू नो हाँ जी मास्टर डिग्री होल्डर है वो स्टेट वे रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं।
1: सो आई थिंक में बात करेंगे उसके बारे में डिटेल में, है ना?
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी जी,
2: हाँ जी।
1: तो भाई जितने लोग भी चाहते हैं जानना कि भी इमिग्रेशन में कितना चेंज आया है और जो कल से चेंज आया कैसे आपको इफेक्ट कर रहा है, तो प्लीज 09279-9439 पर आप कॉल कर सकते हैं लीगल एसोसिएट्स। इनका ऑफिस पापा टोयोटा एंड हैमिल्टन में भी है और लेवल 131 इज द मार्की रोड आपके लिए पापा टोयोटा में भी लोकेटेड है। लीगल एसोसिएट्स .co.nz की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, क्लिक कीजिए, अपॉइंटमेंट बनाइए और राज आशिमा की टीम के साथ लीगल एसोसिएट्स से आप बात कर सकते हैं। अ बिग थैंक यू टू यू राज जी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
2: थैंक्स अ लॉट, चीज़,
1: बाय बाय।
0: My time with Kashika.
3: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में, आप भी तो नहीं?
1: अरे न्यूज़ में तो आप भी हो सकते हैं अगर आप मुझे ऑफिस शाउट आउट के लिए जल्दी से आप अपना कोई भी ऑफिस जहां से सुन रहे हैं समय मुझे भेजिए 5599 पे टेक्स्ट कीजिए 800 हम पर कॉल कीजिए। देखते हैं किस ऑफिस से आप आज सुन रहे हैं, कोई डेडिकेशन या किसी का बर्थडे शाउट आउट करना है वो भी बता दीजिए।

0: सकते हैं जैक बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफ एम के वाइब्स. मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी. बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media works. Media that works.
1: Joe's Supermart uses fibre for their payment systems, while staff secretly use fibre to share funny videos like the one Perry uploaded of his dog skateboarding down a street that happens to have an ad from Chorus which says New Zealand runs on fibre.
2: Farmer's massive King's Birthday Sale is now on with 30 to 50% off kitchen and dining. Flannelette sheets and duvet cover sets from $49 and 50% off sleepy head beds. Savings fit for a king at Farmer's. Conditions and exclusions apply.
3: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
4: Attention, please. I'm calling this meeting to order to announce a bloody important meeting.
5: A point of order, Madam Chairperson. Isn't this a bloody important meeting?
4: No, not as important as our next bloody important meeting. We're giving blood and plasma as a blood group. All in favour, say aye.
6: Aye.
7: This National Blood Donor Week, get your blood group together to give blood or plasma. Go to nzblood.co.nz now to see if you can donate, book, and then send that bloody important meeting invite. Give blood. Give plasma. Save lives.
8: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
9: मुझे भी।
8: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए.
10: बबीता थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
11: क्यों क्या हुआ?
10: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
12: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी. दैट्स 0800 564 424.
13: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
14: Office Shoutout.
15: चलिए ऑफिस शाउट आउट में मेरे पास आ चुका है विलिंगटन भाई. क्या हाल है आपके यहाँ न्यूज में भाई? वेदर के बारे में कुछ बताइए तो. वेरी हैप्पी एंड क्लाउडी गुड मॉर्निंग कशिका जी. एश फ्रॉम सुशील्स मसल शेफ कैफे विलिंगटन. भाई विलिंगटन वालों तुम लोग तो बहुत आगे निकल गए हो. ऑकलैंड वालों थोड़ा सा उठ जाओ और भाई आप भी अपना ऑफर शाउट आउट दे दो. साथ में आप की सिक्स वर्ड स्टोरी भी मुझे चाहिए. 5599 पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं. इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू हियर कि किस तरह से आप यू नो वी गो बैक टू स्कूल टू से दैट. हम इतने में एक यू नो सिनॉप्सिस रेडी कर देते थे, छोटा सा एक ब्रीफ बना देते, तो मज़ा आता है उन चीज़ों में. ठीक है चलो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं. ये गाना जो है एक ऐसी फिल्म का है जवानी तो इश्क होना था. अब वरुण धवन का ट्रेलर इस फिल्म का मैंने देखा जो फिल्म रिलीज़ होने वाली है इस आने वाले वीक में. लुक्स फनी लुक्स नाइस एंड आई होप वो डेविड धवन का जो एक कमाल है वो इस फिल्म में ज़रूर नज़र आएगा जो कि अभी ट्रेलर में नज़र आ रहा है.
13: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Akashica.
1: Wow.
2: How?
1: Adbhut.
3: एक बात तो अद्भुत यह है कि न्यूजीलैंड का फ्यूल स्टॉक जो है अभी भी मिनिमम लेवल्स पर चल रहा है, विद पेट्रोल डीजल डिपिंग डाउन और जेट फ्यूल जो है वो राइज हो रहा है. लेटेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस एंड इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये फिगर्स जो है आज रिलीज किए हैं. एट द सेम टाइम फाइनेंस मिनिस्टर निकोला विलिस जो है और एसोसिएट एनर्जी मिनिस्टर शेन जोन्स, इन्होंने कंफर्म किया है कि एक्स्ट्रा शिपमेंट जो डीजल का है, रिजर्व का है, इट हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट फॉर न्यूजीलैंड. और MBIE के फ्यूल स्टॉक का जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आया है उससे पता चलता है कि 58.1 डेज पेट्रोल कवर हो चुका है, 44.2 डेज ऑफ डीजल एंड 57.8 डेज ऑफ जेट फ्यूल एज ऑफ 11:59 PM ऑन वेडनेसडे 27th ऑफ मे. सो पेट्रोल ड्रॉप्ड बाय 2.9 डेज, डीजल ड्रॉप बाय 1.7 डेज एंड जेट फ्यूल क्लाइम्ब बाय 7.5 डेज. सो न्यूजीलैंड हैज 34.4 डेज का फ्यूल, 24.8 डेज का डीजल एंड 32.25 डेज का जेट फ्यूल इन द कंट्री राइट नाउ. है अपने पास थोड़ा रिलीफ, डोंट वरी.

0: ओवर द वीकेंड एक कितनी अच्छी खबर आई थी, और ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो थे, अब आईपीएल के हिस्ट्री में इन्होंने क्या सक्सेस क्रिएट किया, और फिर आईपीएल 2026 की ट्रॉफी भी इन्होंने जीत ली. एंड ऑफ कोर्स ये फ्रेंचाइज जो थी, इन्होंने डिफीट किया गुजरात टाइटंस को बाय 5 विकेट्स. ये एक बड़ा थ्रिलिंग सा फाइनल जो था हुआ एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद, और ये इट्स द थर्ड टीम एक्चुअली आफ्टर मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स जो कंसेक्यूटिवली आईपीएल की चैंपियनशिप जीत चुके हैं. और ऐसे में विराट कोहली जी तो ही वॉज जस्ट डांसिंग अवे द बैटिंग स्टार. आई कैन से दैट ही वॉज अनबीटन एट 75 of 42 balls, और फिर ये कॉन्टेस्ट को सील कर दिया था उन्होंने. और इनका ये मैच विनिंग एफर्ट जो था, सारे के सारे सेलिब्रिटीज, टीममेट्स, फैंस, फैमिली मेम्बर्स में क्या फैला और क्या लोगों ने रिएक्शन दिया. एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट जो था वो आई थिंक इट्स स्टिल गॉन वायरल, जहाँ पर अनुष्का शर्मा चीयर कर रही थी अपने हस्बैंड को, यानी कि विराट कोहली को. और ऐसे में जब वो विनिंग शॉट जो उन्होंने दिया, बहुत ही एंथुजियास्टिकली वो वीआईपी इंक्लोजर से उनको चीयर कर रही थी. एंड अनुष्का शर्मा टू कॉन टू द सोशल मीडिया, जहाँ एक बड़ा हार्टफेल्ट फोटोग्राफ जो थी उन्होंने सेलिब्रेशन की शेयर की, और ख़ास तौर पर एक फ़ोटो जिसमें शी इज़ अफेक्शनेटली किसिंग हर हस्बैंड विराट कोहली. और क्या बात, एक बड़ा कैंडिडेट सा मोमेंट लगता है वो था, जहाँ पे एक माइलस्टोन एक तरह से देखा जाए. तो बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन टू जो आरसीबी के फैंस हैं.
1: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला.
3: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
4: अच्छा आप दिलजीत हो?
3: आए आए बताओगे यार.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. King's Birthday Sale on now with up to 60% off. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIG SWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
6: Shop deals fit for a king at The Warehouse. Like buy one, get one half price on toys, 50% off Garnier, and a JVC 55-inch smart TV for just $598. Hurry, ends Tuesday at The Warehouse. Conditions and exclusions apply.
7: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
0: Okay, ye Dream Diary mein mere paas aaj ek वेरी स्ट्रेंज, आई मीन इन्होंने जो मुझसे शेयर किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. इनको फियर ऑफ हाइट्स है, और इनको सपना आया दैट ये कहीं किसी जगह से गिर रहे हैं. ही इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल हिज बैलेंस, और ऐसे में ये ड्रीम जो है इनको यू नो आई. तो जब मैंने इनसे पूछा कि भाई बताइए क्या है, तो इन्होंने बताया कि उनको फियर है, मतलब हाइट्स का फियर है. बस कीपिंग इन माइंड जो इनका ये जो फियर है या जो फोबिया ऑफ हाइट्स होगा, प्रॉबेबली ये ड्रीम के साथ अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहें तो इसमें क्या हो सकता है, कुछ नेगेटिव चीज़ें जो हो सकती हैं वो आपको वापस आने लग जाती हैं. नेगेटिव बातें जैसे कि फियर ऑफ फेलियर, लोनलीनेस, एडजस्टमेंट, खुद की पर्सनल ग्रोथ, बीइंग हर्ट, या फिर अनसर्टेनिटी या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी, कहीं आपको लगता है आप ट्रैप हो चुके हैं. सो एक इमोशनल एक आपका एक पार्ट जो है ये एक्चुअली आपके सपने में आपका आया है, जहाँ पे आपको ये फीलिंग है फियर, एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटी की. इनफैक्ट यू आर ट्राइंग योर वेरी बेस्ट टू होल्ड योर सेल्फ प्रॉबेबली, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप ना गिरे. तो एक यू नो एक कह सकते हैं टाइट रोप आप बांध लीजिए, जो आपकी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगर लाइफ में चल रही है वो निकल सकती है, हट सकती है. ट्राई एंड होल्ड ऑन टू समबडी जो आपको लगता है वो आपको मेंटोर कर सकते हैं. आपके सामने कुछ ऊंचाई आ रही है, देखो भी मत, पलटो भी मत उस तरफ. फिर आपको एक फीलिंग आने लगती है कि टमी में आपको कुछ बटरफ्लाइज आने लग जाते हैं. कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ डाइंग. सबको एक ना एक दिन तो जाना ही जाना है. और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको लगता है कि शायद आप किसी को कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं, तो बट दिस इज़ द टाइम एक्चुअली जब मैं कह सकती हूँ आपको थोड़ा सा अपने इस फियर को, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, इस चीज़ को आगे लेकर आना है. रीज़न इज़ दैट मैं चाहती हूँ कि आपके लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा पार्ट बन जाए जहाँ आप कह सकते हैं आई कैन फेस एनी वन एंड एवरी वन.

थ्रोबैक में मैं आज एक ऐसे कलाकार के बारे में बात कर रही हूँ जिन्होंने दो दिन पहले इनको बहुत याद किया गया, ख़ास तौर पे क्योंकि दैट वाज द डे ही पास्ड अवे 31 मई 2022 में, के कृष्ण कुमार कुन्नथ। अब इनको एक बहुत ही खूबसूरत से सिंगर के रूप में, वर्सेटाइल सिंगर के रूप में कहा गया था। हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, इन लैंग्वेजेस में इन्होंने गाया और दो स्क्रीन के अवार्ड्स भी जीते, सिक्स फिल्म फेयर अवार्ड्स, जहाँ इन्होंने अपना करियर एक एडवर्टाइजिंग जिंगल्स के साथ शुरू किया था और फिर फिल्म में डेब्यू किया 1996 में विद द सॉन्ग इन माचिस। उसके बाद इन्होंने एक अपनी एल्बम रिलीज़ की पल। पल के गानों में जो यारो था बिकेम पॉपुलर, आज तक वो काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली ड्यूरिंग द स्कूल ग्रेजुएशन डेज, और ये इनके करियर में एक ब्रेक थ्रू बन गया। स्पेशली ये एक सॉन्ग जो था उसकी वजह से उनका नॉमिनेशन गया था फॉर द फिल्म फेयर फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। एंड आई वाज इन दुबई एट दैट टाइम जब ये अपने एक गाने के फेम की वजह से इनको बुलाया गया था दुबई, और इतने हम्बल थे, इतने खूबसूरती के साथ इन्होंने वो गाना गाया, और उनसे एक बार नहीं, ऑडियंस ने तीन या चार बार कहा कि भाई गाओ गाओ, तो एक बार उन्होंने स्टार्टिंग में गाया और उसके बाद उन्होंने एक बार एंड में भी गाया। एंड आई रिमेम्बर टॉकिंग टू हिम, मीटिंग हिम पर्सनली, और इतने मतलब कोई एयर्स ही नहीं थी उनके अंदर कि भाई कितने बड़े ओवरनाइट इनके गाने को इतना ज़्यादा पसंद कर लिया गया और वो एक लीड सिंगर की तरह से बन गए। ऑफकोर्स वी ऑल नो दैट उन्होंने दिल चाहता है में गाया, साथिया में भी गाया, फिर देवदास में इन्होंने गाया, 10 बहाने 10 फिल्म का गाना, कितनी ऐसी मूवीज़ थी जो इन्होंने गाया। और वाकई ही आज पर्टिकुलरली इस सॉन्ग को मैं लेकर आ रही हूँ जहाँ पे मैं कह सकती हूँ बहुत से लोग इस गाने के साथ रिलेट करते थे, एंड दैट टू विद नन अदर दैन द ग्रेट के

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू पीपल. भाई देखिए, विंटर का महीना जो है, विंटर का जो एक सीज़न है वो शुरू हो चुका है ऑफिशियली. कल किक स्टार्ट हो चुका था और ऐसे में भाई ये सर्दी जो है हमें मार देती है. ख़ासतौर पे कल तो आगमन किया हमने बारिश के साथ इस विंटर का. ओके, आप लोगों का लॉन्ग वीकेंड कैसा गया? आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो मैं काशिका 10 बजे से आपका साथ निभा रही हूँ. माय टाइम लेकर आती हूँ 10 से 12 बजे के बीच में कशिश फूड्स के सौजन्य से. कशिश फूड्स जहाँ के नाम को तो हम सब जानते ही जानते हैं, कितना हाइजीनिकली पैक्ड है और कितने किफ़ायती दामों पर आपको यहाँ पर कशिश फूड मिल जाता है. अच्छा, इस घंटे पर 6 वर्ड की स्टोरी है और इसके साथ साथ मेरे पास है रिसाइकल रेस्क्यू मी. रिसाइकल में आप क्या चाहते हैं सुनना? चलो आप ही बता दो क्या क्या रिसाइकल रीयूज कर सकते हैं हम. एंड नॉट टू फॉरगेट सम इधर उधर की बातें एंड समथिंग रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जिसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल से ट्रैक के बाद बताने वाली हूँ और वो अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते. तो चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं. 6 वर्ड की स्टोरी का मैं इंतज़ार कर रही हूँ. अगर आपके पास कोई है तो डेफिनेटली आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. भाई माई टाइम में मेरा समय जो होता है आपके साथ अच्छा जाता है और कहते हैं अच्छे अच्छों को वक्त जो है वो झुका देता है क्योंकि वक्त सभी का आता है. आपका वक्त भी आ गया था, 3 दिन आपके लिए लॉन्ग वीकेंड के थे लेकिन अभी भी मैं कह सकती हूँ ये 4 दिन का हफ्ता है और उसके बाद फिर वीकेंड आपके लिए आ जाता है. तो इन 4 डेज़ को बहुत मेरिली आपको मनाना है. और देखो छोटा सा शॉर्ट वीकेंड होता है, शॉर्ट वीक होता है ना, फिर वो मोटिवेशन अपने आप ही बढ़ता चला जाता है कि नहीं?

0: सिस्टम।
1: यू नो, कई बार ऐसा होता है कुछ स्मोकर्स के लिए एक पैटर्न होता है और वो उनको लगता है कि ठीक है, एक सिगरेट उनको चाहिए होती है। वैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, रिमेंबर दैट, दिस इज माय डिस्क्लेमर। एंड खाना खाने के बाद एक सिगरेट चाहिए होती है क्योंकि उनको लगता है ये ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक सार सा टेस्ट मुंह में या थ्रोट में आने लग जाता है, एक वेव ऑफ एसिडिटी जो है वो फॉर्म होने लगती है, एक हेवीनेस पेट के अंदर आनी शुरू हो जाती है। ऑफन ये आप समझते हैं कई बार कि ये ठीक है यार, ऐसा होता ही है, बट इट्स ओके, ये एपिसोड रिपीट होने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर से दरअसल आपको बोल रहा है कि मत पियो सिगरेट। और ये पब्लिक अवेयरनेस का कैंपेन भी जो है वो काफ़ी हद तक पता है कि जो टोबैको होता है वो हमारे लंग्स और हार्ट को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, ख़ास तौर पे जब आप तंबाकू भी चू करते हैं, और ये किस तरह से आपकी गट हेल्थ ख़राब कर देता है। अब ये इंडाइजेशन की बात करते हैं, गट बैक्टीरिया की बात करते हैं, आपके स्टमक के अंदर का जो डिफेंस सिस्टम होता है नेचुरल, वो है ख़राब होना शुरू हो जाता है। और इससे क्या होता है, कैंसर के रिस्क बढ़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो टॉस इज गॉन फॉर अ टॉस। ये जो एक बर्निंग सेंसेशन होता है आफ्टर यू हैड योर सिगरेट्स एंड ऑल दैट, चेस्ट में होता है, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, रिमेंबर दैट। तो एक डॉक्टर का कहना था, एक एक्सपर्ट का ये कहना था कि स्मोकिंग डायरेक्टली अफेक्ट्स द स्टमक एंड फूड पाइप, और उससे क्या होता है, एसिडिटी फॉर्म होनी शुरू हो जाती है। ये गैस्ट्रिक बढ़ा देती है, गैस्ट्रिक एसिड बढ़ा देती है, आपका एक पीएच सिस्टम जो स्टमक में होता है उसको कम करना शुरू कर देती है। इससे क्या होता है, इट रिड्यूसेस द म्यूकस प्रोडक्शन, और आपके स्टमक के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, वेसल्स जो आपके होते हैं वो एक्ट करना शुरू हो जाते हैं। नाउ इट कैन फॉर्म अल्सर एट टाइम्स, और स्टमक जो होता है नेचुरली जो अपने एसिड प्रोड्यूस करता है जो डाइजेस्ट करने के लिए खाने के टाइम काम आते हैं, अब वहाँ पर क्या होता है, सेम टाइम वो एक प्रोटेक्टिव म्यूकस की लेयर भी, शील्ड जो होती है, क्रिएट कर रहा होता है, वो भी डैमेज होनी शुरू हो जाती है। स्मोकिंग इसके बैलेंस को तोड़ देता है, जहाँ पे आपका जो नेचुरल आप चीज़ें आपकी जो बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं वो आपका प्रोड्यूस होने में पैरियर बनना शुरू हो जाता है। ओवर द टाइम एक रिपीटेड आपका एक एक्सपोजर टू सिगरेट से क्या होता है, आपका फूड पाइप से लेके आपके स्टमक तक वो एक क्रॉनिक गैस्ट्रो की इशू, रिफ्लक्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एंड इट्स हर्ड वर्ल्ड वाइड, एक डिजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है ना, वो एक्चुअली हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ओवरऑल हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में कोशिश करते हैं, आपको जब आप नॉर्मल अच्छे से अपना ध्यान रखते हैं। सो एक रिसर्च के ज़रिए पता चला है कि स्मोकिंग कैन ऑल्टर द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस बैक्टीरिया, और फिर एक हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स में ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और ये फिर आपके इंटेस्टाइन्स को भी इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाता है। इससे एक इन्फ्लेमेटरी बाउल की जो डिज़ीज़ होती है वो भी हो सकती है। सो इट्स नॉट सिंपल, इट्स नॉट ईजी, यही कह सकती हूँ कि टोबैको, चाहे आप उसे स्मोक कर रहे हैं या च्यू कर रहे हैं, ये आपके गट बैक्टीरिया को स्पॉइल कर सकता है, आपके लिए ब्लोटिंग बढ़ा सकता है, आपके पेट में डिस्कम्फर्ट लेकर आ सकता है, आपकी बाउल हैबिट को भी स्पॉइल कर सकता है। आई होप आफ्टर यू हर्ड मी अपने आप अपनी सिगरेट को उठा के आप ज़रूर फेंकेंगे। आप ऐसे किसी एक पर एक के पास भी मेरी अगर आवाज़ पहुँच गई ना, तो मैं सचमुच समझूंगी दैट इट्स रियली वेरी वेरी समथिंग विच आई हैव डन गुड, आई कैन से दैट, क्योंकि ये आपकी प्रोटेक्टिव वॉल को वीक करता है स्मोक, और ये जो है आपके गट को लीक करने को मजबूर कर देता है। सो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपका अगर बढ़ना शुरू हो जाता है, इट कैन गेट वर्सन्ड। मेक श्योर आप जिसको भी अगर कोई सुन रहा है, आपके फ्रेंड्स फैमिली कोई भी कॉलीग जो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, उन्हें आप कहें कि प्लीज़ ना करें, क्योंकि ये अल्सर से कैंसर तक बढ़ सकता है। एंड मोस्टली मैं चाहूँगी कि एक अपील है मेरी तरफ से दैट कंटिन्यूसली ये सिम्टम्स आपके अगर अपीयर हो रहे हैं, ट्राई एंड एक्सप्लेन एंड एजुकेट द पीपल हु आर देयर एंड हु एक्चुअली लिसन टू दिस। एंड अल्कोहल एंड टोबैको के लिए मैं ये कह सकती हूँ, कहेंगे अल्कोहल पर आ गई है देखो, क्योंकि एक्चुअली बोथ द थिंग्स टॉक टू ईच अदर, लिवर डैमेज अल्कोहल से तो होता है, लेकिन डोंट वरी, मैं जो बता रही हूँ टोबैको से भी होता है. सो लेट्स वर्क ऑन अ पैनक्रियाज एंड लेट्स ट्राई एंड सी टू हैव अ बेटर हेल्थ. यू विद मी?
0: 80s के रेट्रो गाने.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox. Hum. Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space. And business shows up in your personal space. So shouldn't your bank see the bigger picture? At ASB, one banker handles both your business and personal worlds. Because you're one person, not two accounts. ASB, get one step ahead.
1: No Limits Price Smash is on now. Shop everything from laptops and smartphones to televisions, whiteware and more this Price Smash. Plus, check out our flexible finance options to suit you. Conditions apply. Head in store or online. Don't miss out. Price Smash, only at No Leeming.
2: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
3: मुझे भी
2: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
4: Adore your floor for less with Flooring Extra's walk-into winter sale on now. Here's your chance to get beautiful floors and unbeatable value on their range of best-selling carpet and hard flooring. And to make it even easier, ask about their 16 months no payments and no interest offer with QCard. So find the flooring that suits your style and your budget at your local Flooring Extra showroom with trusted advice every step of the way. TC's, fees and credit criteria apply.
5: Flooring Extra. Adore your floor.
6: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
7: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Cool. Getting to work? Easy. Coffee with friends? Just go. The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
8: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
9: आज की सिक्स वर्ड स्टोरी वेल मैं यही कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सारी चीज़ें करते हैं इंट्रॉय करते हैं एंड ये इन्होंने मुझे अभी कॉल करके बताया डू यू हैव एनी स्पेयर चेंज डू यू हैव एनी स्पेयर चेंज Do you have any spare change? Is perfect. So, ये सिक्स वर्ड की स्टोरी मेरी तो तैयार हो चुकी है लेकिन आप लोग भी प्रेप कर लीजिएगा कल मैं फिर मौका आपको ज़रूर दूंगी जहाँ पे आप इस सिक्स वर्ड की स्टोरी को ज़रूर सुने वैसे एक बात और है अगर आपको कहानी सुननी है अनफिल्टर्ड ड्राइव में तो आप सुन सकते हैं इनकी स्टोरी शैंकी सिंह अब ये WWE के सुपरस्टार हैं 7 feet की हाइट है इनकी एक छोटे से टाउन हरियाणा के इंडिया के रहने वाले हैं ग्लोबल WWE के स्टेज पर भी ये गए हैं और इनका एक इंटरव्यू हुआ है जो कि आप वीडियो ऑडियो दोनों हैं इनको सुन सकते हैं इनकी पूरी बातें सुन सकते हैं ही हैज़ बीन ट्रेन्ड अंडर द ग्रेट खली एज वेल इज दैट ग्रेट तो भाई आप इनका ये एपिसोड सुनने के लिए ड्राइव लिख के भेजे 5599 पे और साथ साथ ये भी कह सकती हूँ दैट आप जो है आप ब्रेकफास्ट कैचअप जो है ये डेफिनेटली सुन सकते हैं आप अगर कुछ भी चाहते हैं 5599 पे पॉडकास्ट पे आप सुन सकते हैं कोशिश कीजिए कि आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाएँ और जो अगर मिस कर रहे हैं उन्हें आप देख भी पाएँ
8: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes Build Your Dreams

सो अंडर द प्रपोज डील हार्टलैंड ग्रुप होल्डिंग्स जो हैं ये अक्वायर करने वाले हैं ऑल द TSB शेयर्स फ्रॉम द TOI फाउंडेशन एंड ये मर्ज होगा टू क्रिएट TSB हार्टलैंड बैंक लिमिटेड. सो TSB हार्टलैंड बैंक वुड बिकम न्यूजीलैंड सेवन्थ लार्जेस्ट बैंक विद अराउंड 15 बिलियन इन टोटल न्यूजीलैंड एसेट्स. यानी कि हार्टलैंड ग्रुप हैज साइंड अ डील टू अक्वायर TSB बैंक फॉर 620 मिलियन. और उससे क्या हो गया कि ये एक न्यूजीलैंड चैलेंजर बैंक के स्केल में आ सकता है एंड विद अ रीजनल फोकस. सो दिस इज समथिंग विच हैज जस्ट कम.

0: शिकार।
1: वाह,
2: हाँ।
1: अद्भुत।
3: अद्भुत बात तो ये है कि एक बहुत ही जबरदस्त आई डोंट रिमेम्बर कि अगर आपको काबुली वाला एक स्टोरी जो थी रविंद्रनाथ टैगोर की वो याद है कि नहीं। भाई मुझे बहुत पसंद आई थी वो, और पता नहीं मुझे क्यों मैं उसके साथ रिलेट कर पाती थी, लेकिन जैसे ही ये सामने आया ना मेरे, ये अमेजिंग चीज़ जो है आपके लेकर आ रही है इंडियन इंक थिएटर कंपनी बलून बलून डॉग। बलून डॉग जो है इट्स रिटन बाय जेकब राजन एंड जस्टिन लुई, एंड इसको डायरेक्ट किया है जस्टिन लुई ने। अब ये जो है ये अवार्ड विनिंग परफॉर्मर जेकब राजन जो है स्टेज पर आ रहे हैं विद द वर्ल्ड प्रीमियर ऑफ बलून डॉग, एक बहुत ही खूबसूरत नया प्रोडक्शन जो कि बिलव्ड स्टोरी मेरी फेवरेट काबुलीवाला पे रिलेटेड है। नाउ दिस इज सेट विद द 21st सेंचुरी ऑकलैंड, जहाँ पे इस टेल को, इस कहानी को बताया गया एक अनएक्सपेक्टेड, एक प्यार, एक यू नो फ्रेंडशिप जो एक 5-year-old बच्चे का होता है विद अ लोनली माइग्रेंट वर्कर। अब ये क्या है, फैमिली जो है इनकी आंखें खुल जाती हैं, बट ये कुछ अनकम्फर्टेबल ट्रुथ जो हैं वो दुनिया के सामने आते हैं। अब किस तरह से ये कहानी इतनी ज़्यादा दिल को छू गई थी कि अब इसके बाद एक सोल्ड आउट प्रीव्यू सीजन भी जो था इसका हुआ गया, एंड इंडियन इंक का लेटेस्ट मास्टरपीस जो कि एक ब्लेंड है ऑफ ह्यूमर, हार्ट एंड लाइव ओरिजिनल म्यूजिक, डांस एंड प्योर थिएट्रिकल मैजिक, ये आ रहा है। एंड दिस इज एक्चुअली गोइंग टू से बलून डॉग, ये एक पावरफुल सेलिब्रेशन है ऑफ करेज, कनेक्शन एंड सीइंग बियॉन्ड द कल्चर, क्या है वो क्लास, क्या है वो सर्कमस्टांसेस। नाउ दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो अंटिल द 20th of June, हैपनिंग एट क्यू थिएटर ऑकलैंड। अगर आप इसे देखना चाहते हैं, इस थिएटर एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सो बुक योर टिकट्स नाउ विद iticket.co.nz एंड लेट मी टेल यू दिस विल बी सम मास्टरपीस व्हिच प्रोबेबली, मुझे याद नहीं कि कभी किसी ने इसके ऊपर परफॉर्म किया था कि नहीं, बट जेकब राजन जो है कई दिनों बाद लौट कर आ रहे हैं बलून डॉग के नाम से, इस कहानी को आप तक बढ़ा कर लेकर आ रहे हैं।
4: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म, डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
5: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा, न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
6: मुझे भी।
5: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
7: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
8: We've got double glazing.
7: Have you still got that cold, damp feeling?
9: Yeah, we do.
7: So Tori and Ben got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.

0: Recycle Me.
1: रेस्क्यू मी रिसाइकिल मी में आज मैं कुछ वेजिटेबल्स के बारे में बातें करना चाहती हूँ. किस तरह से आप ये वेजिटेबल्स को रीयूज़ कर सकते हैं. कभी कभी ऐसा होता ना, प्याज के छिलके, कैरेट के जो टॉप्स होते हैं, हर्ब की स्टेम्स होते हैं, इन्हें अगर आप फ्रीज़र बैग में बॉयल करके रख दें तो एक ये होममेड आपके लिए वेज स्क्रैप बन सकता है. और क्या कर सकते हैं इसके साथ, मोस्टली लोग सूप बना लेते हैं इसके. और कभी कभी आप ये प्यूरीज के लिए भी इसका मसाला, इसका इसको थिक बनाने के लिए, पास्ता सॉस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बट वेरी इंपॉर्टेंट, इनका इस्तेमाल आप तभी भी कर सकते हैं जब आपके गार्डन में कोई वेजीज उग रहे हैं या कोई प्लांट है और उनको कुछ विटामिंस चाहिए. आपको पता है कितने सारे विटामिंस ये सारे प्लांट्स रखते हैं. तो डेफिनेटली गिव इट अ शॉट एंड इनको ट्राई करें. हमारी कम्युनिटी में क्या खास हो रहा है, चलिए ये हम आपको बता देते हैं. ग्रैंड कीर्तन संध्या जो हो रही है वो रोनल सिंह रोनू और जैनिश सेवक आपके लिए इसी फ्राइडे के दिन लेकर आ रहे हैं द वैदिक सेंटर पापा टोटो. 7:30 बजे से टिकट्स आर जस्ट फॉर $20. जयश्रेष्ठ स्मार्ट पापा टोटो से आप टिकट्स ले सकते हैं. 25वीं एनिवर्सरी है श्री राधा कृष्ण मंदिर ऑकलैंड में होने वाला है, जहाँ श्रीमद भागवत कथा पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जो हैं ये लेकर आने वाले हैं. और इसके ऑर्गेनाइज़र हैं श्री राधा कृष्ण मंदिर और ऑकलैंड इंडियन एसोसिएशन महात्मा गांधी सेंटर में. ये आपके लिए परफॉर्म जो माफ़ कीजिएगा, इसका प्रवचन जो है भागवत की कथा का आपके लिए कितना खूबसूरत प्रवचन करने वाले हैं. 5 जून से 11 जून तक ये चलने वाला है. इसके साथ साथ 13 जून सैटरडे के दिन होने वाले हैं 108 अखंड हनुमान चालीसा के पाठ. दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए रामकृष्ण मंदिर ऑनस्लो एवेन्यू मनकाओ में ये लेकर आने वाली है. तो ये प्रोग्राम स्थापना पूजा होगी और उसके बाद सुबह 8 से 6:30 बजे तक चालीसा का पाठ हर तरह तरह की मंडलियाँ आके करने वाली हैं. उसके बाद हवन और आरती शांति पाठ भी किया जाने वाला है. दिल से दिल तक.

तो बहुत से ऐसे यार दोस्त होते हैं जो हम दोस्ती की कहानियां होती हैं, फ्रेंडशिप डे पे इस गाने को ज़रूर सुनते हैं और ये गाना एकदम अमर हो गया था। केके की आवाज़ में इस बहुत ही ब्यूटीफुल से ट्रैक के साथ आपको मैं छोड़े जाती हूँ और कहना चाहती हूँ कि कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है मंगलवार, मेरी मुलाकात आपसे होगी वो दिन कहलाएगा बुधवार यानी हम्पवार। और देखो कल पहुँच जाएंगे ना, जब हम हम्पवार पे तो कह सकते, देखो परसों वीकेंड आने वाला है। अब ये रेयर होता है बहुत जब हम आपके लिए हम इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं। चलो अपना ख्याल रखना और आने वाला हफ्ता आपके लिए ज़ोरदार दमदार और शानदार बना रहे। आज कितनी सारी हमने काम वाली बातें करी हैं, है ना, और इन काम वाली बातों के साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसे अपडेट्स मैंने दी हैं जो मैं समझती हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलती हूँ और कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। केतन कमिंग अप नेक्स्ट फॉर यू, लुक आफ्टर योरसेल्फ्स। दिस इज कशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियोज। यारो टेक केयर।

0: Box with Ketan.
1: Kia ora, namaste, sasrikaal, assalamu alaikum, bulab ka swagat karte hain aaj ke is khoobsurat din ke khoobsurat show jiska naam hai Lunchbox Show. मेरा नाम केतन है. खूबसूरत वैसे दिन इसलिए मेरी आदत है बोलना जस्ट टू गिव लिटिल पॉजिटिविटी. बट क्या करें, आप बाहर जो वेदर है इट्स वेरी क्लाउडी एंड रेनिंग अ लॉट एज वेल. आप बताइए आपके वहाँ पे बारिश हो रही है या इट्स जस्ट क्लाउड्स विच इज़ कवरिंग एंड